एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का चयबासा केंद्र है। आज शनिवार है, शक संवत 1938।

हम आकाशवाणी के चयबासा केंद्र से बोल रहे हैं एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज पर। प्रातः के 6 बज रहे हैं, आइए सुनते हैं समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान और गुजरात के दौरे पर जाएंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री राजस्थान में जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे और संशोधित उड़ान योजना की शुरुआत करेंगे। इसके बाद वे बालोतरा में लगभग 1,06,000 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री जयपुर मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण की आधारशिला भी रखेंगे। वे चुरू सादुलपुर और चुरू रतनगढ़ रेल लाइन दोहरीकरण परियोजनाओं तथा राष्ट्रीय राजमार्ग 125A के 4 लेन वाले हिस्से को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों में चयनित लगभग 54,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री गुजरात के सानंद जाएंगे, जहां वे भारत सेमीकंडक्टर मिशन के अंतर्गत सीजी सेमी के सेमीकंडक्टर असेंबली और परीक्षण संयंत्र का उद्घाटन करेंगे। ये देश की शुरुआती आधुनिक सेमीकंडक्टर असेंबली और परीक्षण इकाइयों में से एक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार से इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर जाएंगे। विदेश मंत्रालय में पूर्वी मामलों के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने बताया कि प्रधानमंत्री 6 से 8 जुलाई तक इंडोनेशिया की यात्रा पर रहेंगे। उन्होंने कहा कि यात्रा दोनों देशों के बीच व्यापार, सुरक्षा और अन्य क्षेत्रों में सहयोग को आगे बढ़ाने का अवसर होगी।
1: प्रधानमंत्री सांस्कृतिक और ऐतिहासिक शहर योग्यकार्ता का भी दौरा करेंगे। वे प्रम्बानन मंदिर कॉम्प्लेक्स जाएंगे, जहां भारत इंडोनेशिया के साथ काम करने की योजना बना रहा है। यह यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित है, इसलिए भारत और इंडोनेशिया यहां संरक्षण कार्य पर सहयोग करेंगे।
0: प्रधानमंत्री दूसरे चरण में 8 से 10 जुलाई तक ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। श्री मोदी मेलबर्न में भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। अंतिम चरण में प्रधानमंत्री 10 और 11 जुलाई को न्यूजीलैंड जाएंगे। गृहमंत्री अमित शाह तथा कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अल नीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम वर्षा और उसके प्रभाव की स्थिति की कल समीक्षा बैठक की। श्री शाह ने कृषि मंत्रालय और सभी संबंधित मंत्रालयों को किसानों को उपयुक्त फसलों की बुआई के बारे में परामर्श देने के लिए राज्य सरकारों के साथ समन्वय करने का निर्देश दिया। केंद्रीय गृह सचिव और केंद्रीय कृषि तथा किसान कल्याण सचिव सहित विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के वरिष्ठ अधिकारी बैठक में उपस्थित थे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत इस साल $1 ट्रिलियन के निर्यात लक्ष्य को हासिल करेगा। पहली तिमाही में ही सालाना निर्यात लक्ष्य का लगभग 15% पूरा हो चुका है। नई दिल्ली में व्यापार बोर्ड की बैठक में श्री गोयल ने कहा कि इसके लिए वस्तुओं का निर्यात $440 अरब से बढ़ाकर करीब $530 अरब और सेवाओं का निर्यात $421 अरब से बढ़ाकर करीब $470 अरब करना होगा। उन्होंने कहा कि पहली तिमाही में वस्तुओं के निर्यात में 15% और सेवाओं के निर्यात में लगभग 10-11% की वृद्धि की उम्मीद है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अब तक 1,02,000 से ज्यादा गणना प्रपत्र डिजिटाइज किए जा चुके हैं। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी के कार्यालय के अनुसार दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के अंतर्गत लगभग 33,14,000 फॉर्म बांटे गए हैं। दावे और आपत्तियां 5 अगस्त से 4 सितंबर के बीच दर्ज की जा सकती हैं। अंतिम मतदाता सूची 7 अक्टूबर को जारी की

राजा दशरथ के चारों कुमार अपनी अपनी वधुओं सहित अयोध्या के राजद्वार पर पहुंचने ही वाले हैं। पूरी नगरी में मांगलिक शकुन वस्तुओं की सुगंध के साथ रानियों के मंगल गीत गूंज रहे हैं। सोने के थाल में अक्षत चंदन लेकर माताएं परिछन करने चली। धूप के धुएं से आकाश यूं आच्छादित है जैसे सावन के काले कजरारे बादल उमड़ घुमड़ कर छा गए हों। आकाश से कल्प वृक्ष के फूलों की वर्षा हो रही है। शुभ समय विचार कर गुरु वशिष्ठ जी ने आज्ञा दी तो राजा दशरथ ने शिव, पार्वती तथा गणेश का स्मरण करके समाज सहित नगर में प्रवेश किया। श्री राम की जयध्वनि तथा वेद की निर्मल श्रेष्ठ मंगलवाणी दसों दिशाओं में प्रतिध्वनित हो रही है। अयोध्यावासी अपने राजकुमार पर वस्त्र और मणिमोती न्योछावर कर रहे हैं। चारों मनोहर जोड़ियों को देख सरस्वती को भी कोई उपयुक्त उपमा देते नहीं बनती। नव विवाहित कुमार और उनकी वधुएं जब राजद्वार पर पहुंची तो आनंदित माताओं ने उनकी परिछन की, आरती उतारी।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस गान। गायक कलाकार थे सामवेद स्वर। हम आकाशवाणी के चयभाषा केंद्र से बोल रहे हैं FM के 101.7 MHz पर। श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम समर्पण। समर्पण के इस कार्यक्रम में पहला भक्ति गीत सुनते हैं आशा भोसले और येसुदास के स्वरों में।

श्रोताओं, आइए अब हम आपको जानकारी दे दें आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों के बारे में। अब के कुछ देर बाद यानी 6:45 पर आप सुनेंगे सुगम संगीत। कलाकार होंगे कुमार आनंद। सुबह 7 बजे समय होगा कार्यक्रम जोहार चैपासा का।

सुबह 8 बजे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचार प्रभात का प्रसारण किया जाएगा। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से ही आप सुनेंगे अंग्रेजी में समाचार 8:15 पर। 8:30 पर प्रादेशिक समाचार का प्रसारण आकाशवाणी के रांची केंद्र से किया जाएगा। माटी की महक लोकगीतों पर आधारित ये कार्यक्रम आप सुन सकेंगे 8:40 पर। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवाएंगे संथाली लोकगीत। कलाकार होंगे बंगाली हंसदा एवं साथी। 9 बजे विविधा कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा। फिल्म संगीत का कार्यक्रम रसरंजन श्रोता सुनेंगे 9:30 पर। 10 बजे आप सुनेंगे फिल्म संगीत। आकाशवाणी रांची के कार्यक्रम प्रसारित किए जाएंगे 10:30 पर। दोपहर 1:10 पर आकाशवाणी के रांची केंद्र से प्रादेशिक समाचार का प्रसारण किया जाएगा। आकाशवाणी रांची के कार्यक्रम आप पुनः सुन सकेंगे दोपहर 1:20 पर। 2:55 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के रांची केंद्र से।

3 बजे आप सुनेंगे न्यूज इंडिया समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। 3:15 पर पुनः आकाशवाणी रांची के कार्यक्रम प्रसारित किए जाएंगे। 4 बजे मुख्य समाचार का प्रसारण आकाशवाणी के रांची केंद्र से किया जाएगा। 4:02 पर पुनः आकाशवाणी रांची के कार्यक्रम प्रसारित किए जाएंगे। 5:00 आप सुनेंगे मुख्य समाचार आकाशवाणी के रांची केंद्र से। 5:02 पर आकाशवाणी चयबासा से प्रसारित शेष कार्यक्रम के बारे में जानकारी दी जाएगी। 5:05 पर गुलदस्ता कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा। इस कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे चंद भूले बिसरे गीत।

शाम 5:30 पर किसान वाणी कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा। शाम 6 बजे आप सुनेंगे मुख्य समाचार आकाशवाणी के रांची केंद्र से। बांग्ला कार्यक्रम 7 रंग का प्रसारण होगा शाम 6:02 पर। 6:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम आपका स्वास्थ्य। 7 बजे आकाशवाणी के रांची केंद्र से प्रादेशिक समाचार का प्रसारण किया जाएगा। इसके तुरंत बाद आप सुनेंगे जिले में आजकल। 7:15 पर श्रोताओं की पसंदीदा फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम आपकी पसंद का प्रसारण किया जाएगा। रात के 8 बजे हम लेकर आएंगे फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम रजनीगंधा। रात के 8:45 पर आप सुनेंगे समाचार संध्या आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से ही रात के 9 बजे अंग्रेजी में समाचार का प्रसारण किया जाएगा। रात्रि 9:15 पर आकाशवाणी रांची के कार्यक्रम प्रसारित किए जाएंगे। रात के 10 बजे गजलों का कार्यक्रम महफिल का प्रसारण किया जाएगा। फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुरों के रंग श्रोता सुनेंगे रात के 10:30 पर। रात के 11 बजे हिंदी में समाचार और 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार का प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से किया जाएगा। और रात के 11:10 पर हमारी आज की सभा संपन्न होगी।

FM के 101.7 MHz पर यह आकाशवाणी का चयभाषा केंद्र है। श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं सुगम संगीत। कलाकार हैं कुमार आनंद।

जोहर चेबासा कार्यक्रम में श्रोताओं, सुनते हैं कार्यक्रम का पहला गीत यशुदास के स्वर में। फिल्म का नाम है हैसियत।

कार्यक्रम में आइए, अब सुनते हैं ये रात फिर ना आएगी फिल्म का ये गीत महेंद्र कपूर के स्वर में।

जोहार चाईबासा कार्यक्रम में श्रोता भाई, अब सुनते हैं रूप तेरा मस्ताना फिल्म का ये गीत। आवाज़ें हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार की।

0: आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम जोहार चाईबासा।
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
2: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए 8700014242।
2: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
3: हिंसा से सनी राहें न अपनाओ, बच्चों के भविष्य को नई दिशा दिखाओ।
4: झारखंड पुलिस नक्सल मुक्त झारखंड की दिशा में कृत संकल्पित है। नक्सलवाद से मुक्त झारखंड हेतु सुरक्षा बलों द्वारा सघन नक्सल विरोधी अभियान जारी है। इस संदर्भ में न सिर्फ झारखंड पुलिस बल्कि नक्सलियों के परिवार जनों के द्वारा भी सक्रिय नक्सलियों को मुख्य धारा में जुड़ने की अपील की गई है।
5: तीन नाले बड़ा परिवार जो तो बनवा इन मरन बेटा क्रांति बेसरा आले वगे नहर में ना बले नुकन परिस्थिति रे बले सब बड़ा वापस को रुड़ करना धरा रे नका गे हम बले रुड़ तबन में आले परिवार से मतलब पूरे ये ना
6: वरना मंगलोरा को गांव बरगड़ा आड़की थाना तो जंगल गया है तो आउका कहाँ मना है वो लोग आउका वो जिंदा है ना मैंने जिंदा है कोई को नाम रे सुने पार ली वह चलते एकदम हमरे पूरा एकदम अखन तो तुम ठीक हो है नहीं तो पूरा एकदम परिवार
7: नाम है रंगबला देवी कहाँ बारे हत्तो तो कहाँ तब घर आए ने हमरे घर है बहुत दुख के बात है तो अखन बात हो जाए
8: तुम लोग बुरा मिसिंग काम सोए अनिता थामसोए भरूपा ऐसा करना ऐसे दुखुर मिना जापा मैं तपा मैं वहा बेटा का
9: अना बुम्बई को पटन गुंडे अना कदमी को पटन पटन कितमी को उड़ी बागे सीआरपी को पुलिस को लड़ाई चलावे बुरुम गुज जय तेरे काका गुंगी बुक को
4: झारखंड सरकार आत्मसमर्पण के दौरान आत्मसमर्पण करने वाले उग्रवादी को श्रेणीवार 6 लाख तथा 3 लाख 2 बराबर किस्तों में देगी। साथ ही गृह निर्माण हेतु 4 डिसमिल भूमि 6,000 प्रति माह की वृत्ति पर व्यावसायिक प्रशिक्षण, निशुल्क चिकित्सा, बच्चों को शिक्षा हेतु शिक्षण शुल्क, कन्यादान हेतु अनुदान, उग्रवादी का 5 लाख तक का जीवन बीमा एवं इनके आश्रितों को सामूहिक बीमा, 4 लाख तक का स्वनियोजन हेतु ऋण देने तथा अन्य कई लाभ देने का भी प्रावधान है। आए आत्मसमर्पण कर झारखंड सरकार के आकर्षक एवं उत्साहवर्धक आत्मसमर्पण एवं प्रत्यार्पण नीति का लाभ उठाएं। हिंसा छोड़ मुख्य धारा में शामिल होकर समाज व राज्य की समग्र विकास में अपना भागीदारी सुनिश्चित करें। इसके लिए मोबाइल नंबर 7008088527 पर संपर्क कर सकते हैं।
0: जोहर चाईबासा कार्यक्रम में श्रोता आइए अब सुनते हैं सितारा फिल्म का ये गीत लता मंगेशकर और भूपिंदर सिंह के स्वरों में।

यादों की बारात। आइए सुनते हैं इस फिल्म का ये गीत। आवाजें हैं आशा भोसले और किशोर कुमार की।

सत्यम शिवम सुंदरम। आइए सुनते हैं इस फिल्म का ये गीत। आवाजें हैं नितिन मुकेश और लता मंगेशकर की।

कार्यक्रम के आखिर में सुनते हैं स्वर्ग से सुंदर फिल्म का ये गीत, किशोर कुमार और आशा भोसले के युगल स्वर में।

इस गीत के साथ ही श्रोताओं, जौहर चेबासा का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के चेबासा केंद्र से बोल रहे हैं, FM के 101.7 MHz पर। श्रोताओं, इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 8 बजने को हैं। आइए अब हम आपको ले चलते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र, जहां से आप सुनेंगे समाचार। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान और गुजरात में कई विकास परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे। बालोतरा में देश के पहले ग्रीनफील्ड एकीकृत रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल परिसर का उद्घाटन करेंगे। गुजरात आतंकरोधी दस्ते ने पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े 8 लोगों को गिरफ्तार किया। केंद्र ने सामान्य से कम वर्षा और अल नीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में संभावित सूखे के हालात की समीक्षा की। मौसम विभाग ने गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र और उड़ीसा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। फीफा विश्व कप में म्यामी में हुए रोमांचक मुकाबले में अर्जेंटीना काबो वर्डे को 3-2 से हराकर अंतिम 16 में, मिस्र भी अंतिम 16 में पहुंचा। और मैनचेस्टर में दूसरे T20 क्रिकेट मैच में आज शाम भारत का मुकाबला इंग्लैंड से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान और गुजरात के एक दिन के दौरे पर रहेंगे। श्री मोदी राजस्थान में जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे। 480 करोड़ रुपए की लागत वाली इस परियोजना से प्रतिवर्ष 20 लाख यात्रियों को लाभ होगा। प्रधानमंत्री जोधपुर में उन्नत उड़ान योजना का भी शुभारंभ करेंगे। इसके बाद श्री मोदी बालोतरा जाएंगे, जहां वे कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। ये परियोजनाएं पेट्रोकेमिकल्स, शहरी परिवहन, रेलवे, सड़क, नवीकरणीय ऊर्जा और विद्युत पारेषण सहित कई क्षेत्रों में फैली हुई हैं। प्रधानमंत्री बालोतरा के पचपदरा में भारत के पहले ग्रीनफील्ड एकीकृत रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल परिसर राष्ट्र को समर्पित करेंगे, जो देश के ऊर्जा और पेट्रोकेमिकल क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है।
1: रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स प्रदेश के पश्चिमी जिलों में निवेश, रोजगार और विकास के नए द्वार खोलेगा। राजस्थान रिफाइनरी परियोजना MSME, पैकेजिंग, टेक्सटाइल, ऑटो पार्ट्स व एग्री फिल्म्स जैसे उद्योगों को भी सशक्त करेगी, जिससे प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी। जयपुर मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण में उत्तर दक्षिण कॉरिडोर विकसित किया जाएगा, जो शहर में मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देगा। इस चरण से एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर संबंधित परिवहन साधनों एवं मेट्रो सुविधा का एकीकरण किया जाएगा, जिससे नागरिकों को सुगम परिवहन सुविधा उपलब्ध होगी। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जोधपुर।
0: प्रधानमंत्री चूरू शार्दुलपुर और चूरू रतनगढ़ रेल दोहरीकरण परियोजनाओं और राष्ट्रीय राजधानी 125A जोधपुर रिंग रोड खंड 2 भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। श्री मोदी राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों में भर्ती किए गए लगभग 54,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र भी सौंपेंगे। प्रधानमंत्री आज शाम गुजरात के लिए रवाना होंगे, जहां वे सानंद में CG सेमी आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट सुविधा का उद्घाटन करेंगे। ये उद्घाटन भारत के सेमीकंडक्टर विनिर्माण क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।
2: सानंद में शुरू हो रही यह अत्याधुनिक CG सेमी ऑसेट सुविधा भारत को वैश्विक सेमीकंडक्टर निर्माण के मानचित्र पर एक भरोसेमंद केंद्र के रूप में स्थापित करेगी। पूरी क्षमता से शुरू होने के बाद इस संयंत्र से हर साल लगभग 5 अरब सेमीकंडक्टर चिप्स का उत्पादन किया जा सकेगा। यह प्लांट डिजाइनिंग, वेफर सॉर्टिंग से लेकर फाइनल टेस्टिंग तक की पूरी श्रृंखला को एक छत के नीचे उपलब्ध कराएगा। वर्तमान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग के कारण दुनिया भर में बढ़ रही उच्च स्तरीय मेमोरी और स्टोरेज सॉल्यूशंस की जरूरतों को पूरा करने में भी यह प्लांट अहम भूमिका निभाएगा। इसके साथ ही यहाँ निर्मित होने वाली चिप्स की विशेष रूप से ऑटोमोटिव, दूरसंचार, 5G और इंटरनेट ऑफ थिंग्स जैसे अग्रणी क्षेत्रों को आपूर्ति की जाएगी। अपर्णा खूट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: गुजरात में आतंकरोधी दस्ते ATS ने पाकिस्तान स्थित प्रतिबंधित आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन्हें गुजरात और मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों से गिरफ्तार किया गया। गुजरात ATS ने बताया कि आरोपी पाकिस्तानी हैंडलर्स के संपर्क में थे और गुजरात में जैश ए मोहम्मद का नेटवर्क स्थापित करने और आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए काम कर रहे थे। वे जैश ए मोहम्मद की विचारधारा का गुजराती में अनुवाद और प्रसार भी कर रहे थे। जांच में पता चला है कि पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन आरोपियों को वित्तीय सहायता भी पहुंचा रहा था। आरोपियों को 14 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। गृहमंत्री अमित शाह तथा कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अल नीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम वर्षा और उसके प्रभाव की स्थिति की कल समीक्षा बैठक की। केंद्रीय गृह सचिव और केंद्रीय कृषि तथा किसान कल्याण सचिव सहित विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के वरिष्ठ अधिकारी बैठक में उपस्थित थे।
3: गृह मंत्री ने कहा कि सरकार अल नीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में सामान्य

0: सामान्य से कम वर्षा और संभावित सूखे की स्थिति पर लगातार नजर रख रही है। उन्होंने कृषि मंत्रालय और सभी संबंधित मंत्रालयों को किसानों को उपयुक्त फसलों की बुवाई के बारे में परामर्श देने के लिए राज्य सरकारों के साथ समन्वय करने का निर्देश दिया। श्री शाह ने जल संसाधन विभाग के अधिकारियों को देश के सभी जल भंडारों की निगरानी करने तथा विद्युत मंत्रालय के सचिव को बिजली की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई का निर्देश भी दिया। श्री शाह ने कहा कि गृह मंत्रालय के अंतर मंत्रालय केंद्रीय दल को असम और अरुणाचल प्रदेश भेजा जाए ताकि बाढ़ से हुए नुकसान का आकलन किया जा सके। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से दुर्गा प्रसाद।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @HIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत इस साल $1 ट्रिलियन के निर्यात लक्ष्य को हासिल कर लेगा। पहली तिमाही में ही सालाना निर्यात लक्ष्य का लगभग 15% पूरा हो चुका है। नई दिल्ली में व्यापार बोर्ड की बैठक में श्री गोयल ने कहा कि इसके लिए वस्तुओं का निर्यात $440 अरब से बढ़ाकर करीब $530 अरब और सेवाओं का निर्यात $421 अरब से बढ़ाकर करीब $470 अरब करना होगा। उन्होंने कहा कि पहली तिमाही में वस्तुओं के निर्यात में 15% और सेवाओं के निर्यात में लगभग 10-11% की वृद्धि की उम्मीद है। श्री गोयल ने कहा कि भारत ने वित्त वर्ष 2025-26 में $863 अरब का अब तक का सबसे अधिक निर्यात किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन और फ्रांस के वित्त मंत्री होला लेस्क्यूर ने कल फ्रांस में भारत फ्रांस आर्थिक और वित्तीय वार्ता की सह अध्यक्षता की। दोनों मंत्रियों ने भारत में आर्थिक विकास के लिए फ्रेंच डेवलपमेंट एजेंसी के काम की महत्ता को स्वीकार करते हुए भविष्य की परियोजनाओं की संभावनाओं का स्वागत किया। दोनों मंत्रियों ने भारत और फ्रांस के बीच आर्थिक, वित्तीय, तकनीकी, निवेश और व्यापार से जुड़े मामलों पर बातचीत के लिए इस आर्थिक और वित्तीय वार्ता को मुख्य मंच के तौर पर इस्तेमाल करने का संकल्प लिया। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अब तक 1,02,000 से ज्यादा गणना प्रपत्र डिजिटाइज किए जा चुके हैं। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी के कार्यालय के अनुसार दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के अंतर्गत लगभग 33,14,000 फॉर्म बांटे गए हैं। दावे और आपत्तियां 5 अगस्त से 4 सितंबर के बीच दर्ज कराए जा सकते हैं। अंतिम मतदाता सूची 7 अक्टूबर को जारी की जाएगी। मतदाता www.voters.eci.gov.in पर ऑनलाइन गणना प्रपत्र भर सकते हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार आज मध्य प्रदेश के 2 दिन के दौरे पर रहेंगे। श्री कुमार आज इंदौर पहुंचेंगे, जहां वे लता मंगेशकर सभागृह में आयोजित बूथ लेवल अधिकारियों के सम्मेलन में शामिल होंगे। इस दौरान वे इंदौर, उज्जैन, देवास, धार और खंडवा जिले के 1,500 से अधिक बूथ लेवल अधिकारियों के साथ सीधा संवाद करेंगे। गुजरात राज्य चुनाव आयोग ने विभिन्न स्थानीय स्वशासन निकायों में 15 रिक्त सीटों के लिए आगामी उपचुनावों का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। इन सीटों के लिए मतदान 28 जुलाई और मतगणना 30 जुलाई को होगी। नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि 14 जुलाई है। वहीं जिला और तालुका पंचायत सीटों के लिए 16 जुलाई तक नाम वापस लिए जा सकते हैं, जबकि नगर निगम और नगर पालिका सीटों के लिए नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि 17 जुलाई है। ईरान में पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह सैयद अली खामेनेई का 6 दिवसीय राजकीय अंतिम संस्कार तेहरान में आज से शुरू होगा। अधिकारियों को लाखों शोक संतप्त लोगों के इसमें शामिल होने की उम्मीद है। ईरान के वरिष्ठ नेताओं, सैन्य कमांडरों और विदेशी गणमान्य व्यक्तियों ने तेहरान के मोसल्ला में आयतुल्लाह अली खामेनेई को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन, संसद अध्यक्ष मोहम्मद बगेर गालिबोव, विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची और रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के कमांडर अहमद वाहिदी शामिल थे। भारत की ओर से बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश मामलों की राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा अंतिम संस्कार में शामिल हुए। अन्य विदेशी गणमान्य व्यक्तियों में रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव, चीन के वरिष्ठ प्रतिनिधि हे वेई, अफगानिस्तान के कार्यवाहक विदेश मंत्री अमीर खान मुताकी और कई देशों के प्रतिनिधिमंडल शामिल थे। अंतिम संस्कार यात्रा अगले कुछ दिन तक जारी रहेगी और इस महीने की 9 तारीख को पवित्र शहर मशहद में सुपुर्द खाक किया जाएगा। इसके बाद 40 दिन तक सार्वजनिक शोक मनाया जाएगा। पेरू में केको फुजिमोरी को राष्ट्रपति चुनाव के दूसरे दौर का विजेता घोषित किया गया है। इस महीने के अंत में पदभार ग्रहण करने पर वे पिछले 10 वर्ष में पेरू की 9वीं राष्ट्रपति बनेंगी। पेरू के चुनाव आयोग ने कल औपचारिक रूप से उनकी जीत की पुष्टि की। फुजिमोरी ने 7 जून को दूसरे दौर के चुनाव में रॉबर्टो सांचेस को हराया। सोशल मीडिया पर यह दावा किया जा रहा है कि 20% एथेनॉल मिले ईंधन से गाड़ियों का माइलेज कम हो जाता है, जो कि गलत और भ्रामक है। ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने बड़े पैमाने पर परीक्षण किए। इन परीक्षणों में गाड़ियों की ईंधन दक्षता पर कोई खास असर नहीं देखा गया। और अब खेल खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
2: फीफा फुटबॉल विश्व कप में अर्जेंटीना ने अमेरिका के मियामी गार्डन्स में खेले गए रोमांचक राउंड ऑफ 32 के मैच में काबो वर्डे को अतिरिक्त समय के बाद 3-2 से हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। लियोनेल मेसी ने टूर्नामेंट में अपना 7वां गोल करते हुए मैच के 29वें मिनट में अर्जेंटीना को बढ़त दिलाई। मैच का फैसला 111वें मिनट में निर्णायक गोल से हुआ। प्री क्वार्टर फाइनल में अब मंगलवार को अर्जेंटीना का सामना मिस्र से होगा। इससे पहले मिस्र ने ऑस्ट्रेलिया को पेनल्टी शूटआउट में 4-2 से हरा कर प्री क्वार्टर फाइनल में जगह पक्की की थी। फिलहाल राउंड ऑफ 32 के मैच में कोलंबिया और घाना का मुकाबला अभी जारी है। और अगर बात करें क्रिकेट की तो भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा T20 मैच आज मैनचेस्टर में खेला जाएगा। भारतीय समय के अनुसार ये मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा। इसके अलावा विंबलडन टेनिस प्रतियोगिता में नोवाक जोकोविच ने पुरुष सिंगल्स वर्ग में सर्वाधिक मैच जीतने में रोजर फेडरर के रिकॉर्ड की भी बराबरी कर ली है।
1: मौसम विभाग ने गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, पश्चिमी मध्य प्रदेश और उड़ीसा में मूसलाधार और कुछ स्थानों पर आज तेज बारिश की चेतावनी जारी की है। पूर्वी राजस्थान, पूर्वी मध्य प्रदेश, तटीय कर्नाटक, तेलंगाना और विदर्भ में अगले 2 दिन तक मूसलाधार बारिश की संभावना है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
3: धन्यवाद कनक। रक्षा अधिग्रहण परिषद DAC की बैठक में 52,000 करोड़ रुपए के सौदे स्वीकृत, हिंदुस्तान की सुर्खी है। पत्र लिखता है ड्रोन, टैंक, मिसाइल की खरीद को दी मंजूरी। लोकसत्ता लिखता है सेना की बढ़ेगी ताकत। हिंदुस्तान, पंजाब केसरी, अमर उजाला, दैनिक ट्रिब्यून सहित अनेक अखबारों ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी प्रकरण में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की प्रतिक्रिया को प्रमुखता से छापा है। लोकसत्ता ने संघ के सह कार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले का बयान दिया है, राम भक्तों को पहुंचा आघात, दोषियों को मिले सजा। सरकार द्वारा 7 चीनी ऐप हटाए जाने पर दैनिक भास्कर की हेडलाइन है, अब बीच रास्ते बंद नहीं होंगे ई रिक्शा। अमर उजाला ने लिखा है बैट BMS जैसे ऐप पर सख्ती, ब्लूटूथ से कमजोर पासवर्ड वाली बैटरियों को बंद कर देते थे बदमाश। राजस्थान पत्रिका ने 3 तलाक और हलाला जैसी प्रथाओं पर इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा 9 आरोपियों की याचिका खारिज करते हुए फटकार लगाने की खबर दी है। हलाला 3 तलाक की आड़ में नहीं दे सकते यौन शोषण की अनुमति। दैनिक भास्कर ने आजकल भागदौड़ जिंदगी, ऑफिस का तनाव और हर वक्त काम करने की सनक से बर्नआउट हुए लोगों को लाई डाउन की सलाह दी है। घास पर चादर बिछाएं, लेट जाएं और कुछ ना करें, मानसिक थकान दूर, दिल दिमाग रिचार्ज होंगे। देशबंधु ने लिखा है अमरनाथ श्राइन बोर्ड और प्रशासन के सामने खड़ी हुई नई चुनौती, बिना पंजीकरण हजारों की तादाद में पहुंचे श्रद्धालु। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का आकलन जनसत्ता की पहली खबर है, अलनीनो के ताकतवर होने से दुनिया के कई हिस्सों में लू, सूखा और भारी वर्षा का बढ़ेगा खतरा।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान और गुजरात में कई विकास परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे। बालोतरा में देश के पहले ग्रीनफील्ड एकीकृत रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल परिसर का उद्घाटन करेंगे। गुजरात आतंकरोधी दस्ते ने पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े 8 लोगों को गिरफ्तार किया। केंद्र ने सामान्य से कम वर्षा और अलनीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में संभावित सूखे के हालात की समीक्षा की। मौसम विभाग ने गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र और ओडिशा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। फीफा विश्व कप में म्यामी में हुए रोमांचक मुकाबले में अर्जेंटीना काबो वर्डे को 3-2 से हराकर अंतिम 16 में, मिस्र भी अंतिम 16 में पहुंचा। और मैनचेस्टर में दूसरे T20 क्रिकेट मैच में आज शाम भारत का मुकाबला इंग्लैंड से। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Anuja Kumar. The headlines. Prime Minister Narendra Modi to launch several development projects in Rajasthan and Gujarat today to inaugurate country's first greenfield integrated refinery cum petrochemical complex in Balotra. Gujarat anti-terrorist squad arrests 8 people associated with Pakistan-based terror outfit Jaish-e-Mohammed. Centre reviews below normal rainfall situation and potential drought conditions in certain areas across country due to El Nino. IMD issues red alert for heavy to very heavy rainfall over Gujarat, Goa, Maharashtra and Odisha for today. In FIFA World Cup, Argentina enter round of 16 after defeating Cabo Verde in a thrilling 3-2 encounter at Miami. Egypt also cruise into pre-quarterfinals. And men in blue to take on England in second T20 in Manchester this evening. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi will be on a day-long visit to Rajasthan and Gujarat today to inaugurate and lay the foundation stone of several development projects. The Prime Minister will first travel to Rajasthan, where he will inaugurate the new terminal building of Jodhpur Airport this morning. The project, worth 480 crore rupees, is designed to handle up to 20 lakh passengers annually. He will also launch the modified Udaan scheme in Jodhpur. Thereafter, Mr. Modi will travel to Balotra, where he will dedicate, inaugurate and lay the foundation stone for development projects worth approximately 1.06 lakh crore rupees this afternoon. These projects span multiple sectors, including petrochemicals, urban transport, railways, roads, renewable energy and power transmission. Prime Minister Modi will also lay the foundation stone for Phase 2 of the Jaipur Metro Rail project, which has a total cost of over 13,000 crore rupees. More from our correspondent.
5: The refinery and petrochemical complex is expected to open new avenues for investment, employment and industrial growth in the state's western districts. The Rajasthan refinery project will also boost sectors such as MSMEs, packaging, textiles, auto components and agri-films, providing a fresh boost to the state's economy. Built on Rajasthan's challenging desert terrain, the project is a remarkable feat of engineering. The second phase of Jaipur Metro Rail project will develop the north South corridor, significantly enhancing the city's multimodal connectivity. The corridor will integrate metro services with the airport, railway station and bus terminal, providing seamless and more convenient public transport for citizens. Jitendra Dwivedi, Akashwani News, Jodhpur.
4: Later in the evening, Prime Minister Modi will travel to Gujarat, where he will inaugurate the CG semi-outsourced semiconductor assembly and test facility at Sarnand in Ahmedabad. The project is one of the first 4 approved under the India Semiconductor Mission and has been developed with a total investment of over 7,500 crore rupees. Our correspondent has the details.
6: The newly operational CG Semi Outsourced Semiconductor Assembly and Test Facility represents a major milestone in India's journey towards building a self-reliant technology ecosystem. Once fully ramped up, the plant will have an annual production capacity of up to 5 billion semiconductor chips. It will offer comprehensive end-to-end packaging and testing services, including wafer sorting, package design, and failure analysis. Driven by rapid advancements in artificial intelligence and high-performance computing, the facility in Sanand is designed to meet the global demand for advanced memory and storage solutions. The facility will directly cater to global and domestic customers across critical industries, including automotive, industrial automation, 5G communication, and Internet of Things. Aparna Khunt, Akashwani News, Ahmedabad.
4: Gujarat Anti-Terrorist Squad, ATS, has arrested 8 people associated with the Pakistan-based banned terror outfit Jaish-e-Mohammed. They were arrested from various districts of Gujarat and Madhya Pradesh in simultaneous operations yesterday. According to the Gujarat ATS, the accused were in touch with Pakistani handlers and actively working on behalf of Jaish-e-Mohammed to set up an active network in the state of Gujarat to further its terror activities. They were also working to translate the literature of Jaish-e-Mohammed into Gujarati and spread its ideology. A total of 254 pieces of literature, including the flag of Jaish-e-Mohammed, were recovered from the accused. The investigation also revealed financial links to the Pakistan-based terror group. The arrested individuals have been sent to a 14-day police remand. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal has said that India is on track to achieve its $1 trillion US dollar export target, with nearly 15% of the annual exports already recorded in the first quarter of the current financial year. Addressing the Board of Trade meeting in New Delhi yesterday, Mr. Goyal said, to achieve the target, goods exports will need to increase from about $440 billion to around $530 billion, while services exports will have to rise from roughly $421 billion to about $470 billion.
7: Our aim is to grow in the current year. We were $863 billion last year. We want to grow to $1 trillion export this year. And to reach $1 trillion, our goods export will have to increase from 440 to about 530, $90 billion increase. That is 17% growth in goods. Services will have to grow from 421 to about 470.
4: Over 1,02,000 enumeration forms across the national capital have been digitized so far. According to Office of the Chief Electoral Officer of Delhi, about 33,14,000 forms have been distributed as part of the Special Intensive Revision of Electoral Rolls in Delhi. The house-to-house distribution of electoral enumeration forms is currently underway in Delhi. Claims and objections can be filed from the 5th of August to the 4th of September. The final electoral roll will be published on the 7th of October. This is Akashwani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on our X handle at AIR News Alerts. And for details of these stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download the News on AIR app. Union Home Minister Amit Shah and Agriculture and Farmers Welfare Minister Shivraj Singh Chauhan reviewed the situation regarding below normal rainfall and its impact in certain parts of the country due to El Nino. Senior officials from various ministries and departments, including the Union Home Secretary and the Union Agriculture and Farmers Welfare Secretary, were present at the meeting yesterday. During the meeting, Mr. Shah said, the government is continuously monitoring the situation regarding below normal rainfall and potential drought conditions in certain parts of the country due to El Nino. He directed the Ministry of Agriculture and all related ministries to remain vigilant and coordinate with the state governments to advise farmers on the appropriate crops to sow. Mr. Shah instructed the officials from the Department of Water Resources to monitor all water reservoirs across the country. The claims circulating in social media that E20 fuel, which is a blend of 20% ethanol and 80% petrol, causes a drop in vehicle mileage are misleading. According to extensive field trials led by the Automotive Research Association of India, in collaboration with Indian Oil Corporation Limited, Indian Institute of Petroleum, Dehradun, and the Society of Indian Automobile Manufacturers, no significant negative impact on vehicle fuel efficiency has been demonstrated. The trials covered approximately 40,000 kilometers on passenger cars and 20,000 kilometers on two-wheelers. It said the mileage is influenced by many factors beyond fuel type, including driving habits, maintenance, tire pressure and alignment, and air conditioning load. In Jammu and Kashmir, a total of 12,168 pilgrims paid obeisance at the Holy Cave Shrine on the opening day of the annual Amarnath Yatra yesterday, as the pilgrimage began from the twin base camps of Baltal and Pahalgam. The Yatra commenced in the early hours from both the traditional 48-kilometer Noonwan Pahalgam route and the shorter 14-kilometer Baltal route despite intermittent rainfall. Pilgrims, including men, women and sadhus, began their journey to the 3,880-meter-high Holy Cave Shrine amid chants of Bam Bam Bhole after being flagged off by the respective deputy commissioners and senior superintendents of police from the two base camps. Governor of Bihar, Lieutenant General Syed Atta Hasnain, and Minister of State for External Affairs Pabitra Margarita represented India at the funeral ceremony for the former Supreme Leader of Iran, Grand Ayatollah Sayyid Ali Khamenei, in Tehran. In a social media post, Mr. Margarita said they conveyed respect on behalf of the government and the people of India. They also extended condolences to the families of those who lost their lives in the recent conflict. On to sports. In the FIFA World Cup, Argentina

0: नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम करकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। नीति आयोग के फिस्कल हेल्थ इंडेक्स में बेहतर वित्तीय अनुशासन के लिए झारखंड को मिला अचीवर का दर्जा। देश के टॉप 3 राज्यों में बनाई जगह। राज्य में सुखाड़ की आशंका को लेकर कृषि मंत्री ने की समीक्षा बैठक। कम पानी वाली मिलेट की खेती बढ़ाने पर दिया जोर। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने की SIR कार्यक्रम की समीक्षा। कहा, हर पात्र नागरिक का नाम वोटर लिस्ट में हो दर्ज। राज्य के संथाल और कोल्हान सहित आधे हिस्से में मॉनसून सक्रिय। 8 जुलाई से पूरे राज्य में भारी बारिश का अनुमान। और रांची के खेल गांव में तीसरी जिला शूटिंग चैंपियनशिप का आगाज। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने निशाना लगाकर किया शुभारंभ। और अब समाचार विस्तार से। नीति आयोग के फिजिकल हेल्थ इंडेक्स में झारखंड ने देश के टॉप 3 राज्यों में जगह बनाई है। बेहतर वित्तीय अनुशासन के कारण राज्य को अचीवर श्रेणी मिली है। झारखंड ने टैक्स राजस्व 60% से अधिक रखा और राजकोषीय घाटे को 3% से नीचे बनाए रखा। संतुलित कर्ज प्रबंधन और बुनियादी ढांचे पर खर्च से राज्य की वित्तीय स्थिति मजबूत हुई है। राज्य में कमजोर मॉनसून और एल नीनो के प्रभाव से पैदा हुई सुखाड़ की आशंका को लेकर कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने रांची में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। राज्य में अब तक सामान्य से 54% कम बारिश दर्ज की गई है। मंत्री ने पंचायत स्तर पर विशेष अभियान चलाकर कम पानी वाली मिलेट की खेती को बढ़ावा देने और आपातकालीन योजना लागू करने के निर्देश दिए हैं।
1: वर्षा का सदुपयोग करते हुए हम लोग लगभग कम से कम 60% तक बिचड़ा हम लोग ले जा पाएंगे और आशा करते हैं कि जितने भी किसान हैं वो भी जो अन्य फसल हैं उसके तरफ भी अल्टरनेटिव के रूप में आगे बढ़ेंगे। कुछ कुछ जिला में हम लोगों को रिपोर्ट भी हुआ है कि जैसे मोटे अनाज जैसे मड़ुआ एक्सेट्रा, दलहन, तिलहन, इन सभी फसलों का भी किसान ज्यादा उपयोग कर रहे हैं इस साल वर्षा को देखते हुए।
0: इधर राज्य सरकार प्रदेश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त करने के लिए कृषि को उद्योग का दर्जा देने की तैयारी कर रही है। कृषि निदेशक विद्यानंद शर्मा पंकज ने बताया कि नई कृषि नीति के तहत किसानों को आसान शर्तों पर बैंक लोन, प्रोसेसिंग यूनिट्स और ग्लोबल मार्केट लिंकेज की सुविधा मिलेगी, जिससे पारंपरिक खेती एक मुनाफे वाले बिजनेस में तब्दील हो सके।
2: झारखंड मोर और लेस जो है कृषि प्रधान राज्य ही है, खनिज भी है यहाँ पे। हम लोग एग्रीकल्चर को बढ़ावा दे सकते हैं, उसमें किसानों को अधिकतम सब्सिडी मिले, दस्ती घोषित होने से जो उनके जो एलाइड बेनिफिट्स हैं वो उनको प्राप्त हो, इसलिए हम लोग एग्रीकल्चर पॉलिसी बना रहे हैं। और एग्रीकल्चर पॉलिसी इसी बात को ध्यान में रख के बनाया जा रहा है कि किसानों को इसमें अधिकतम किस तरह से हम लोग लाभ पहुंचाए।
0: स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने रांची के रिम्स में अत्याधुनिक क्षेत्रीय नेत्र संस्थान का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि अब राज्य में आंखों की जटिल बीमारियों का आधुनिक इलाज संभव होगा।
3: रिम्स में बेहतर से बेहतर हम सुविधा कैसे दें, इस दिशा में मेरा फोकस रहता है। झारखंड वासियों को आईज हॉस्पिटल समर्पित करने जा रहे हैं। रिम्स के कैंपस में ये हॉस्पिटल है। हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी का जो सपना है, विजन है कि आम जनता तक हम स्वास्थ्य सुविधा पहुंचाएं, उनका बेहतर इलाज हम करें।
0: राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने विशेष गहन मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम की ऑनलाइन समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि कोई भी पात्र नागरिक मतदाता सूची से वंचित न रहे। घर घर गणना और डिजिटाइजेशन का काम तेजी से पूरा करने को कहा गया है। सभी नए नाम 5 अगस्त 2026 को प्रारूप मतदाता सूची में प्रकाशित किए जाएंगे। जमशेदपुर के बागबेड़ा की बेटी तनिषा गौतम आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीधा संवाद करेंगी। गुजरात के सानंद में भारत की पहली मेड इन इंडिया कमर्शियल सेमीकंडक्टर चिप लॉन्च के अवसर पर यह संवाद होगा। डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनी के रूप में कार्यरत तनिषा इस ऐतिहासिक मिशन से जुड़े अपने अनुभव प्रधानमंत्री के साथ साझा करेंगी। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @

0: आईआर न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। आगामी 8 और 9 जुलाई को नई दिल्ली में झारखंड सरकार की ओर से आयोजित होने वाले नेशनल स्टेक होल्डर्स कंसल्टेशन की तैयारी तेज कर दी गई है। पर्यटन मंत्री सुदीव्य कुमार ने इसे ऐतिहासिक कदम बताते हुए कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में हो रहा यह आयोजन राज्य के विजन 2050 को गति देने और झारखंड को आईटी, एआई तथा औद्योगिक निवेश का प्रमुख केंद्र बनाने में मील का पत्थर साबित होगा।
1: हम इंडस्ट्री, आईटी और टूरिज्म को नेशनल लेवल पर भी प्रमोट करना चाहते हैं, जिसकी शुरुआत हम लोग दिल्ली से करेंगे। झारखंड एक ऐसा प्रदेश है जहां पर मानसून में ट्रेवल करना सबसे सेफ है। हमारे यहां कोई लैंडस्लाइड्स नहीं है, कोई फ्लड नहीं है, किसी पर्यटक के रास्ते बंद होने की स्थिति में फंसने की कोई संभावना नहीं है। तो हम दो पॉलिसी का ड्राफ्ट वहां प्रस्तुत करने जा रहे हैं। एक झारखंड की टूरिज्म पॉलिसी का ड्राफ्ट है और दूसरा झारखंड की होम स्टे पॉलिसी का ड्राफ्ट है।
0: प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने कथित शराब घोटाला और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूर्व वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव के पुत्र रोहित उरांव को नया समन जारी किया है। ईडी ने उन्हें 6 और 7 जुलाई को रांची स्थित क्षेत्रीय कार्यालय में पूछताछ के लिए उपस्थित होने का निर्देश दिया है। इससे पहले जून में समय मांगने के कारण उनकी पूछताछ टल गई थी। रांची जिले के तमाड़ प्रखंड अंतर्गत बेलबेड़ा गांव में मलेरिया का प्रकोप बढ़ने से स्वास्थ्य विभाग अलर्ट है। विभाग द्वारा चलाए जा रहे विशेष स्क्रीनिंग अभियान में अब तक 336 लोगों की जांच की गई है, जिनमें से 160 लोग मलेरिया पॉजिटिव पाए गए हैं। प्रभावित इलाके में मेडिकल टीमें घर घर जाकर लोगों की जांच कर रही हैं और संक्रमितों को मौके पर ही दवाएं दी जा रही हैं। राज्य के आधे हिस्से में अगले 4 दिनों तक मॉनसून सक्रिय रहेगा। इससे संथाल और कोल्हान सहित पश्चिम बंगाल से सटे जिलों में अच्छी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार आगामी 8 जुलाई से मॉनसून फिर रफ्तार पकड़ेगा। रांची के खेल गांव में तीसरी जिला शूटिंग चैंपियनशिप शुरू हो गई है। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने खुद निशाना लगाकर प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। उन्होंने युवाओं से खेलों से जुड़ने की अपील की।
2: के पीछे जो योग अभ्यास है, मैं समझता हूँ कि ये हमारी संस्कृति यही बताती है कि हम अपने जीवन में या फिर किसी भी क्षेत्र में जहाँ हम काम कर रहे हो, हमारे पास अनुशासन होने की आवश्यकता है। एक सबसे बड़ी बात मैं समझता हूँ कि यदि हम धैर्य का धारण करते हैं तो हम धर्म का पालन कर।
0: और अब अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित अधिकतर प्रमुख अखबारों ने राज्य के वित्त मंत्री द्वारा सुरक्षा वापस किए जाने की खबर को पहले पन्ने पर स्थान दिया है। दैनिक भास्कर ने लिखा है, नाराज वित्त मंत्री ने तीनों गाड़ियां और सभी 16 सुरक्षाकर्मी लौटाए। हिंदुस्तान की सुर्खी है, झारखंड की पंचायतों को मिलेंगे 14,231 करोड़। प्रभात खबर के शब्द हैं, वित्त विभाग में लटक रही योजनाओं की फाइल, तीन मंत्रियों ने जताई आपत्ति। दैनिक जागरण लिखता है, जेपीएससी सिविल सेवा पीटी में 2,204 सफल। और अंत में मुख्य समाचार। नीति आयोग के फिजिकल हेल्थ इंडेक्स में बेहतर वित्तीय अनुशासन के लिए झारखंड को मिला अचीवर का दर्जा। देश के टॉप 3 राज्यों में बनाई जगह। राज्य में सुखाड़ की आशंका को लेकर कृषि मंत्री ने की समीक्षा बैठक। कम पानी वाली मिलेट की खेती बढ़ाने पर दिया जोर। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने की SIR कार्यक्रम की समीक्षा। कहा, हर पात्र नागरिक का नाम वोटर लिस्ट में हो दर्ज। राज्य के संथाल और कोल्हान सहित आधे हिस्से में मॉनसून सक्रिय। 8 जुलाई से पूरे राज्य में भारी बारिश का अनुमान। और रांची के खेल गांव में तीसरी जिला शूटिंग चैंपियनशिप का आगाज। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने निशाना लगाकर किया शुभारंभ। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन। आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।
1: एक बार एक राहगीर रास्ते के किनारे पर बैठा था और आते जाते सबको पूछ रहा था, मुझे वहां पहुंचना है, रास्ता कहाँ है। पहले को पूछा, दूसरे को पूछा, चौथे को पूछा, सबको पूछता ही रहता था। और उसके बगल में एक सज्जन बैठे थे, वो सारा देख रहे थे। बाद में खड़ा हुआ, खड़ा होकर के किसी को पूछने लगा तो वो सज्जन खड़े होकर के उसके पास आए। उसने कहा, देखो भाई, तुमको जहां जाना है ना, उसका रास्ता इस तरफ से जाता है। तो उस राहगीर ने उसको पूछा, भाई साहब, आप इतनी देर से मेरे बगल में बैठे हो, मैं इतने लोगों को रास्ता पूछ रहा हूँ, कोई मुझे बता नहीं रहा है, आपको पता था तो आप क्यों नहीं बताते थे। बोले, मुझे भरोसा नहीं था कि तुम सचमुच में चल करके जाना चाहते हो या नहीं चाहते हो, या ऐसे ही जानकारी के लिए पूछते रहते हो। लेकिन जब तुम खड़े हो गए तो मेरा मन कर गया, हाँ, अब तो इस आदमी को जाना है, पक्का लगता है। तब जाकर के मुझे लगा कि मुझे आपको रास्ता दिखाना चाहिए। मेरे देशवासियों, जब तक हम चलने का संकल्प नहीं करते, हम खुद खड़े नहीं होते, तब रास्ते दिखाने वाले भी नहीं मिलेंगे, हमें उंगली पकड़ कर चलाने वाले नहीं मिलेंगे। चलने की शुरुआत हमें करनी पड़ेगी और मुझे विश्वास है कि 125 करोड़ देशवासी जरूर चलने के लिए समर्थवान है। चलते रहेंगे।

FM के 101.7 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का चयभाषा केंद्र है। श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं लोकगीतों का कार्यक्रम माटी की महक।

माटी की महक कार्यक्रम में श्रोताओं, आज हम आपको सुनवा रहे हैं संथाली लोकगीत। कलाकार हैं बंगाली हंसदा एवं साथी।

अभी आप सुन रहे थे संथाली लोकगीत, कलाकार थे बंगाली हंसदा एवं साथी। इसके साथ ही लोकगीतों का कार्यक्रम माटी की महक अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के चयबासा केंद्र से बोल रहे हैं FM के 101.7 MHz पर। श्रोताओं, इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में दिन के 9 बज रहे हैं। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम विविधा।

अस्तित्व के लिए अत्यंत आवश्यक है। वृक्ष हमें शुद्ध ऑक्सीजन, फल फूल, औषधियाँ, लकड़ी तथा अनेक प्राकृतिक संसाधन प्रदान करती है। साथ ही साथ बढ़ते प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन और वनों की कटाई जैसे समस्याओं से हमें अवगत कराती है। इसी को देखते हुए भारत में प्रतिवर्ष 1 जुलाई से 7 जुलाई तक वन महोत्सव सप्ताह मनाया जाता है। तो आज के विविधा कार्यक्रम में हम चर्चा के माध्यम से जानेंगे वन महोत्सव सप्ताह के बारे में। श्रोताओं, वन महोत्सव सप्ताह मनाने का उद्देश्य अधिक से अधिक वृक्षारोपण करना और लोगों में पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। वन महोत्सव की शुरुआत वर्ष 1950 में तत्कालीन केंद्रीय कृषि एवं खाद्य मंत्री KM मुंशी ने की थी। उनका उद्देश्य लोगों को वृक्षों के महत्व से परिचित कराना है और पूरे देश में वृक्षारोपण को जन आंदोलन बनाना था। तब से यह सप्ताह पूरे भारत में उत्साहपूर्वक मनाया जाता है। श्रोताओं, वन महोत्सव सप्ताह का मुख्य उद्देश्य लोगों को अधिक से अधिक पेड़ लगाने और उनकी देखभाल के लिए प्रेरित करना है। इसके साथ ही वनों की कटाई रोकना, पर्यावरण संतुलन बनाए रखना, जैव विविधता का संरक्षण करना तथा आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वच्छ और हरित वातावरण तैयार करना भी इसका महत्वपूर्ण लक्ष्य है। श्रोताओं, वन पृथ्वी के फेफड़े कहे जाते हैं। वे कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करके हमारे लिए ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जिससे वायु शुद्ध रहती है। वन वर्षा चक्र को संतुलित रखने में और मिट्टी के कटाव को रोकने के साथ ही साथ भूजल स्तर बनाए रखने में भी सहायता प्रदान करते हैं। साथ ही साथ वन्य जीवों का प्राकृतिक आवास भी हमारे आसपास के जंगल ही हैं। इसके अलावे वन हमें औषधीय पौधे, फल फूल, लकड़ी, रबर, गोंद और अनेक उपयोगी वस्तुएं हमें प्रदान करते हैं। श्रोताओं, वन महोत्सव सप्ताह के दौरान विद्यालयों, महाविद्यालयों, सरकारी कार्यालयों, सामाजिक संस्थाओं और विभिन्न संगठनों द्वारा वृक्षारोपण अभियान चलाए जाते हैं। पर्यावरण संरक्षण पर रैलियां, जागरूकता कार्यक्रम, भाषण, निबंध, चित्रकला और वाद विवाद प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं। लोगों को पौधे लगाने के साथ साथ उनकी नियमित देखभाल करने की भी प्रेरणा दी जाती है। श्रोताओं, आजकल देखा जा रहा है कि वनों की अंधाधुंध कटाई हो रही है। हम अनावश्यक रूप से वनों को काट रहे हैं, जो कि हमारे लिए काफ़ी हानिकारक है। प्रत्येक व्यक्ति को हर वर्ष कम से कम एक पौधा अवश्य लगाना चाहिए और साथ ही साथ उसकी देखभाल भी करनी चाहिए। हमें कोशिश करनी चाहिए कि प्लास्टिक का उपयोग कम से कम करें। जल संरक्षण के साथ साथ पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार व्यक्ति बनना वन संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। श्रोताओं, वन महोत्सव सप्ताह में हमें प्रकृति के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना चाहिए। केवल पौधे लगाना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उनकी रक्षा और देखभाल करना भी हमारी जिम्मेदारी है। यदि प्रत्येक नागरिक वृक्षारोपण और वन संरक्षण में अपना योगदान दे, तो भारत को हरित, स्वच्छ और समृद्ध बनाया जा सकता है। तो आइए हम सभी संकल्प लें कि एक व्यक्ति एक पौधा अवश्य लगाएंगे और पर्यावरण संरक्षण में सक्रिय भागीदारी निभाएंगे। श्रोताओं, अभी हम चर्चा के

0: अति हमसे जान रहे थे वन महोत्सव सप्ताह के बारे में।
1: हिंसा से सनी राहें न अपनाओ, बच्चों के भविष्य को नई दिशा दिखाओ।
2: झारखंड पुलिस नक्सल मुक्त झारखंड की दिशा में कृत संकल्पित है। नक्सलवाद से मुक्त झारखंड हेतु सुरक्षा बलों द्वारा सघन नक्सल विरोधी अभियान जारी है। इस संदर्भ में न सिर्फ झारखंड पुलिस बल्कि नक्सलियों के परिवार जनों के द्वारा भी सक्रिय नक्सलियों को मुख्य धारा में जुड़ने की अपील की गई है।
3: बोले सब ओड़ा वापस को रुड़ना धरा रे नाकागी आम बोले रुड़ तबन में अले परिवार से मतलब पूरे ये ना
4: वरना मंगलोरा को गांव बरगरा आड़की थाना तो जंगल गया है तो आउ का कहाँ बना है वो लोग आउ का वो जिंदा है ना मैंने जिंदा है कोई को नाम रसने पार ली वह चलते एकदम हमरे पूरा एकदम अखन तो तुम ठीक हो है नहीं तो पूरा एकदम परिवार
5: नाम है रंगबला देवी कहाँ बारे भक्तो तो कहाँ तो घर आई नहीं हमरे घर है बहुत दुख के बात है तो अखन बात हो जा है
6: मुतुम लो बुरा मिसिंग तमसाय अनुता तमसाय भरूपा ऐसे न करना ऐसे दुकुरन में आई है वापा में रुल तपा में रुल वाह बेटा निकला
7: अन्यान तुम दो बुंदाई कोड़ा पटन तुम गुंडे कोड़ा अन्यान हम दो कोदमरी कोड़ा पुरो पटन पटन तुम कितने ही कोड़ा मुनीने बुरुड़ी ने बागिया तो कि मुना सीआरपी को लो पुलिस को लो इन्हीं लड़ाई चलाओ तने बुरुड़ी ने गोयां तो जाए तेरे काका भी वो उन्हें बुको को काको मेल नहीं है
8: अलग मुनी सुरंग पे ते आप ही लेकर नहीं सी जा हुरा रे मिनाई रो जिता हुरा रे मिनाई रो तो बुगिन रहते सेशन का है वो आगे बिता हुरा इनका
2: झारखंड सरकार आत्मसमर्पण के दौरान आत्मसमर्पण करने वाले उग्रवादी को श्रेणीवार 6 लाख तथा 3 लाख 2 बराबर किस्तों में देगी। साथ ही गृह निर्माण हेतु 4 डिसमिल भूमि 6,000 प्रति माह की वृत्ति पर व्यावसायिक प्रशिक्षण निशुल्क चिकित्सा बच्चों को शिक्षा हेतु शिक्षण शुल्क कन्यादान हेतु अनुदान उग्रवादी का 5 लाख तक का जीवन बीमा एवं इनके आश्रितों को सामूहिक बीमा 4 लाख तक का स्वनियोजन हेतु ऋण देने तथा अन्य कई लाभ देने का भी प्रावधान है। आए आत्मसमर्पण कर झारखंड सरकार के आकर्षक एवं उत्साहवर्धक आत्मसमर्पण एवं प्रत्यार्पण नीति का लाभ उठाएं। हिंसा छोड़ मुख्य धारा में शामिल होकर समाज व राज्य की समग्र विकास में अपना भागीदारी सुनिश्चित करें। इसके लिए मोबाइल नंबर 7008088527 पर संपर्क कर सकते हैं।
0: श्रोताओं विविधा कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं यह भेंट वार्ता। पर्यावरण के प्रति कितनी जागरूक हैं हमारी महिलाएं विषय पर जानकारी दे रही हैं वंदना राय, उनसे बातें कर रही हैं रेखा कुमारी।
9: नमस्कार। पर्यावरण के प्रति कितनी जागरूक हैं महिलाएं, इस विषय पर आप क्या कहना चाहेंगे?
10: महिलाएं पर्यावरण के बारे हमेशा प्राचीन काल से महिला हमेशा पर्यावरण के लिए जागरूक रही, क्योंकि ये पर्यावरण शुरू अपने घर से ही होता है। घर में बगीचा, छोटा छोटा सा बगीचा, जिसमें पहले तो बहुत जगह था, जमीन जगह था, फिलहाल अभी तो बहुत ही कम जगह है, तभी भी अपना गमला में पौधा लगाना, फूल गाछ लगाना, अपना फल गाछ लगाना अपना बगीचा में अभी भी महिला का बहुत शौक है। उसके बाद घर का जिसको बोलते हैं रसोई घर का जो सामान, जैसे मिर्चा, छोटा छोटा मिर्चा गाछ, टमाटर, सब्जी, फूल लेके पर्यावरण के लिए, ये पर्यावरण भी हो जाता है, अपना घरेलू
9: साग सब्जी भी
10: हो जाता है, उसमें अपना हाथ से उगाने का एक खुशी भी होती है
9: जी।
10: तो ऐसा करके

0: बहुत पुराना है, अभी भी हर घर में कहीं पर जिसका छत है वो भी देखोगे छोटा छोटा टब में गाछ लगाते हैं, छोटा छोटा पौधा लगाते हैं, फूल गाछ हो वो कहीं फल फल गाछ हो चाहे सब्जी गाछ हो। तो इस तरह का घर से ही अगर हम लोग शुरू करें
1: जी
0: पर्यावरण को ठीक रखने के लिए, तब देखोगे यही चीज़ धीरे धीरे सब अपना अपना घर में करने से पूरा परिवार, पूरा शहर, पूरा जगह ही पर्यावरण के लिए शुद्ध वातावरण देने के लिए तैयार हो जाता है।
1: नई पीढ़ी के लिए, विशेषकर महिलाओं के लिए पर्यावरण के प्रति जागरूक होने के लिए आप क्या कहेंगे?
0: देखिए इतना हम जानते हैं, इतना हम देख चुके हैं, अभी देख रहे हैं, अभी की पीढ़ी बहुत जागरूक है। अभी सब छोटा छोटा करीब किशोरी जिसको हम लोग कहते हैं, महिला तो है ही, किशोरी भी अपना बगान को, अपना घर को, अपना आसपास को वो सुंदर देखने के लिए करे, चाहे कुछ भी करे, लेकिन वो तो पर्यावरण तो वातावरण तो शुद्ध हो रहा है, शुद्ध हवा मिल रहा है, फूल मिल रहा है, जिसका अपना आत्मसंतुष्टि भी जिसमें मिलता है। तो ऐसा करके अभी जितना इस पीढ़ी बहुत जागरूक है, बहुत वो लोग अपना गाछ लेके जाते, आप देखोगे यहाँ से रास्ता का साइड में जितना पेड़, छोटा छोटा पेड़ पौधा मिलता है वो लोग लेके जाते हैं, लगाते हैं। ऐसा भी प्राचीन काल से हम लोग का यहाँ एक रीत भी है, रथ से उल्टा रथ तक इसका बीच में गाछ लगाना हम लोग का परंपरा हो चुका है। क्योंकि अभी बरसात का टाइम है, अभी गाछ लगाने से वो गाछ होगा ही, पेड़ पौधा लगाने से वो अपने से उसको देखभाल उतना नहीं करने पड़ता दूसरा मौसम से
1: की अपेक्षा जी।
0: तो उस हिसाब में अभी के क्या महिलाएं, क्या किशोरी, वो लोग बहुत जागरूक है और करते भी है, ये मैंने अच्छा हम लोग को दर्शन है, अच्छा हम लोग को संकेत है।
1: जी आज से लगभग 30-40 साल पहले पर्यावरण का परिवेश कैसा था?
0: वो तो कहने की बात ही है नहीं, कितने आज से 40-50 साल पहले चाईबासा का माहौल, चाईबासा का पर्यावरण का माहौल इतना अच्छा था जो मैंने कहा नहीं जा, क्योंकि बाहर से सब आते थे यहाँ पर चेंज के लिए, शैल ठीक करने के लिए, यहाँ पर महीना दो महीना रह के वो लोग जाते थे ठीक होके। यहाँ का पेड़ पौधा कितना बड़ा बड़ा, अभी तो इतना पेड़ पौधा काट के सब बड़ा बड़ा ये हो रहा है, लेकिन तभी का माहौल बहुत अच्छा था, गर्मी लगभग ना के बराबर थे, जो भी गर्मी आती थी एक मैंने एक महीना पूरा भी नहीं पड़ता था। तो तभी का माहौल बहुत अच्छा था क्योंकि बहुत पेड़ पौधे तभी हमारा इस आसपास में, हमारा शहर में रहा करता था। तो उस हिसाब में तो आज तो बहुत ही कम हो गया, क्योंकि बहुत पेड़ पौधा गाछ सब काट रहा है, जिस हिसाब से घर द्वार फ्लैट वगैरह हो रहा है। तभी भी हम लोग को उस हिसाब में भी हम लोग को जैसा जिन लोग का छत है, अभी तो फ्लैट तो सब 4-5-6 तला भी हो रहा है, लेकिन छत में अभी भी जिसका छत है वो अपना छत में जिसको बोलता है गार्डन बैल्कोनी, गार्डन बैल्कोनी यानी छोटा सा एक तो बैल्कोनी का जैसे निकाल के उसको मट्टी भर के भी वहाँ पर भी देखो कि कितना गाछ लगा रहा है छत में, ये भी एक तो अच्छा शुभ संकेत भी है, अच्छा भी विचार है पर्यावरण को शुद्ध करने के लिए। तो आगे अभी के हिसाब में पहले बहुत अच्छा,
1: अच्छा
0: था, हाँ बहुत अच्छा था।
1: अच्छा आज पर्यावरण की अशुद्धि में प्लास्टिक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, इस प्लास्टिक प्रदूषण को रोकने के लिए क्या करें महिलाएं, क्या कर सकती हैं?
0: सर्वप्रथम बहिष्कार प्लास्टिक को, लेकिन कुछ कुछ हम लोग का तो जिंदगी में प्लास्टिक ऐसा ओत पोत के हिसाब से जुड़ गए
1: जी बिल्कुल,
0: जो हम लोग चाह कर भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो प्लास्टिक हमारा घर आ रहा है
1: जी
0: भाई, इसका तुम कौन वाला कर सकोगे? जो कैरी बैग,
1: जी
0: इसका अलावा प्लास्टिक का डिब्बा में दवाई, प्लास्टिक का डिब्बा में हर चीज जो बिकता है वो तो हमको लाना ही है।
1: जी
0: उसको हम ऐसा करके उसको संभाल के अलग से कोई पॉलिथीन में, चाहे कोई बैग में, चाहे कुछ में रख के उसको अलग से उसको जला दें, तब हमको लगता है वो, नहीं तो ना मट्टी का साथ जहाँ पर हम फेंकेंगे, जहाँ
1: जी
0: पर गड्ढा करके भी फेंकेंगे, वहाँ का पूरा मट्टी
1: खराब हो
0: में
1: जाए।
0: खराब हो जाता है। तो उससे अच्छा हम लोग अगर जला दे तो हमको लगता है, मेरा विचार में वो बहुत माने ठीक है, ताकि और मिट्टी चाहे वातावरण खराब ना हो जाए।
1: और प्लास्टिक के रूप में मिलने वाली कैरी बैग का बहिष्कार करें।
0: मेरा वही कहना है,
1: जी
0: बैग बहिष्कार कर सकते हैं।
1: ये बाजार जाते वक्त हमेशा अपने
0: जैसा
1: साथ
0: थे
1: थैले,
0: पुराना जमाने में, तो हम लोग थैली लेके
1: जी
0: जाते
1: बिल्कुल
0: थे हमेशा, जो बाहर जाता था हम लोग को आदत हो चुका था बाहर
1: जी
0: जाने का, सब एक तो बैग हाथ में। लेकिन अभी तो हम लोग को मिल, जहाँ जाते थे वहीं पर हम लोग को कैरी बैग मिल
1: मिल
0: जाता था,
1: जाता है।
0: इसीलिए हम लोग का आदत छूट गया। फिर हम लोग आदत डालेंगे तो हम लोग को जरूर, हम लोग को फिर से हम लोग को वही आदत में, जहाँ जाए एक तो बैग लेके थैली लेके चले जाए,
1: जी
0: तो बस हम लोग अपना सामान ला सकते हैं, जिसमें प्लास्टिक का धीरे धीरे बहिष्कार, हम लोग को कैरी बैग
1: जी और
0: हम लोग
1: पर्यावरण को अशुद्ध होने से
0: से
1: हम लोग
0: बचा सकते हैं।
1: बचा सकते हैं। हमारे क्षेत्र का पर्यावरण, विशेषकर चाईबासा, यहाँ के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे?
0: चाईबासा का पर्यावरण और बाकी सब जगह से बहुत अच्छा है,
1: जी
0: क्योंकि यहाँ पर अभी भी इतना पेड़ पौधा कट गया, इतना पेड़ पौधा खत्म हो गया, तभी भी जैसे टाटा, घाटशिला, चक्रधरपुर, वहाँ से चाईबासा का वातावरण बहुत अच्छा है अभी भी, क्योंकि अभी भी यहाँ पर उतना पॉल्यूशन, जिसको हम लोग बोलते हैं दूषित,
1: जी
0: वो नहीं है। तभी भी आगे से तो जरूर कम हो गया, लेकिन तभी भी अभी भी ठीक है।
1: जी
0: तब बहुत कोई यहाँ आके इसका वो वातावरण का बारे बहुत अच्छा बोलता है, बाहर से जो लोग आता है बोलता है यहाँ पर बहुत अच्छा लगता है, गर्मी कम लगती है यहाँ पर वातावरण से, उन लोग को मैंने भूख, यहाँ का पानी, यहाँ का वातावरण भूख लगती है जो, और बाकी सब जगह से
1: काफी
0: बहुत
1: अच्छा है।
0: काफी काफी अच्छा है।
1: पर्यावरण को शुद्ध करने के लिए हमारी भावी पीढ़ी को आप क्या संदेश देना चाहेंगे?
0: पर्यावरण शुद्ध करने के लिए सबसे पहले जो अभी बोलो प्लास्टिक का, जो उसका तो बहिष्कार बहुत जरूरी है।
1: जी बिल्कुल
0: उसके बाद हम लोग सब जागरूक होंगे कि अपना सब अपना अपना घर से शुरू करो, अपना अपना घर में पेड़ पौधा लगाओ, एक किसी का ठान लो, किसी का बर्थडे में, किसी का मैरिज डे में हम लोग एक एक करके पौधा लगाएंगे,
1: जी
0: यादगार भी हो जाएगा
1: जी
0: और वो हम लोग का पर्यावरण के लिए
1: शुद्ध भी
0: शुद्ध
1: करेंगे।
0: भी करेगा, हम लोग को अच्छा भी लगेगा, उसी में फल फूल जो खिलेगा। इसी ऐसा करके हर घर में हर कोई, चाहे से युवा पीढ़ी चाहे महिलाएं, हम ही लोग तो जो युवा पीढ़ी को बोलेंगे आज ये डे है पेड़ लगाओ पौधा
1: जी
0: लगाओ, तो उन लोग को भी जानकारी होगा, उन लोग को अपना रुचि भी होगा और उसी
1: जी
0: में फल फूल जो खिलेगा, अपना हाथ से लगाया हुआ चीज के फल फूल खिलने का खुशी तो वो अलग ही होती है।
1: जी
0: तो
1: बिल्कुल
0: इसीलिए वो उन लोग को हम लोग को तरफ से बोल के उन लोग को करना होगा, जो तुम लोग अपना लगाओ।
1: जी। वंदना जी, आपने अपना बहुमूल्य समय हमें दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
0: धन्यवाद।
2: पर्यावरण के प्रति कितनी जागरूक हैं हमारी महिलाएं, इस विषय पर अभी आप भेंटवार्ता सुन रहे थे। जानकारी दे रही थी वंदना राय और उनसे बातें कर रही थी रेखा कुमारी। श्रोता विविधा कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं यह गीत।

अभी आपने सुना चक दे इंडिया फिल्म का ये गीत सुखविंदर सिंह के स्वर में। श्रोताओं, विविधा कार्यक्रम में आइए अब हम जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस के बारे में। श्रोताओं, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस प्रत्येक वर्ष जुलाई के प्रथम शनिवार को मनाया जाता है और इस वर्ष यह 4 जुलाई को मनाया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस का उद्देश्य सहकारी संस्थाओं की भूमिका और उनके योगदान के प्रति लोगों को जागरूक करना है। यह दिवस बताता है कि जब लोग समान उद्देश्य के लिए मिलकर कार्य करते हैं तो वे अपनी आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक समस्याओं का समाधान बहुत ही प्रभावी ढंग से कर सकते हैं। सहकारिता आपसी सहयोग, विश्वास, समानता और लोकतांत्रिक भागीदारी पर आधारित व्यवस्था है। श्रोताओं, सहकारिता आंदोलन की शुरुआत 19वीं शताब्दी में हुई। आधुनिक सहकारिता आंदोलन का श्रेय इंग्लैंड के रोचडेल सोसाइटी ऑफ इक्विटेबल पायोनियर्स को दिया जाता है, जिसकी स्थापना सन 1844 में हुई थी। इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस की स्थापना सन 1895 में हुई और यह विश्व भर की सहकारी संस्थाओं का प्रतिनिधित्व करने वाला प्रमुख संगठन है। उसके बाद श्रोताओं, संयुक्त राष्ट्र ने सन 1995 में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस को आधिकारिक रूप से मान्यता दी। तब से यह प्रत्येक वर्ष जुलाई के पहले शनिवार को मनाया जाता है। श्रोताओं, सहकारिता एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें लोग स्वेच्छा से मिलकर अपनी साझा आवश्यकताओं और हितों की पूर्ति के लिए एक संगठन बनाते हैं। इसमें प्रत्येक सदस्य को समान अधिकार प्राप्त होता है और निर्णय लोकतांत्रिक तरीके से लिए जाते हैं। श्रोताओं, अगर हम अपने देश भारत के बारे में बात करें तो भारत में सहकारिता आंदोलन किसानों, ग्रामीणों और छोटे व्यापारियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। सहकारी समितियां किसानों को ऋण, बीज, उर्वरक, भंडारण और विपणन जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराती हैं। दुग्ध सहकारी संस्थाओं ने देश में श्वेत क्रांति को बढ़ावा दिया और लाखों परिवारों की आय बढ़ाने में योगदान दिया। श्रोताओं, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस हमें यह संदेश देता है कि मिलकर काम करने से विकास की गति तेज होती है। सहकारिता केवल आर्थिक व्यवस्था नहीं बल्कि सामाजिक एकता, विश्वास और साझा जिम्मेदारी का प्रतीक है। यदि समाज में सहकारिता की भावना को बढ़ावा दिया जाए तो एक समृद्ध, आत्मनिर्भर और समान अवसरों वाला राष्ट्र हमारे देश को बनाया जा सकता है। तो श्रोताओं, इसी जानकारी के साथ आज का हमारा विविधा कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। कार्यक्रम से हमें विदा दें। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विविधा FM के 101.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। यह आकाशवाणी का चयबासा केंद्र है। श्रोताओं 9:30 हो रहे हैं। आइए अब सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम रसरंजन।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700

0: 0001-4242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें, 8700-001-4242।
2: कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं तोहफा फिल्म का ये गीत। आवाजें हैं आशा भोसले और किशोर कुमार की।

0: ये कहानी है एक गृहिणी और उसके अंतर्मन की।
1: बिजली का बिल, किराना, स्कूल फीस सब हो गया।
2: बन गया बजट?
1: हाँ,
2: 5,000 बच गए।
1: तो नई साड़ी ले ले।
2: ना,
1: पिछले महीने तो ली थी।
2: एक और नहीं, पहले बजट बनाओ, फिर छोटी छोटी बचत को बैंक में सेव करो और पैसों को बढ़ते देखो।
1: बढ़िया है।
2: जाओ भाई।
3: आरबीआई कहता है,
0: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
4: रसरंजन कार्यक्रम में श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं द ट्रेन फिल्म का ये गीत मोहम्मद रफी के स्वर में।

इस गीत के साथ ही रसरंजन का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के चयबासा केंद्र से बोल रहे हैं FM के 101.7 MHz पर। श्रोता, इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में दिन के 10 बज रहे हैं। आइए अब सुनते हैं फिल्म संगीत।

हम तुम्हारे हैं सनम। आइए सुनते हैं इस फिल्म का ये गीत। आवाज़ें हैं सोनू निगम और सपना अवस्थी की।

0: वैसे मुझे अमीरों से मिलने का कोई खास शौक नहीं है।
1: तो फिर मुझसे प्यार क्यों किया? हाँ,
0: एक कमबख्त दिल है की गलती।
2: कयामत, आइए सुनते हैं इस फिल्म का ये गीत कुमार शानू और अलका याग्निक के युगल स्वर में।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत। हम आकाशवाणी के चयबासा केंद्र से बोल रहे हैं FM के 101.7 MHz पर। श्रोताओं, इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में दिन के 10:30 हो रहे हैं। आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी रांची के कार्यक्रम आकाशवाणी के रांची केंद्र से।

जोहार नमस्कार, ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है और अब प्रस्तुत है आपका अपना प्रिय कार्यक्रम जोहार रांची। मैं हूँ इस कार्यक्रम में आपकी हम सफर ज्योत्सना। श्रोताओं, पृथ्वी पर कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसको समस्या ना हो और पृथ्वी पर कोई समस्या ऐसी नहीं है जिसका कोई समाधान ना हो। समस्या के बारे में सोचने से बहाने मिलते हैं और समाधान के बारे में सोचने पर रास्ते मिलते हैं। जिंदगी को आसान नहीं, बस खुद को मजबूत बनाना पड़ता है। उत्तम समय कभी नहीं आता, समय को उत्तम बनाना पड़ता है और हालात को ऐसा ना होने दे कि आप हिम्मत हार जाएं, बल्कि हिम्मत ऐसी रखें कि हालात हार जाएं।

श्रोताओ, इन दिनों देश के कई हिस्सों में मानसून ने अपनी दस्तक दे दी है। आसमान में उमड़ते घुमड़ते बादल, ठंडी ठंडी हवाएं, रिमझिम फुहारे और चारों ओर फैली हरियाली, मानो प्रकृति ने पूरे प्रदेश को एक नई ऊर्जा से भर दिया हो। गर्मी के लंबे और तपते दिनों के बाद जब पहली बारिश की बूंदें धरती को छूती है तो एक अलग ही सुकून महसूस होता है। मिट्टी की सौंधी खुशबू, पेड़ों की धुली हुई हरी भरी पत्तियां और वातावरण में घुली ताजगी, ये सब मानसून की पहचान है। बारिश शुरू होते ही प्रकृति की सुंदरता और भी निखर जाती है। जंगलों की हरियाली बढ़ जाती है, पहाड़ियां और घाटियां जीवंत होते हैं, झरनों का पानी तेजी से बहने लगता है और पूरी धरती मानो हरे रंग का चादर ओढ़ ली हो, ऐसा प्रतीत होता है। तो आइए सुनते हैं ये खूबसूरत सा गीत।

श्रोताओं, मानसून का सबसे अधिक इंतजार हमारे किसान भाई करते हैं। बारिश की हर बूंद उनके लिए उम्मीद की किरण होती है। धान की खेती और अन्य फसलों के लिए पर्याप्त वर्षा अत्यंत आवश्यक होती है। जब खेत में पानी भरता है तब किसान के चेहरे पर भी मुस्कुराहट लौट आती है। श्रोताओं, बारिश का नाम सुनते ही आपके मन में क्या आता है? गरम गरम चाय, पकौड़े, खिड़की के पास बैठकर बारिश का मजा लेना, या बचपन की वे यादें जब हम बारिश में भीगने का कोई मौका नहीं छोड़ते थे। यही तो मानसून की खूबसूरती है, यह हमारे मन को भी ताजा कर देता है। प्रकृति का हर मौसम हमें कुछ न कुछ सिखाता है। मानसून हमें सिखाता है कि कठिन समय के बाद राहत जरूर आती है। सूखी धरती भी एक दिन हरियाली से भर जाती है। इसलिए जीवन में चाहे कितनी चुनौतियां आए, हमें उम्मीद नहीं छोड़ना चाहिए। हर बादल के पीछे सूरज होता है और हर संघर्ष के बाद सफलता। श्रोताओं, आइए, जब मौसम की बातें कर रहे हैं तो आज हमारे शहर का मौसम कैसा रहने वाला है इसकी जानकारी भी हम आपको दे दें। तो आज का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस रहने वाला है और अगर न्यूनतम तापमान की बात की जाए तो 23 डिग्री सेल्सियस रहेगा। बादल छाए रहेंगे, बारिश होने का आसार है। श्रोताओं, इसी बारिश के मौसम में आइए एक बहुत ही खूबसूरत गाना हम आपके लिए पेश करते हैं।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम जोहार रांची आकाशवाणी के रांची केंद्र से, और आज है दिनांक 4 जुलाई। इतिहास के पन्नों में यह दिन कई महत्वपूर्ण घटनाओं, महान व्यक्तियों के जन्म, विज्ञान, राजनीति, खेल और समाज से जुड़ी उपलब्धियों के लिए जाना जाता है। तो आइए अब हम आप सभी श्रोताओं को आज के दिन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाओं की जानकारी दे दें। आज ही के दिन 1776 ईस्वी में संयुक्त राज्य अमेरिका ग्रेट ब्रिटेन से आज़ाद हुआ था। इस दिन अमेरिकी महाद्वीपीय कांग्रेस ने स्वतंत्रता की घोषणा को अपनाया था। इसके बाद अमेरिका एक स्वतंत्र राष्ट्र बन गया। 1827 में आज के ही दिन न्यूयॉर्क राज्य में गुलामी को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया। और अगर 1997 ईस्वी की बात की जाए तो आज ही के दिन 1797 में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा का अंतरिक्ष यान मार्स पाथ फाइंडर मंगल ग्रह की सतह पर सफलतापूर्वक उतरा। आज ही के दिन 2007 में वेबसाइट सेंटिडो कॉमन के मुताबिक मैक्सिको के कार्लोस स्लिम दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बने। श्रोताओं, बातें तो होती रहेगी पर बातों के साथ मनोरंजन भी बहुत जरूरी है। तो आइए सुनते हैं ये मधुर गीत।

श्रोताओं, आइए अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम आपको आज यानी 4 जुलाई के दिन जन्मे प्रसिद्ध हस्तियों की जानकारी दे दें। 1898 ईस्वी में आज ही के दिन भारत के भूतपूर्व कार्यवाहक प्रधानमंत्री गुलजारी लाल का जन्म हुआ था और आज ही के दिन 1916 ईस्वी में हिंदी फिल्मों की प्रसिद्ध अभिनेत्री नसीम बानो का भी जन्म हुआ था। भाषा विज्ञान, कोश निर्माण, पाठालोचन, अनुवाद और सांस्कृतिक अध्ययन के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान करने वाले भारतीय विमलेश कांति वर्मा ने भी आज ही के दिन यानी 4 जुलाई 1943 में इस दुनिया में कदम रखा। सुशील कुमार, इस अभिनेता को शायद ही कोई भूल सकता है। इनकी फिल्म दोस्ती अगर आज भी देख ले तो आंखों में आंसू आ जाए। इस महान अभिनेता का जन्म भी आज ही के दिन 1945 ईस्वी में हुआ था। और मशहूर अभिनेत्री और निर्देशक नीना गुप्ता का जन्म भी 1959 ईस्वी में आज ही के दिन हुआ था। तो आइए सुनते हैं इनकी फिल्म फिर तेरी कहानी याद आई से ये खूबसूरत सा गीत।

श्रोताओं, रामकृष्ण मिशन के संस्थापक और महान विचारक स्वामी विवेकानंद जी की पुण्यतिथि आज ही के दिन यानी 4 जुलाई को मनाई जाती है। 1902 ईस्वी में आज ही के दिन बेलूर मठ में इन्होंने अंतिम सांस ली थी। भारतीय संविधान को बनाने में सहयोग देने वाली महिला अम्मू स्वामीनाथन का निधन भी आज ही के दिन 1978 ईस्वी में हुआ था। भरत व्यास, जो कि भारतीय फिल्म जगत के प्रसिद्ध गीतकार थे, इन्होंने भी आज ही के दिन 1982 ईस्वी में इस दुनिया को अलविदा कहा था। तो आइए सुनते हैं इनकी फिल्म का ये गाना।

श्रोताओं, क्या कभी आपने सोचा है कि हमारे मन में रात में ही ज्यादा विचार क्यों आते हैं? दिन और रात दोनों एक ही जीवन का हिस्सा है, लेकिन दोनों का स्वभाव बिल्कुल अलग है। दिन शोर से भरा होता है, लोगों की आवाजें, काम की जिम्मेदारियां, भागदौड़ और समय के पीछे दौड़ती हुई हमारी जिंदगी। दिन हमें व्यस्त रखता है, लेकिन जैसे जैसे शाम ढलने लगती है और रात गहराने लगती है, वैसे वैसे हमारे पास शोर कम होने लगता है और तब हम अपने विचारों की आवाज सुनने लगते हैं। दोस्तों, शायद यही कारण है कि रात में हमें वे बातें याद आती है जिन्हें हम दिन भर भूलने की कोशिश करते हैं। कोई अधूरा सपना, कोई अधूरी बातचीत, कोई पुरानी दोस्ती, कोई छूटा हुआ रिश्ता, या फिर जीवन का कोई ऐसा मोड़ जिसे हम आज भी याद करते हैं। श्रोताओं, रात के समय मन के पास समय होता है, और जब मन के पास समय होता है तो वह हमसे सवाल पूछता है।

दोस्तों, कई लोग रात को केवल आराम का समय मानते हैं, लेकिन रात आत्ममंथन का भी समय है। यदि यही वो समय है जब हम बिना दिखावे के अपने वास्तविक स्वरूप में मिलते हैं, ना कोई भीड़, ना कोई प्रतिस्पर्धा और ना कोई भूमिका निभाने की जरूरत, बस हम और हमारे विचार। श्रोताओं, कभी कभी हमें अपने विचारों से लड़ने की नहीं बल्कि उसे समझने की जरूरत होती है, क्योंकि कई बार मन हमें वहीं ले जाता है जहां हमें वास्तव में पहुंचना चाहिए, और कभी कभी तो हमारी बड़ी से बड़ी समस्या का हल भी रात के सन्नाटे में मिल जाता है। तो मेरा आप सभी श्रोताओं से ये कहना है कि कुछ मिनट अपने लिए निकालें, मोबाइल से दूर रहिए, गहरी सांस लीजिए और अपने मन की बात सुनिए। हो सकता है कि आपको अपने ही भीतर वह जवाब मिल जाए जिसकी तलाश आप बहुत दिनों से कर रहे हैं।

श्रोताओं, अब हम बातें करेंगे उस सुंदर भूमि की जो अपनी संस्कृति, प्रकृति और परंपराओं के लिए पूरे देश में जानी जाती है, और वह है हमारा झारखंड। झारखंड भारत का एक ऐसा राज्य है जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और समृद्ध आदिवासी संस्कृति के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ के घने जंगल, ऊंचे पहाड़, झरने और हरियाली इस राज्य को एक अनोखी पहचान देते हैं। झारखंड को अक्सर प्रकृति की गोद में बसा राज्य कहा जाता है। यहाँ के जंगल और पहाड़ सिर्फ सुंदर नहीं बल्कि जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी हैं। झरनों की आवाज, पक्षियों की चहचहाट और हरियाली से भरा वातावरण मन को शांति देता है। यहाँ की प्रकृति हमें सिखाती है कि जीवन हमें संतुलन और सादगी के साथ जीना चाहिए। यहाँ के आदिवासी समाज ने अपनी परंपराओं, लोकगीतों और नृत्यों को आज भी जीवित रखा है। छऊ नृत्य, झूमर और कर्मा जैसे लोक नृत्य यहाँ की पहचान है। मांदर की थाप और लोकगीतों की धुन आज भी गांव में उत्साह भर देती हैं।

श्रोताओं, हमारे स्टूडियो की घड़ी अब हमें ये इजाज़त नहीं दे रही कि हम कार्यक्रम को और आगे बढ़ा सके। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को आज का हमारा जोहार रांची कार्यक्रम पसंद आया होगा। तो अब इजाज़त दीजिए हमें। नमस्कार।

ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज और एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज पर। आइए सुनते हैं फरमाइशी फिल्मी गीतों का प्रोग्राम आपकी पसंद। और इस कार्यक्रम में आपकी हम सफर ज्योत्सना का आप सभी सुनने वालों को प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, कार्यक्रम का सबसे पहला गाना हमने लिया है फिल्म जिंदगी तेरे नाम से, केके की आवाज में। इस गाने को संगीतबद्ध किया है साजिद वाजिद ने और रचना है जलीस शेर वानी का। और इस प्यारे से गाने की फरमाइश करने वाले हैं अपर बाजार रांची से नीरज सोनी, ज्योति कुमारी, सीमा सिंह, पिंकी रानी, राजेश, अमित, दीप्ति, सोनी कुमारी और इनके ढेर सारे साथीगण। बरकाकाना रामगढ़ से अमृत सिंह, हरिहर सिंह, पीयूष कुमार, पलक कुमारी, पीहू, दिव्या, तेजस और संगीता कुमारी। तो आइए सुनते हैं आप सबों के पसंद का ये खूबसूरत सा गीत।

अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर

0: ಸ್ವಯಂ ಈ ಕಟ್ಪಡೆ ಭಾರತೀಯ ಸೇನಾ.
1: श्रोताओं, अगला गाना राहत फतेह अली खान की आवाज़ में फिल्म कलयुग से है. तर्ज बनाई है फैजल रफ़ी ने और लिखा है साईद कादरी ने. सुनने के ख्वाहिशमंद हमारे श्रोता हैं कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय और हैप्पी राय. दुबी है ज़िला गाज़ीपुर से प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय और प्रांजल राय. तो पेश है आप सबों के पसंद का ये गाना. फिल्म का नाम है कलयुग.

इसी प्यारे से गीत के साथ हमारा आज का आपकी पसंद कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। इजाजत दीजिए अपनी दोस्त ज्योत्सना को। नमस्कार।

ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। आइए सुनते हैं महिलाओं को संबोधित कार्यक्रम गृह लक्ष्मी। चर्चा में आज सुनेंगे सामाजिक उत्थान की अहम कड़ी स्त्री, सूत्रधार हैं शिल्पी, और ये प्रस्तुति है गौरव कुमार पांडे की।

बहनों नमस्कार। रिश्तों के ताने बाने में जीवन का हर तान बुना, कुछ रिश्तों में हम जीते हैं, कुछ रिश्ते हैं हमसे बना। सखियों, हमारे जीवन की दुशाला रिश्तों की डोरियों से बुनी होती है, इसलिए हमारे जीवन में सभी रिश्तों की बड़ी अहमियत होती है। यह जिंदगी तो रिश्तों से ही चमकती है ना, क्यों सही कहा ना? आपका और हमारा रिश्ता भी जुड़ा है प्रेम से, स्नेह से, जिसे हम कभी देख नहीं पाते, लेकिन फिर भी हर दिन हर क्षण महसूस करते हैं। और घर की सारी जिम्मेदारियों को समेटकर आपसे मिलने खूब सारी बातें करने आ जाते हैं। सखियों, आज के कार्यक्रम को लेकर हाजिर हैं आपके रेडियो सखी शिल्पी, और बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने ही कार्यक्रम गृह लक्ष्मी में। बहनों, हर स्त्री चाहती है कि उनका परिवार हमेशा खुश रहे, स्वस्थ रहे, चाहे घर के बच्चे हों या बुजुर्ग, परिवार रूपी बगिया के सभी फूल हंसते खिलखिलाते रहें। और इसके लिए हम दिन भर भागते फिरते रहते हैं, क्योंकि नारी से ही है घर समाज सुशोभित। सखियों, कहा

जिम्मेदारी हो या जीवन के खट्टे मीठे रिश्ते, ये सारे रिश्ते स्त्री के जीवन को चमकाते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि हम सभी रिश्तों को बखूबी निभाते हैं। यही नहीं, जीवन की कठिन चुनौतियों में भी अपनी हम भूमिका निभाते हैं और बड़े ही सूझबूझ के साथ स्त्री चलती हैं अपने घर को लेकर, अपने परिवार को लेकर, अपने समाज को लेकर। स्त्री केवल परिवार की आधारशिला नहीं है बहनों, बल्कि संस्कारों की पहली पाठशाला भी है। आदिकाल से देखा गया है कि एक माँ ही अपने बच्चों में संस्कार भरती है, उसे अच्छे बुरे का ज्ञान देती है, नैतिक शिक्षा देती है, तथा घर में बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना, रिश्तों की मर्यादा, घर के संस्कार और जो भी परंपराओं हैं उससे जोड़कर अपने बच्चों को रखती हैं। इसलिए महिलाओं को परिवार की धुरी कहा गया है। सखियों, कभी घूंघट की आड़ में रहने वाली स्त्री भी अब नई उड़ान भर रही हैं, क्योंकि वो जागरूक हैं अपने कर्तव्यों के प्रति और उतनी ही समर्पित भी हैं। अगर नजर उठाकर देखें तो आज महिलाएं शिक्षा, विज्ञान, खेल का मैदान, कृषि, स्वयं सहायता समूह, व्यापार, प्रशासन या रक्षा जैसे हर क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का परचम लहरा रही हैं। बस जरूरत है उन्हें अवसर देने की, यानी बेटियों को खूब पढ़ाने की। फिर आप देखिएगा, उनकी उपलब्धियां यह साबित कर देगी कि अवसर मिलने पर वे समाज और देश की प्रगति में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी और निभा भी रही हैं। आपने देखा होगा, अब ग्रामीण महिलाएं भी अपने भीतर के गुणों को पहचान कर उसे निखार कर और रोजगार के क्षेत्र में खुद को स्थापित कर रही हैं। बिना शिक्षा और पूंजी के भी वो नया आयाम गढ़ रही हैं। सखियों, आप सोचेंगी कि वो कैसे, क्योंकि अब गांव में घरेलू महिलाएं एकजुट होकर स्वयं सहायता समूह को चलाती हैं। आज हमारी बहनें अपने हिस्से की छोटी छोटी राशि को बचा करके सिलाई सेंटर, पशुपालन, घर पर अचार पापड़ बनाती हैं, घरेलू मसाले बनाती हैं। अगर गांव में बांस की खेती है तो बांस से सूप, दौरा, सजावटी सामाने और हस्तशिल्प में रंग बिरंगे मनमोहक चीजें बनाकर अपने नजदीकी बाजार या हाट और मेले में भी उसे सजाती हैं और स्टॉल एक लगाती हैं अपने नाम की। सखियों, आश्चर्य हुआ ना? साथ ही यह गर्व की भी बात है कि इनका संचालन भी वो स्वयं करती हैं। साथ साथ कई महिलाओं को भी रोजगार देती हैं, यानी कि उन्हें भी अपने साथ साथ कई ऐसी बहनें हैं जो घर में बैठी रहती हैं, लेकिन उन्हें भी घर से निकालकर आत्मनिर्भर बना रही हैं। हमारी बहनों ने महात्मा बुद्ध के कथन को आज सत्य कर दिया है, अपदीपो भवा, यानी कि अपना दीपक स्वयं बने। तो बहनों, आइए, बहुत सारी बातें आपसे हो गई और आपको अब एक ऐसे गगन के तले लिए चलते हैं जहां गम न हो, बस धूप खिले और कभी कभी छांव भी मिले।

0: बड़ी बहू ये तुम्हारे नाम।
1: इतनी भी क्या जल्दी थी?
0: अरे और छोटी ये तुम्हारे नाम और ये
1: मेरी गुड़िया के नाम।
2: पर दादी
0: हाँ?
2: आपके नाम?
3: सब कुछ मैंने बैंक लॉकर फिक्स डिपॉजिट सब में इन्हें ही तो नॉमिनी बनाया है। कल जब मैं ना रहूं तब पैसे मिलने में इन्हें आसानी हो।
0: शुभ शुभ बोलो क्या
3: आरबीआई कहता है।
4: जानकार बनिए सतर्क रहिए।
5: बहनों एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही कार्यक्रम गृहलक्ष्मी में। और आज के सफर में मैं आपके साथ हूँ शिल्पी। और वक्त हो चला है अब भेंटवार्ता का। भेंटवार्ता का विषय है महिला सशक्तिकरण। भेंटवार्ताकार हैं आज विभा कुमारी और उनसे हमारी बातचीत है। तो आइए सुनते हैं ये भेंटवार्ता। बहनों महिलाओं को परिवार की धुरी कहा जाता है। घर परिवार को संभालते हुए बच्चों को संस्कार देकर नई पीढ़ी का निर्माण भी महिलाएं ही करती हैं। और इतना ही नहीं देश के विकास में भी अपना सहयोग दे रही हैं। तभी तो सशक्त नारी से समाज भी मजबूत बन रहा है। आइए इसी विषय पर बात करते हैं। आज हमारे साथ हैं विभा कुमारी। विभा जी बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार।
6: नमस्कार
5: विभा जी। सबसे पहले आप अपना परिचय दें हमारी बहनों को।
6: मैं विभा एक स्कूल में कला और शिल्प की शिक्षिका हूँ।
5: बिल्कुल विभा जी, जैसा कि हम सब जानते हैं कि सशक्त नारी से ही समाज और परिवार भी सशक्त बनता है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगी?
6: नारी जो घर परिवार की धुरी है वैसी नींव है जिस पर घर का एक एक सदस्य हर काम के लिए निर्भर रहता है।
5: बिल्कुल।
6: रोजमर्रा के दिनों के अलावा किसी विशेष आयोजन पर घर की महिलाओं की अहमियत को आसानी से समझा जा सकता है। हर छोटी बड़ी जरूरतों को पूरा करने का जरिया घर की महिला ही होती हैं।
5: बहुत खूब।
6: त्रिशतात्मक समाज में जहां पुरुषों का रोल अहम माना जाता है वहां भी महिलाओं के बगैर कोई कार्य सफलतापूर्वक अंजाम तक नहीं पहुंच पाता है, क्योंकि धैर्य सहनशीलता और तनाव मुक्त रहने के साथ बिना थके अनवरत काम करने की कला भी महिलाओं को जन्मजात विरासत में मिली है। ऐसे में महिलाएं सशक्त होंगी तो बेशक घर परिवार का माहौल खुशनुमा होगा।
5: घर में समाज के विकास में नारी का क्या योगदान है ये बताएं।
6: समाज में नारी का योगदान जो है उसमें महिला समाज में कई रूपों में विकास में योगदान करती है। हर परिवार को सहेजने के साथ साथ पूरे सलीके से घर को चलाने के लिए जहां वह हर समय पूरी निष्ठा और लगन से लगी रहती हैं, वहीं घर के बच्चों का भविष्य संवारने जैसा अहम रोल भी उन्हीं के जिम्मे रहता है। मौजूदा दौर में तो महिलाएं नौकरी के साथ साथ व्यापार भी कर रही हैं। वहीं कई मामलों में महिलाओं ने उद्योग के क्षेत्र में पुरुषों को पछाड़ दिया है। आज सफल महिला की संख्या देश विदेश में सैकड़ों हजारों में पार कर चुकी है।
5: बिल्कुल सही विभा जी। आज महिलाएं सशक्त बनी हैं, इसमें शिक्षा की क्या भूमिका है ये बताएं।
6: जरूर, महिलाओं को सशक्त बनाने में शिक्षा की बड़ी भूमिका है। शिक्षा के बल पर महिलाएं आज लगभग सभी क्षेत्रों में पुरुषों के बराबर खड़ी हैं। शिक्षा ने ही उसे खुद के प्रति परिवार और समाज के जिम्मेदार नागरिक के तौर पर सामने लाया है। आर्थिक रूप से समृद्ध होने के बाद उनमें सामाजिक और राजनीतिक चेतना बढ़ी है।
5: जी विभा जी, चलते चलते आप क्या कहना चाहेंगी हमारी सखियों से जो इस वक्त हमारे कार्यक्रम को वो सुन रही हैं।
6: सभी सखियों से कहना चाहूंगी, खुद में आत्मविश्वास लाए। महिला होने के डर को सबसे पहले खुद से खत्म करें और हर उस काम को चुनौती से स्वीकार करें जो अब तक महिलाओं के लिए मुश्किल भरा माना जाता रहा है। तो कल का इंतजार ना करें, हर सुबह कुछ नया करने की सोचे और सबको आगे बढ़ने के लिए हौसला दे। घर की रसोई से बाहर निकले और समाज में पुरुषों से अलग पहचान बनाने के लिए संघर्ष में जुड़ जाए, यही कहना चाहूंगी।
5: विभा जी, आपने बहुत अच्छी बात कही कि कल का इंतजार नहीं करना चाहिए।
6: बिल्कुल,
5: हर नया पल जीवन में बदलाव लाता है। जैसे हर अंधेरी रात के बाद सुबह आती है।
6: जी।
5: बस आत्मविश्वास हो स्वयं पर तो परिस्थिति भी बदलती है।
6: बिल्कुल
5: विभा जी, आप हमारे कार्यक्रम से जुड़ी और सखियों को इतनी अच्छी जानकारियां दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
6: जी नमस्कार।
7: बहने अभी सुन रही थी भेंटवार्ता। भेंटवार्ता का विषय था महिला सशक्तिकरण और भेंटवार्ताकार थी विभा कुमारी। और सखियों, अब इस भेंटवार्ता के बाद कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और ले चलते हैं आपकी आपको संगीत की दुनिया में।

बहनों, आज शनिवार है और जुलाई के पहले शनिवार को हम मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस। और आज हम बात करेंगे जानकारी के अंतर्गत कि महिला स्वयं सहायता समूह और सहकारिता। मानो किसी भी स्वस्थ समाज की संरचना प्यार और सहयोग पर निर्भर करती है। समाज परिवार से बनता है। अगर परिवार में प्रेम सहयोग की भावना हो तो उसका उत्थान निश्चित है। हमारे यहाँ समाज और देश के विकास में महिलाओं की भूमिका आदिकाल से चली आ रही है। बच्चों में अच्छे संस्कार देकर एक नई पीढ़ी का निर्माण करती हैं और महिलाएं अच्छे से जानती हैं ये चीज करना। और सिर्फ इतना ही नहीं बहनों, देश के आर्थिक विकास में भी सहकारिता के माध्यम से महिलाएं अपना योगदान दे रही हैं। हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि अगर जनता में जागृति पैदा करनी है तो पहले महिलाओं में जागृति पैदा करो। कितना सही साबित हो रहा है उनकी बातें आज। और आज सहकारिता में भी महिलाएं आगे आ रही हैं। अगर महिलाएं संगठित हो जाएं तो सहकारी समिति गठित करके आत्मनिर्भर बन सकती हैं। बहनें हमारी जो हैं फसलों की रुपाई करती हैं, कटाई से करती हैं और इतना ही नहीं, साल भर तक जो भी अनाज खेतों से आता है उसका भंडारण करती हैं, मसाला बनाती हैं, पापड़, बिस्किट, सेवई, आचार जैसे गृह उद्योगों से जुड़कर खुद को आर्थिक रूप से सुदृढ़ बना सकती हैं। देखा भी क्या है कि सदियों से उद्यम और परिश्रम में वो हमेशा मशहूर रही हैं। और यह भी सच है कि पुरुषों की तुलना में या उनकी अपेक्षाकृत महिलाओं में बचत की प्रवृत्ति बच्चों से ही होती है। बहनों की छोटी छोटी जो बचत होती है समय आने पर बड़ा सहयोग बन जाता है कभी कभी। और यही कारण है कि वे अपनी योग्यता, कार्य कुशलता, गुणवत्ता के आधार पर हर क्षेत्र में आगे आ रही हैं। आज हमारे समाज में कई ऐसी महिलाएं हैं जो समूह बनाकर व्यवसाय कर रही हैं और इसके लिए सरकार द्वारा कई तरह का प्रशिक्षण कार्यक्रम भी चलाया जा रहा है। साथ ही बैंकों के द्वारा उन्हें सहयोग दिया जाता है यानी ऋण दिया जा रहा है। ग्रामोद्योग के लिए जिला ग्रामीण विकास विभाग द्वारा जरूरी सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाती है। महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए सहकारिता मुख्य भूमिका अदा कर सकती है। अगर साधन, मार्गदर्शन और पूंजी मिले तो देश की अर्थव्यवस्था में उनका भरपूर योगदान हो सकता है। अगर हम कहें कि सहकारिता एक आंदोलन है तो आज के दौर में बिल्कुल सच होगा बहनों, क्योंकि सच ये आंदोलन है सहयोग का, सहभागिता का, सामूहिक विकास का और जिम्मेदारी लेने का। विशेषज्ञ भी मानते हैं कि सहकारिता के क्षेत्र में महिलाओं की भूमिका महत्वपूर्ण है। उन्हें उत्साह के साथ आगे आना चाहिए और अगर सभी महिलाएं संगठित होकर स्वयं सहायता समूह बनाकर अपने हुनर और शौक को पहचान कर बहनों अगर उसे निखार लें तो आत्मनिर्भर बन सकती हैं एवं उनकी स्वयं की अपनी खुद की पहचान बनेगी। तो बस जरूरत है कि थोड़े से जागरूक होने की, घर से बाहर निकलने की और हाँ, सबसे बड़ी बात है कि पर्दा जो प्रथा है गाँव में आज भी उसे रोकने की। अगर वो खत्म हो गया तो महिलाएं बिल्कुल स्वावलंबी बनेंगी।

बहनों, इसी खूबसूरत गीत के साथ और इस वादे के साथ अपनी सखी शिल्पी आज आपसे इजाजत लेना चाहती हैं। आपको बता दें कि आज कार्यक्रम की प्रस्तुति थी गौरव कुमार पांडे की, और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे महिलाओं को संबोधित कार्यक्रम गृह लक्ष्मी। सूत्रधार थी शिल्पी और ये प्रस्तुति थी गौरव कुमार पांडे की। आइए अब सुनते हैं शैक्षिक प्रसारण। वार्ता में आप सुनेंगे हिंदी साहित्य में अलंकार और रस। वार्ताकार हैं रीना सहाय। प्रस्तुति सहयोग है अवधेश कुमार की और ये प्रस्तुति है गौरव कुमार पांडे की।

0: प्रस्तुत है शैक्षणिक प्रसारण। इसके अंतर्गत आज आप सुनेंगे वार्ता साहित्य में अलंकार एवं रसों का महत्व। वार्ताकार हैं रीना सहाय।
1: नमस्कार श्रोता मित्रों, शैक्षिक प्रसारण के अंतर्गत आज हम सब जानेंगे हिंदी साहित्य में अलंकार एवं रसों का क्या महत्व है। आप सभी का स्वागत है। साहित्य में रस काव्य के माध्यम से पाठक या दर्शक के मन में उत्पन्न होने वाली भावनाएं, अनुभूति या आनंद है, जबकि अलंकार काव्य की सुंदरता बढ़ाने के लिए उपयोग किए जाने वाले सजावटी तत्व या शिल्प हैं। रस और अलंकार दोनों मिलकर साहित्य को प्रभावशाली और सौंदर्यपूर्ण बनाते हैं। रस हृदय की भावनाओं से संबंधित है, जबकि अलंकार भाषा को सजाने का काम करते हैं। अब हम जाने कि रस का क्या अर्थ है। काव्य को पढ़ने, सुनने या देखने से मिलने वाला अलौकिक आनंद या भावना का उत्पन्न होना और कार्य पाठक के मन में भाव उत्पन्न करना और काव्य के भावात्मक आधार का निर्माण करना। मुख्य रूप से रसों की संख्या 9 मानी गई है, किंतु दो और रस इसमें जोड़े गए हैं, वात्सल्य और भक्ति रस। तो इस प्रकार रसों की संख्या 11 है। सबसे पहले श्रृंगार रस की बात करें। इसके स्थायी भाव रति या प्रेम है। नायक नायिका के सौंदर्य तथा प्रेम संबंधी वर्णन को श्रृंगार रस कहा जाता है। श्रृंगार रस को रसराज या रसपति कहा गया है। उदाहरण, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाय, सौह करे भावहनी हसे दैन कहे नटी जाए। बिहारी लाल जी की कविता का अंश संयुक्त श्रृंगार का उदाहरण, निसदिन बरसत नयन हमारे, सदा रहती पावस ऋतु हम पै, जब ते श्याम सिधारे। वियोग श्रृंगार का ये उदाहरण। अब हम बात करें हास्य रस के बारे में। हास्य रस का स्थायी भाव हास है। इसके अंतर्गत वेशभूषा, वाणी आदि की विकृति को देखकर मन में जो प्रसन्नता का भाव उत्पन्न होता है, उससे हास की उत्पत्ति होती है। इसे ही हास्य रस कहते हैं। बुरे समय को देखकर गंजे तू क्यों रोए, किसी भी हालत में तेरा बाल न बांका होए। करुण रस। करुण रस का स्थायी भाव शोक है। प्रिय के वियोग या हानि के कारण उत्पन्न व्याकुलता की भावना। शोक विकल सब रोब ही रानी, रूपो सिलु बलु तेजु बखानी, करही विलाप अनेक प्रकारा, परही भूमि तन बारही बारा। तुलसीदास द्वारा रचित दोहे का ये अंश करुण रस का उदाहरण। वीर रस। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह है। युद्ध अथवा किसी कठिन कार्य को करने के लिए हृदय में स्थित उत्साह स्थायी भाव के जागृत होने से जो भाव उत्पन्न होता है, उसे वीर रस कहा जाता है। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो कि सिंह की दहाड़ हो, तुम कभी रुको नहीं, तुम कभी झुको नहीं। द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी की रचित कविता का ये अंश। और हम बात करें रौद्र रस के बारे में। रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध है। असाधारण अपराध, विवाद, उत्तेजनापूर्ण अपमान आदि से उत्पन्न मनोविकार को क्रोध कहते हैं। श्री कृष्ण के वचन सुन अर्जुन क्षोभ से जलने लगे, सब शील अपना भूल के करतल युगल मलने लगे, संसार देखे अब हमारे शत्रु रण में मृत पड़े, करते हुए यह घोषणा वे हो गए उठकर खड़े। मैथिली शरण गुप्त जी की रचना का ये अंश। भयानक रस। इसका स्थायी भाव भय है। अनिष्ट कर सकने में समर्थ जीव या वस्तु को देखकर उत्पन्न व्याकुलता की भावना। उधर गरजती सिंधु लहरियां कुटिल काल के जालों सी, चली आ रही फेन उगलती फन फैलाए व्यालों सी। जयशंकर प्रसाद जी की रचना का ये अंश। विभत्स रस। इस रस का स्थायी भाव जुगुप्सा या घृणा है। घृणित पदार्थ को देखकर हृदय में उठती ग्लानी का भाव विभत्स रस उत्पन्न करता है। सिर पर बैठियो काग, आंख दो खात निकारत, खींचत जीव ही सियार अति ही आनंद उर्धारत, गिद्ध जांगी को खोदी खोदी के मांस उपारत, स्वान आंगुरिन काटी काटी के खात बिदारत। भारतेंदु जी की रचना का ये अंश। अद्भुत रस, अद्भुत रस का स्थायी भाव विस्मय या आश्चर्य है। किसी अनोखी वस्तु को देखकर या सुनकर हृदय में आश्चर्य के भाव का उत्पन्न होना। अखिल भुवन चर अचर सब हरि मुख में लखी मातु, चकित भई गद गद वचन विकसित दृघ पुल कातु। कवि सेनापति जी की रचना का ये अंश। शांत रस, शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद है। हृदय में संसार के प्रति उदासीनता की भावना का उत्पन्न होना। मन रे तन कागद का पुतला, लागे बूंद बिनसी जाए छिन में, गर्व करे क्या इतना। कबीरदास जी की रचना का यह अंश। और हम बात करें वात्सल्य रस के बारे में। वात्सल्य रस का स्थायी भाव वात्सल्य है। संतान के प्रति माता पिता का प्रेम भाव हृदय में उत्पन्न होना। किलकत कान खुटरुवन आवत, मणिमय कनंक नंद के आंगन बिंब पकरिए धावत। सूरदास जी की रचना का यह अंश। भक्ति रस, इस रस का स्थायी भाव देव विषयक अनुराग या रति है। हृदय में ईश्वर के प्रति प्रेम अनुराग उत्पन्न होने का भाव। राम जपो राम जपो राम जपो बावरे, घोर भव नीर निधि नाम निज नावरे। विनय पत्रिका से, तुलसीदास द्वारा रचित विनय पत्रिका से यह अंश लिया गया है। रस को काव्य की आत्मा या प्राण तत्व माना जाता है। रस उत्पत्ति को सबसे पहले भरत मुनि ने अपने ग्रंथ नाट्य शास्त्र में परिभाषित किया है। अब हम साहित्य में अलंकारों का क्या महत्व है इस विषय में जानें। काव्य में सौंदर्य बढ़ाने वाले तत्व अलंकार कहलाते हैं। जिस प्रकार आभूषण से नारी का लावण्य बढ़ जाता है, उसी प्रकार अलंकार से कविता की शोभा बढ़ जाती है। शब्द तथा अर्थ की जिस विशेषता से काव्य का श्रृंगार होता है, उसे ही अलंकार कहते हैं। कहा गया है, अलंकरोति इति अलंकारः, जो अलंकृत करता है वही अलंकार है। भारतीय साहित्य में अनुप्रास, उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक, यमक, श्लेष, संदेह, अतिशयोक्ति, मानवीकरण, वक्रोक्ति आदि कई प्रमुख अलंकार हैं। इनके अलावा और भी बहुत सारे अलंकार हैं। अलंकार के मुख्यतः दो भेद हैं, शब्द अलंकार, अर्थालंकार और एक अलंकार उभयालंकार। शब्द अलंकार वो अलंकार है जिसमें किसी कविता या पद्य में शब्दों के प्रयोग से सौंदर्य उत्पन्न होता है। ये सौंदर्य शब्दों की ध्वनि, चयन या पुनरावृत्ति से आता है। और यदि उस विशेष शब्द के स्थान पर उसका कोई पर्यायवाची शब्द रख दिया जाए तो यह चमत्कार नष्ट हो जाता है। शब्द अलंकार के अंतर्गत हम कुछ मुख्य अलंकारों के बारे में भी जाने, जैसे कि अनुप्रास अलंकार। किसी वर्ण की एक से अधिक बार आवृत्ति यानी कि दोहराने से उत्पन्न श्रव्य सौंदर्य उत्पन्न होना। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में, यहाँ च वर्ण की आवृत्ति हो रही है यानी च वर्ण को बार बार दोहराया गया है, अतः यहाँ अनुप्रास अलंकार है। यमक अलंकार, जब एक ही शब्द बार बार आए लेकिन हर बार उसका अर्थ अलग हो। कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाए, बा खाए बौराए जग या पाए बौराए। कवि बिहारी लाल जी के दोहे का ये अंश। पहले कनक जो है उसका अर्थ है धतुरा और दूसरे कनक का अर्थ है सोना, यानी धतुरा खाकर लोग बावरे हो जाते हैं, नशे में आ जाते हैं, किंतु कनक दूसरे कनक सोना को पाते ही लोग बावरे हो जाते हैं, अहंकारी हो जाते हैं। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, जब कोई शब्द दो बार दोहराया जाए और उसका अर्थ एक ही हो। ठुमकी ठुमकी रुन झुन ध्वनि सुदी। श्लेष अलंकार, जब काव्य में एक ही शब्द से एक साथ अनेक अर्थ प्रकट हों। रहिमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। यहाँ पानी शब्द एक ही बार है किंतु उसका अर्थ अलग अलग है। मनुष्य के लिए प्रतिष्ठा, मोती के लिए चमक और चून के लिए जल, इसलिए पानी को बचाए रखें। अब हम बात करते हैं अर्थालंकार के बारे में। जब शब्दों के अर्थ से चमत्कार या सौंदर्य उत्पन्न हो तो वह अर्थालंकार कहलाता है। शब्द की ध्वनि नहीं अर्थ की विलक्षणता ही सौंदर्य उत्पन्न करता है। इसके अंतर्गत कुछ मुख्य अलंकारों के बारे में भी जान लें। सबसे पहले उपमा अलंकार। जब किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना या समानता किसी दूसरी वस्तु से की जाती है, वहाँ उपमा अलंकार होता है। सागर सा गंभीर हृदय हो। उपमा के चार अंग या तत्व माने गए हैं, उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और साधारण धर्म या गुण। उपमेय, जिस व्यक्ति या वस्तु की समानता दी जाए। उपमान, जिस व्यक्ति या वस्तु से समानता दी जाए। वाचक शब्द, उपमेय और उपमान को जोड़ने वाले वाचक शब्द, जैसे कि सा, सी, सम, सरिस, जैसा, जैसी आदि। और साधारण धर्म या गुण, जिन समानता सूचक गुणों के कारण समानता दी जाए। सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। सीता का मुख उपमेय, चंद्रमा उपमान, के समान वाचक शब्द, सुंदर समान गुणों का होना। इसके दो भेद हैं, पूर्णोपमा और लुप्तोपमा। अब हम बात करें रूपक अलंकार के बारे में। जहाँ उपमेय और उपमान में कोई भेद ना हो। मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ, बच्चा चांद खिलौना लेने की जिद कर रहा है, चांद के जैसा नहीं। उत्प्रेक्ष अलंकार, जहाँ काव्य में कल्पना या संभावना व्यक्त की जाए, वहाँ उत्प्रेक्ष अलंकार हैं। वाचक शब्द हैं मानो, जानो, मनो, जनहु आदि। सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि सैल पर आतप परियो प्रभात। और अब हम बात करें अतिशोक्ति अलंकार के बारे में। जहाँ किसी घटना या बात को बहुत अधिक बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए। हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आगी, सगरी लंका जरी गई, गए निशाचर भाग। और अब हम मानवीकरण अलंकार के बारे में जाने। जहाँ जड़ वस्तुओं में मानवीय गुणों का आरोप किया जाए। अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी, कवि जयशंकर प्रसाद की रचना का यह अंश। और उभय अलंकार के बारे में भी जाने कि जहाँ शब्द और अर्थ दोनों पर आधारित अलंकार हो। कजरारी अखियन में कजरारी न लखाए, इस पंक्ति में कजरारी शब्द का दोहरा अर्थ है, एक तो काली आंखें और दूसरा कजली, आंखों में लगाने वाला। ये शब्द और अर्थ दोनों पर आधारित हैं, ये काव्य को चमत्कृत करता है। अलंकार और रस कविता के दो महत्वपूर्ण तत्व हैं, जो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। और कविता साहित्य की शैली को सजाने और अर्थ को गहरा बनाने में मदद करते हैं। अलंकार काव्य को सजाने में मदद करते हैं, जबकि रस कविता को भावनात्मक गहराई प्रदान करते हैं। संक्षेप में कहा जाए तो रस वह भाव है जो काव्य को जीवन देता है, और अलंकार वह सजावट है जो उसे सौंदर्य प्रदान करता है। एक के बिना दूसरा अधूरा है, क्योंकि भावों के बिना अलंकार बेजान और सजावट के बिना रस नीरस हो सकता है। यही दोनों मिलकर काव्य को प्रभावशाली और पूर्ण बनाते हैं। रस आनंद की अनुभूति कराता है, और अलंकार उस अनुभूति को अधिक प्रभावशाली तथा यादगार बनाता है। धन्यवाद।
0: अभी आप शैक्षिक प्रसारण के अंतर्गत सुन रहे थे वार्ता साहित्य में अलंकार एवं रसों का महत्व। वार्ताकार थी रीना सहाय, प्रस्तुति थी नूतन प्रसाद की, और प्रस्तुति सहयोग अवधेश कुमार का था।

श्रोताओं, अभी आपने अलका याग्निक की आवाज में जख्म फिल्म का ये खूबसूरत सा गीत सुना। संगीतबद्ध किया था M.M. करीम ने और रचना थी आनंद बख्शी की। दिल है कि मानता नहीं, जी हाँ दोस्तों, ये है उस फिल्म का नाम जिसका गाना अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं। स्वर है अनुराधा पौडवाल और कुमार सानू की। तर्ज बनाया है भूषण दुआ ने और बोल हैं फैज अनवर के।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय राजस्थान के बालोतरा में हैं। उन्होंने बालोतरा में कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये परियोजनाएं पेट्रोकेमिकल्स, शहरी परिवहन, रेलवे, सड़क, नवीकरणीय ऊर्जा और विद्युत पारेषण से संबंधित हैं।
1: रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स प्रदेश के पश्चिमी जिलों में निवेश, रोजगार और विकास के नए द्वार खोलेगा। राजस्थान रिफाइनरी परियोजना MSME, पैकेजिंग, टेक्सटाइल, ऑटो पार्ट्स व एग्री फिल्म्स जैसे उद्योगों को भी सशक्त करेगी, जिससे प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी। जयपुर मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण में उत्तर दक्षिण कॉरिडोर विकसित किया जाएगा, जो शहर में मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देगा। इस चरण से एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर संबंधित परिवहन साधनों एवं मेट्रो सुविधा का एकीकरण किया जाएगा, जिससे नागरिकों को सुगम परिवहन सुविधा उपलब्ध होगी। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जोधपुर।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। 480 करोड़ रुपए की लागत से तैयार ये नया टर्मिनल भवन प्रतिवर्ष 20 लाख यात्रियों की आवाजाही के लिए डिजाइन किया गया है। श्री मोदी ने संशोधित उड़ान योजना का भी शुभारंभ किया। इससे क्षेत्रीय संपर्क के साथ साथ विमानन क्षेत्र को प्रोत्साहन मिलेगा। देश के नागर विमानन परिदृश्य में इस महत्वपूर्ण विकास से उड़े देश का आम नागरिक पहल को बल मिलेगा। प्रधानमंत्री मोदी शाम में गुजरात के लिए रवाना होंगे, जहां वे सानंद में CG सेमी आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट सुविधा का उद्घाटन करेंगे। गृह मंत्रालय ने पाकिस्तान में 23 व्यक्तियों को गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम UAPA के तहत आतंकवादी घोषित किया है। ये लोग जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा और अन्य संगठनों से जुड़े हुए थे। मंत्रालय ने कहा कि देश और नागरिकों की सुरक्षा के लिए सरकार हर आतंकी मॉड्यूल को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। UAPA अधिनियम में संशोधन से केंद्र सरकार और जांच एजेंसियों की शक्तियों का विस्तार करके देश के आतंकवाद रोधी कानूनी ढांचे को मजबूत किया गया है। उपराष्ट्रपति CP राधा कृष्णन ने आज मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR प्रक्रिया के अंतर्गत गणना प्रपत्र जमा किया। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी, मतदाता पंजीकरण अधिकारी और बूथ स्तरीय अधिकारी ने उपराष्ट्रपति भवन में चल रही मतदाता सूची के SIR के अंतर्गत गणना प्रक्रिया को सुगम बनाया है। श्री राधाकृष्णन ने सभी पात्र मतदाताओं से इस प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेने का आग्रह किया। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने सोमवार को अपने सदस्यों की बैठक बुलाई है, जिसमें

0: वेनेजुएला के लोगों को 2400 घंटे मुफ्त चिकित्सा सेवाएं प्रदान कर रहा है। भारत और इसराइल के बीच द्विपक्षीय निवेश समझौता आज से लागू हो गया है। इस समझौते पर पिछले वर्ष सितंबर में नई दिल्ली में हस्ताक्षर किए गए थे। वित्त मंत्रालय ने बताया कि यह समझौता द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों करने और एक सुरक्षित तथा निवेश का अनुमानित वातावरण सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। फीफा विश्व कप में कोलंबिया ने अमेरिका के कंसास सिटी स्टेडियम में राउंड 32 के अंतिम मैच में घाना को 1-0 से हराकर अगले दौर में जगह पक्की की। राउंड ऑफ अब कोलंबिया का मुकाबला स्विट्जरलैंड से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Siren. Prime Minister Narendra Modi inaugurated the new terminal building of Jodhpur Airport in Rajasthan today. The project has been developed at a total cost of 480 crore rupees. Spread over an area of more than 23,000 square meters, the new terminal building is designed to handle up to 20 lakh passengers annually. The new terminal building at Jodhpur Airport will provide a significant boost to tourism, trade and employment generation in the region. Mr. Modi also launched the modified Udaan scheme in Jodhpur with an allocation of 28,040 crore. The scheme aims to The Union Home Minister in Pakistan terrorists under the Activities Prevention Act, UAPA. Jaish Muhammad, Lashkar-e-Tayyaba, and other organizations. These individuals were designated as terrorists for their involvement in various activities, including infiltration, recruitment, supply of arms, and planning attacks in Jammu and Kashmir. This will allow agencies such as the National Investigation Agency to block their finances, impose embargoes on arms sales, and seize their assets. The government has issued notice to Telegram over widespread piracy reports. According to official sources, the government has directed Telegram to take immediate measures against pirated films and content.

0: यौन शिकायतें नहीं है। अविनाश कुमार की अध्यक्षता अदालती मामलों पर उच्च स्तरीय बैठक, समय पर शपथ पत्र दाखिल करने और विधि पोर्टल 2.0 लाने का निर्देश। राज्य में बीडीओ और सीओ का पद एक ही अधिकारी को देने के सरकार के फैसले का भाजपा ने किया विरोध, प्रदेश महामंत्री ने जताई ग्रामीण विकास ठप होने की आशंका। और झारखंड राज्य खाद्य आयोग की प्रभारी अध्यक्ष ने पश्चिम सिंहभूम का किया दौरा, जरूरतमंदों को आकस्मिक खाद्यान्न कोष से तुरंत राशन देने का निर्देश। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तथा कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अल नीनो के प्रभाव से देश के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम वर्षा की स्थिति की समीक्षा की। नई दिल्ली में हुई इस उच्च स्तरीय बैठक में केंद्रीय गृह सचिव और कृषि सचिव सहित विभिन्न मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। बैठक में कम बारिश से प्रभावित क्षेत्रों में जल प्रबंधन और किसानों को राहत देने की रणनीतियों पर चर्चा की गई। एक रिपोर्ट।
1: गृह मंत्री ने कहा कि सरकार अल नीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम वर्षा और संभावित सूखे की स्थिति पर लगातार नजर रख रही है। उन्होंने कृषि मंत्रालय और सभी संबंधित किसानों को उपयुक्त फसलों की बुवाई के बारे में परामर्श देने के लिए राज्य सरकारों के साथ समन्वय करने का निर्देश दिया। श्री शाह ने जल संसाधन विभाग के अधिकारियों को देश के सभी जल भंडारों की निगरानी करने तथा विद्युत मंत्रालय के सचिव को बिजली की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई का निर्देश भी दिया। श्री शाह ने कहा कि गृह मंत्रालय ताकि बाढ़ से हुए नुकसान का आकलन किया जा सके। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से दुर्गा प्रसाद।
0: राज्य में मॉनसून पर अल नीनो का प्रभाव देखा जा रहा है। रांची मौसम केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक अभिषेक आनंद के अनुसार प्रशांत महासागर के सतही तापमान में बदलाव यानी अल नीनो के कारण दक्षिण पश्चिमी मॉनसून कमजोर पड़ रहा है।
2: देखिए, प्रशांत महासागर में जो सतही समुद्री टेम्परेचर की बात करें तो उसमें जो चेंजेस आता है पूर्वी या पश्चिमी भाग में, उस टेम्परेचर चेंजेस को हम लोग अलनीनो के नाम जानते हैं। तो इसके होने से ये होता है कि भारतीय मानसून कमजोर होता है, से अधिकतर खेती होती है, उसी पे हम लोग ज्यादा निर्भर है, बारिश में अनियमितता देखने को मिलती है।
0: केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने शी बॉक्स पोर्टल को कामकाजी महिलाओं के अधिकारों और सुरक्षा के लिए एक सशक्त माध्यम बताया है। सोशल मीडिया पर उन्होंने कहा कि इसके जरिए कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की शिकायतें पूरी तरह गोपनीय और सुरक्षित तरीके से ऑनलाइन दर्ज की जा सकती हैं। यह डिजिटल पहल महिलाओं को निडर होकर अपनी आवाज उठाने की सुविधा देती है। भाजपा के प्रदेश महामंत्री अमर बाउरी ने राज्य के प्रखंडों में बीडीओ

0: और सीओ के पद एक ही अधिकारी को सौंपे जाने पर सरकार पर तीखा हमला बोला है। रांची में पत्रकारों से बात करते हुए श्री बाउरी ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार का विकास और जनता की समस्याओं से कोई लेना देना नहीं है।
1: आज के समय डिसेंट्रलाइजेशन सबसे अच्छा विकल्प माना जाता है। काम को जितना विकेंद्रीकरण करके आप अकाउंटेबल लोगों को पदाधिकारियों को बैठा करके आप रिजल्ट निकालिए, ऐसे समय में आप ये मर्ज करके इससे पूरे व्यवस्था को चौपट करना चाहते हैं और मुझे लगता है इसका दूरगामी परिणाम बहुत भयावह होने जा रहा है झारखंड की परिस्थिति में, और आज नहीं तो कल इनको रोल बैक करना ही होगा। इसलिए पुनर्विचार करें और नए नए पदों में नए नए पदाधिकारी जेपीएससी यूपीएससी से जो लोग आए हैं जो भी वीडियो सी उनको वहां दीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों की बहाली करिए और उनको काम करने में लगाइए।
0: राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में लंबित अदालती मामलों के त्वरित निपटारे के लिए मुख्य सचिव अविनाश कुमार की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। प्रोजेक्ट भवन में हुई इस बैठक में नवनियुक्त महाधिवक्ता रोहिताशी रॉय भी मौजूद रहे। मुख्य सचिव ने सभी विभागीय सचिवों को अदालती मामलों में तय समय पर शपथ पत्र दाखिल करने के सख्त निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही कानूनी मामलों की प्रभावी डिजिटल मॉनिटरिंग के लिए जल्द ही अपग्रेड विधि पोर्टल 2.0 लॉन्च करने का फैसला लिया गया है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज स्वामी विवेकानंद की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने स्वामी जी को महान देशभक्त और दार्शनिक बताते हुए कहा कि उनके प्रेरणादायक विचार और आध्यात्मिक शिक्षाएं विकसित भारत के निर्माण में युवाओं का मार्गदर्शन करती रहेंगी। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। धनबाद के निरसा विधायक अरूप चटर्जी को कथित तौर पर गैंगस्टर प्रिंस खान द्वारा फोन और व्हाट्सएप पर धमकी मिलने का मामला सामने आया है। विधायक ने धनबाद एसएसपी से लिखित शिकायत पर सुरक्षा बढ़ाने और कार्रवाई की गुहार लगाई है।
2: जो ढूलू बातों के खिलाफ जो हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, जो उनके गलत कारनामों को हम लोग खोल रहे हैं, उन तमाम चीजों से बाज आए। ढूलू अगर ये समझता है जो किसी क्रिमिनल को लगा कर हम लोगों को चुप करवा देगा, जब वो खुद नहीं बोल पाता है, चीजों की जवाब नहीं दे पाती है, तो क्रिमिनल को आगे करते हैं।
0: झारखंड राज्य खाद्य आयोग के प्रभारी अध्यक्ष शबनम परवीन ने पश्चिमी सिंहभूम के 2 दिवसीय दौरे के बाद कहा कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम से वंचित सभी जरूरतमंदों को आकस्मिक खाद्यान्न कोष से राशन दिया जाए।
3: जांच में मैंने पाया कि उन लोगों का जो आरोप था वो सही है। मैंने यहाँ के एडिशनल कलेक्टर जो जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी होते हैं उनको मैंने ये निर्देश दिया है कि वो 15 दिनों के अंदर उनकी समस्याओं का समाधान करके और जितने दिनों का राशन नहीं मिला है 1.25 गुना मुआवजा के साथ उसे राशन उपलब्ध कराना है।
0: चक्रधरपुर रेल मंडल के डीआरएम तरुण हुरिया ने जमशेदपुर के टाटानगर रेलवे स्टेशन का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने स्टेशन परिसर, नवनिर्मित बुनियादी ढांचे और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। डीआरएम ने अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक कर रेल यात्रियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने और साफ सफाई व्यवस्था को और सुदृढ़ करने के कड़े निर्देश दिए।
4: यहाँ पे आवागमन के लिए लाइन की कमी है, यहाँ पर लाइनों को कैसे बढ़ाया जा सकता है, कहाँ पे क्या है, कहाँ पे और लाइन दी जा सकती है या कहाँ पे लाइन ऐसे दी जाए ताकि गाड़िया जल्दी आया जाए, तो उसके लिए एक सर्वे किया था हमने, यार्ड में भी दे गए थे, वो है उपयोग किया जाए तो पैसेंजर के लिए जो सुविधा है।
0: राजधानी रांची के सराफा बाजार में आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1,37,500 रुपए प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी की कीमत 2,45,000 रुपए प्रति किलो है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। उपराष्ट्रपति ने सहकार से समृद्धि

संकल्प दोहराया। अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सहकारिता क्षेत्र का विस्तार देश की आत्मनिर्भरता की नींव है। 65वीं रांची जिला सुब्रतो कप फुटबॉल प्रतियोगिता के अंडर 15 बालक वर्ग का खिताब मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय कांके ने जीत लिया है। रोमांचक फाइनल मुकाबले में कांके की टीम ने सेंट जॉन्स स्कूल को 4-3 से पराजित किया। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार। झारखंड समेत देश के कई हिस्सों में कम बारिश को लेकर नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक। गृह मंत्री और कृषि मंत्री ने की अल नीनो के प्रभाव की समीक्षा। किसानों को राहत देने पर हुई चर्चा। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने शी बॉक्स पोर्टल को सराहा। कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की ऑनलाइन शिकायतें रहेंगी पूरी तरह गोपनीय। मुख्य सचिव अविनाश कुमार की अध्यक्षता में लंबित अदालती मामलों पर उच्च स्तरीय बैठक। समय पर शपथ पत्र दाखिल करने और विधि पोर्टल 2.0 लाने का निर्देश। राज्य में बीडीओ और सीओ का पद एक ही अधिकारी को देने के सरकार के फैसले का भाजपा ने किया विरोध। प्रदेश महामंत्री ने जताई ग्रामीण विकास ठप होने की आशंका। और झारखंड राज्य खाद्य आयोग की प्रभारी अध्यक्ष ने पश्चिमी सिंहभूम का किया दौरा। जरूरतमंदों को आकस्मिक खाद्यान्न कोष से तुरंत राशन देने का निर्देश। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है उप शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम मनोरंजनी, जिसके अंतर्गत आज आप सुनेंगे शोभा गुटू को। तो आइए सुनते हैं इनसे मिस्र पहाड़ी में ठुमरी, बोल हैं छोड़ो छोड़ो डगरिया।

ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। आइए सुनते हैं सुगम संगीत, जिसमें आज आप सुनेंगे चंद गजलें। पेश है जगजीत सिंह की आवाज में ये खूबसूरत सा नगमा।

0: यदि माँ HIV से संक्रमित हो तो नवजात शिशु को HIV का संक्रमण हो सकता है। इसलिए गर्भावस्था के पहले 3 माह के अंदर माँ की HIV जांच अपने निकटतम सरकारी अस्पताल में अवश्य कराएं, ताकि शिशु को HIV के संक्रमण से बचाया जा सके। जांच जितनी जल्दी, सुरक्षा उतनी पक्की। अधिक जानकारी के लिए नाको टोल फ्री नंबर 1-0097 पर संपर्क करें या नाको एड्स ऐप डाउनलोड करें। झारखंड राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
1: अगली गजल आप सुनेंगे चित्रा सिंह की आवाज में।

उसी मोड़ पर हमें मिलना, लौट कर हम जरूर आएंगे। जी हाँ दोस्तों, अब हमारे जाने का समय हो चला है, पर हम वापस लौट कर जरूर आएंगे। इसी उम्मीद के साथ अपनी दोस्त ज्योत्सना को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्स और एफएम 100.5 मेगाहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। अब से बस कुछ ही क्षणों में हमारे दिल्ली केंद्र से समाचार प्रसारित किए जाएंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के बालोतरा में भारत का पहला ग्रीनफील्ड इंटीग्रेटेड रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल परिसर देश को समर्पित किया। उन्होंने जोधपुर एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन का भी उद्घाटन किया। गृह मंत्रालय ने गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के अंतर्गत पाकिस्तान स्थित 23 लोगों को आतंकवादी घोषित किया। सरकार ने बड़े पैमाने पर पायरेसी की रिपोर्ट मिलने के बाद मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम को नोटिस जारी कर 15 दिनों के भीतर रिपोर्ट देने को कहा है। भारत और इसराइल के बीच द्विपक्षीय निवेश समझौता आज से लागू। दक्षिण पश्चिम मानसून अगले 4 दिनों में गुजरात, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के कुछ हिस्सों में और आगे बढ़ेगा। भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा टी20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज मैनचेस्टर में खेला जाएगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राजस्थान के बालोतरा में लगभग 1,06,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। ये परियोजनाएं पेट्रोकेमिकल्स, शहरी परिवहन, रेलवे, सड़क, नवीकरणीय ऊर्जा और विद्युत पारेषण सहित कई क्षेत्रों से जुड़ी हैं। प्रधानमंत्री ने बालोतरा के पचपदरा में भारत का पहला ग्रीन फील्ड एकीकृत रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल परिसर राष्ट्र को समर्पित किया। ये देश के ऊर्जा और पेट्रोकेमिकल क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। ग्रीनफील्ड रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल परिसर हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड और राजस्थान सरकार का संयुक्त उद्यम है। प्रधानमंत्री ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि ये रिफाइनरी हजारों लोगों के लिए रोजगार का माध्यम बनेगी।
1: आज इस रिफाइनरी को देश को समर्पित किया गया है। ये रिफाइनरी यहाँ हजारों लोगों के रोजगार का माध्यम बनेगी। मैं राजस्थान के युवाओं को इस रिफाइनरी की विशेष तौर पर बधाई देता हूँ। आज का दिन साक्षी है कि बीजेपी सरकारें परियोजनाओं को सिर्फ शिलान्यास करके नहीं छोड़ती है, बल्कि हम उन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए भी दिन रात एक कर देते हैं।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने 13,000 करोड़ रुपए से अधिक की कुल लागत वाली जयपुर मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण का भी शिलान्यास किया। दूसरे चरण में प्रहलादपुरा से तोड़ी मोड़ तक 41 किलोमीटर लंबा उत्तर दक्षिण मेट्रो कॉरिडोर विकसित किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने चुरू सादुलपुर और चुरू रतनगढ़ रेल दोहरीकरण परियोजनाओं और राष्ट्रीय राजमार्ग 125A जोधपुर रिंग रोड खंड 2 के 4 लेन निर्माण को भी राष्ट्र को समर्पित किया। उन्होंने सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड की 1000 मेगावाट बीकानेर सौर ऊर्जा परियोजना भी राष्ट्र को समर्पित की। श्री मोदी ने राजस्थान नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र REZ से बिजली निकासी के लिए 1,900 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से निर्मित पारेषण लाइन का उद्घाटन किया। उन्होंने REZ के लिए 530 किलोमीटर लंबी बिजली पारेषण प्रणाली की आधारशिला भी रखी। प्रधानमंत्री मोदी ने राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों में भर्ती किए गए लगभग 54,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र भी सौंपे। इससे पहले प्रधानमंत्री ने आज जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। 480 करोड़ रुपए की लागत से तैयार ये नया टर्मिनल भवन प्रतिवर्ष 20 लाख यात्रियों की आवाजाही के लिए डिजाइन किया गया है। श्री मोदी ने संशोधित उड़ान योजना का भी शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के नागर विमानन परिदृश्य में इस महत्वपूर्ण योजना से उड़े देश का आम नागरिक पहल को बल मिलेगा।
1: जोधपुर से ही आज उड़ान योजना के नए चरण की भी शुरुआत हुई है। इसके तहत छोटे छोटे शहरों और दूर दराज के क्षेत्रों को एयर कनेक्टिविटी से जोड़ा जाएगा। साथ ही अब जयपुर में मेट्रो का विस्तार भी होने जा रहा है।
0: प्रधानमंत्री आज शाम गुजरात जाएंगे, जहां वे साणंद में सीजी सेमी आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट सुविधा का उद्घाटन करेंगे। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: अपनी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सीजी सेमी के सेमीकंडक्टर प्लांट का दौरा करेंगे और यहां की अत्याधुनिक क्लीन रूम सुविधा का निरीक्षण करेंगे। उद्घाटन के बाद प्रधानमंत्री एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। इस खास कार्यक्रम में केंद्रीय सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी भी मौजूद रहेंगे। वर्तमान में इस प्लांट में 300 से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं और आने वाले 5 सालों में यहां 5,000 से अधिक युवाओं को रोजगार मिलने की उम्मीद है, जिससे इस पूरे क्षेत्र के विकास को एक नई रफ्तार मिलेगी। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: गुजरात में विभिन्न रेलवे परियोजनाओं की समीक्षा के बाद अहमदाबाद में संवाददाताओं से रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने विश्वास जताया कि अहमदाबाद और मुंबई को जोड़ने वाला पूरा हाई स्पीड रेल कॉरिडोर 2029 के अंत तक तैयार हो जाएगा। उन्होंने बताया कि मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना का निर्माण कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है।
3: बुलेट ट्रेन का कंस्ट्रक्शन भी बहुत तेजी से चल रहा है और अगले साल सूरत से बिलीमोरा का पहला सेक्शन आरंभ करेंगे, उसके बाद में वापिस से सूरत का सेक्शन आरंभ करेंगे, उसके बाद में वापिस से अहमदाबाद का पूरा कंप्लीट करेंगे, फिर अहमदाबाद से ठाणे और उसके बाद में अहमदाबाद से मुंबई। इस तरह से सेक्शन बाय सेक्शन, फेज बाय फेज 2029 के एंड तक कंप्लीट करेंगे प्रोजेक्ट। बहुत 80% काम गुजरात के क्षेत्र में कंप्लीट हो चुका है और बहुत ही अच्छी प्रोग्रेस।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्रालय ने पाकिस्तान स्थित 23 व्यक्तियों को गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम UAPA के तहत आतंकवादी घोषित किया है। ये लोग जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा और अन्य संगठनों से जुड़े हुए थे। मंत्रालय ने कहा कि देश और नागरिकों की सुरक्षा के लिए सरकार हर आतंकी मॉड्यूल को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। एक रिपोर्ट।
4: गृह मंत्रालय द्वारा आज घोषित किए गए 23 आतंकवादियों में से 17 पाकिस्तान के जबकि 6 भारतीय नागरिक हैं। इस समय ये सभी नामित आतंकवादी पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर से अपनी आतंकवादी गतिविधि चला रहे हैं। ये आतंकवादी भारत विरोधी गतिविधियों, हथियारों की तस्करी, सीमा पार घुसपैठ, आतंकवादी संगठनों की मदद, धन जुटाने और आतंकियों की भर्ती जैसी गतिविधियों में शामिल हैं। इन व्यक्तियों को आतंकवादी घोषित किए जाने के बाद राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA इनकी आर्थिक गतिविधियों पर रोक लगा सकेंगी, हथियारों की खरीद बिक्री पर प्रतिबंध और उनकी संपत्तियां जब्त कर सकेंगी। वर्ष 2019 में गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम में संशोधन लागू होने के बाद से केंद्र सरकार अब तक 80 व्यक्तियों को आतंकवादी घोषित कर चुकी है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: व्यापक पायरेसी की खबरों को देखते हुए सरकार ने मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम को नोटिस जारी किया है। सरकार ने टेलीग्राम को पायरेटेड फिल्मों और OTT कंटेंट के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार प्लेटफॉर्म को 15 दिनों के भीतर कार्रवाई रिपोर्ट देने को कहा गया है। इस कदम का उद्देश्य भारत की रचनात्मक अर्थव्यवस्था, फिल्म उद्योग, प्रसारकों, OTT प्लेटफॉर्म निर्माताओं और वितरकों की रक्षा करना है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि खिलौनों के आयात में भारी गिरावट आई है और घरेलू खिलौना बाजार में देश में ही बने उत्पादों की हिस्सेदारी बढ़ गई है। नई दिल्ली में आयोजित 17वें टॉय बिज इंटरनेशनल B2B एक्सपो को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि भारतीय खिलौना निर्माता राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। इस बीच भारतीय जनता पार्टी की सांसद बांसुरी स्वराज ने कहा कि भारत का खिलौना उद्योग जमीनी स्तर पर रचनात्मकता, नवाचार, उद्यमिता और आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को दर्शाते हैं। उन्होंने कहा कि ये क्षेत्र देश की लोकल से ग्लोबल पहल का एक सशक्त उदाहरण बनकर उभरा है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने आज मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR प्रक्रिया के अंतर्गत गणना प्रपत्र जमा किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री राधाकृष्णन ने सभी पात्र मतदाताओं से इस प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेने को कहा है। भारत और इसराइल के बीच द्विपक्षीय निवेश समझौता BIA आज से लागू हो गया है। इस समझौते पर पिछले वर्ष सितंबर में नई दिल्ली में हस्ताक्षर किए गए थे। वित्त मंत्रालय ने बताया कि यह समझौता द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों को मजबूत करने और सुरक्षित तथा निवेश का अनुमानित वातावरण सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। मंत्रालय ने बताया कि BIA से सीमा पार निवेश गतिविधियों में वृद्धि होने और भारत तथा इसराइल

0: के बीच आर्थिक साझेदारी और मजबूत होने की उम्मीद है। भारत ने भूकंप प्रभावित वेनेजुएला में भारतीय सेना की एक विशेष चिकित्सा टुकड़ी तैनात की है। वेनेजुएला के विदेश मंत्री इवान गिल ने भूकंप पीड़ितों की सहायता के लिए भारत सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थन और सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने आज भूकंप प्रभावित लोगों के इलाज के लिए ऑपरेशन अमिस्ताद के तहत स्थापित भारतीय सैन्य फील्ड अस्पताल का दौरा किया। ये अस्पताल वेनेजुएला के लोगों को 24 घंटे मुफ्त चिकित्सा सेवाएं प्रदान कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेरू के राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल करने पर केकी फुखिमोरी को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि भारत पेरू के साथ अपनी घनिष्ठ मित्रता को बहुत महत्व देता है और विभिन्न क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय साझेदारी को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्ला सैयद अली खामनेई को तेहरान में सुपुर्दे खाक करने के 6 दिन के राजकीय कार्यक्रम की तैयारियां चल रही हैं। ईरान के वरिष्ठ नेताओं, सैन्य कमांडरों और विदेशी गणमान्य व्यक्तियों ने तेहरान के ग्रैंड मुसल्ला में आयतुल्ला अली खामनेई को श्रद्धांजलि अर्पित की। समाचार सेवा प्रभाग विशेष श्रृंखला में प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ के अंतर्गत आज वृक्षारोपण और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में कार्यरत देवेंद्र सूरा के साथ परिचर्चा प्रस्तुत कर रहा है।
1: चंडीगढ़ शहर अगर सुंदर है तो पेड़ पौधों की वजह से है, तो मेरे मन में आया क्यों ना इस प्लान से हम भारत के हर गांव को रब रब बनाएं। मातृ शक्ति ने वहाँ के जो भी सम्मानित या जितने प्रिंसिपल सभी ने भागीदारी दिखाई, अब भी बेटी के नाम के आगे ऊपर लिखना है माता का नाम। जनता नर्सरी बनाई है, उसमें फ्री में पेड़ दिए जाते हैं। ये कार्य तो अभी शुरू हुआ है, अंतिम सांस तक इस अभियान को मतलब एक बड़ी खुशी से और समर्पित भाव से चलता रहेगा।
2: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।
0: ये परिचर्चा आज शाम 5:10 पर आकाशवाणी FM गोल्ड 100.1 MHz पर प्रसारित की जाएगी। इसे न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी सुना जा सकता है। इसका पुनः प्रसारण कल सुबह 10:30 भी होगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के गुजरात, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने की संभावना व्यक्त की है। मध्य प्रदेश, तटीय कर्नाटक, पूर्वी राजस्थान, तेलंगाना और विदर्भ में कल मूसलाधार वर्षा का अनुमान है। महाराष्ट्र से हमारी संवाददाता ने बताया है कि कई क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है।
3: मौसम विभाग ने मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगढ़ और सातारा, पुणे व नासिक के घाट इलाकों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी और पालघर जिलों की नदियों में जलस्तर बढ़ रहा है और अधिकारी स्थिति पर कड़ी नजर रखे हुए हैं। मुंबई शहर और आसपास के इलाकों में आज लगातार 5वें दिन जोरदार बारिश जारी है। बारिश की वजह से स्कूलों और कॉलेजों में दोपहर की क्लास के लिए छुट्टी घोषित कर दी गई है। नगर निगम ने लोगों से अपील की है कि वे तभी घर से बाहर निकले जब बहुत जरूरी हो। माधुरी पांगे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं आनंद पाठक।
4: क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 श्रृंखला का दूसरा मुकाबला आज मैनचेस्टर में खेला जाएगा। भारतीय समय के अनुसार मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा। श्रृंखला का पहला मैच बारिश के कारण रद्द हो गया था। फीफा विश्व कप में कोलंबिया ने घाना को 1-0 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश कर लिया है। अब अगले दौर में उसका मुकाबला स्विट्जरलैंड से होगा। वहीं मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना ने अतिरिक्त समय तक चले रोमांचक मुकाबले में कार्बो वर्डे को 3-2 से हराकर अंतिम 16 में जगह बना ली है। अर्जेंटीना लिए लियोनल मेसी ने टूर्नामेंट का अपना 7वां गोल किया।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के बालोतरा में भारत का पहला ग्रीनफील्ड इंटीग्रेटेड रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल परिसर देश को समर्पित किया। उन्होंने जोधपुर एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन का भी उद्घाटन किया। गृह मंत्रालय ने गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के अंतर्गत पाकिस्तान स्थित 23 लोगों को आतंकवादी घोषित किया। सरकार ने बड़े पैमाने पर पायरेसी की रिपोर्ट मिलने के बाद मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम को नोटिस जारी कर 15 दिनों के भीतर रिपोर्ट देने को कहा। भारत और इसराइल के बीच द्विपक्षीय निवेश समझौता आज से लागू और भारत इंग्लैंड के बीच दूसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज मैनचेस्टर में खेला जाएगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। दोस्तों आइए सुनते हैं अब फौजी भाइयों का कार्यक्रम जय भारती। और कार्यक्रम का सबसे पहला गाना हमने लिया है भुज फिल्म से अरिजीत सिंह की आवाज में। आरको ने इस गीत की तर्ज बनाई है और लिखा है मनोज मुंतशिर ने।

अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह

दोस्तों, अभी आप योद्धा फिल्म का गाना बी पराग की आवाज में सुन रहे थे, जिसे संगीतबद्ध किया था तनिष्क बागची ने और शब्द रचना थी मनोज मुंतशिर की। और अब अगली पेशकश है विशाल ढलानी और रावजी वाणी की आवाजों में फिल्म फाइटर से। अभिजीत नालानी ने संगीत तैयार किया है और बोल हैं कुमार के।

श्रोताओं, अब हम कार्यक्रम के आखिर पायदान पर पहुंच चुके हैं और यहाँ हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म इंडियन का ये खूबसूरत सा गीत। स्वर है रूप कुमार राठौर का और इस गाने को लिखा भी इन्होंने ही है।

श्रोताओं, इसी खूबसूरत से गीत के साथ हमारा फौजी भाइयों का कार्यक्रम जय भारती यहीं संपन्न होता है। नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। आइए सुनते हैं प्रादेशिक समाचार।
1: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं नूतन लकड़ा। केंद्र सरकार ने मूल्य स्थिरीकरण बफर के लिए प्याज की खरीद मूल्य में 13% की बढ़ोतरी की है। इसका खरीद मूल्य 1875 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़कर अब 2125 रुपये प्रति क्विंटल हो गया है। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने बताया कि संशोधित खरीद मूल्य आज से प्रभावी हो गया है। मंत्रालय के अनुसार इससे प्याज किसानों को बेहतर लाभ मिलेगा और साथ ही बफर खरीद प्रयासों में भी सहायता मिलेगी। सरकार के मूल्य स्थिरीकरण बफर के लिए भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड नेफेड और भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड एनसीसीएफ के माध्यम से प्याज की खरीद जारी है। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने सी बॉक्स पोर्टल को कामकाजी महिलाओं के अधिकारों और सुरक्षा के लिए एक सशक्त माध्यम बताया है। सोशल मीडिया पर उन्होंने कहा कि इसके जरिए कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की शिकायतें पूरी तरह गोपनीय और सुरक्षित तरीके से ऑनलाइन दर्ज की जा सकती हैं। यह डिजिटल पहल महिलाओं को निडर होकर अपनी आवाज उठाने की सुविधा देता है। राज्य के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने पुलिस मुख्यालय की अनदेखी से नाराज होकर अपनी सुरक्षा में लगे जवानों और वाहनों को वापस कर दिया है। वित्त मंत्री ने कहा कि इतने जवानों को बिठाने के लिए गाड़ियों की संख्या पर्याप्त होनी चाहिए।
1: जैसे कि मेरे साथ भी वही व्यवस्था के तहत गाड़ियां उपलब्ध कराई गई थी। मेरे पास कुल गार्ड्स की संख्या 16 है और 3 गाड़ियां थी। मैंने पत्र लिखा डीजीपी को 2 महीने पहले, यानी कि लगभग 21 अप्रैल को, कि 3 गाड़ियों से 16 जवान को बैठाना उचित नहीं होगा। सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से भी यह कभी अच्छी बात नहीं।
0: इधर भाजपा विधायक भानु प्रताप शाही ने कहा कि कांग्रेस में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। राज्यसभा चुनाव के बाद कांग्रेस के मंत्रियों को ड्रॉप होने का डर है।
2: विषय है कि राज्यसभा के बाद कांग्रेस में मंत्रियों को रिशफल करने की चर्चा चल रही है, दाव पेच का खेल हो रहा है। इनके संबंध न प्रभारी से अच्छे हैं न अध्यक्ष से अच्छे हैं, इनको ड्रॉप होने का ज्यादा चांस है। स्वास्थ्य मंत्री को भी ड्रॉप होने का ज्यादा चांस है। हो सकता है दीपिका जी को भी हटा दिया जाए, बंधु की बेटी धर्म के आधार पर बच सकती है, लेकिन ये 3 लोगों को जाने का चांस है।
0: भाजपा के प्रदेश महामंत्री अमर बाउरी ने राज्य के प्रखंडों में बीडीओ और सीओ के पद एक ही अधिकारी को सौंपे जाने पर सरकार पर तीखा हमला बोला है। रांची में पत्रकारों से बात करते हुए श्री बाउरी ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार का विकास और जनता की समस्याओं से कोई लेन देन नहीं है। प्रादेशिक समाचार, आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज मतदाता सूची के विशेष गहन पुनर्निरीक्षण एसआईआर प्रक्रिया के अंतर्गत गणना प्रपत्र जमा किया। सोशल मीडिया पोस्ट में उपराष्ट्रपति ने बताया कि दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी, मतदाता पंजीकरण अधिकारी और बूथ स्तरीय अधिकारी ने उपराष्ट्रपति भवन में चल रही मतदाता सूची के एसआईआर के अंतर्गत गणना प्रक्रिया को सुगम बनाया। श्री राधाकृष्णन ने सभी पात्र मतदाताओं से इस प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेने का आग्रह किया। राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में लंबित अदालती मामलों के त्वरित निपटारे के लिए मुख्य सचिव अविनाश कुमार की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। प्रोजेक्ट भवन में हुई इस बैठक में नव नियुक्त महाधिवक्ता रोहिताशय रॉय भी मौजूद रहे। मुख्य सचिव ने सभी विभागीय सचिवों को अदालती मामलों में तय समय पर शपथ पत्र दाखिल करने के सख्त निर्देश दिए हैं। धनबाद के निरसा विधायक आरूप चटर्जी को कथित तौर पर गैंगस्टर प्रिंस खान द्वारा फोन और व्हाट्सएप पर धमकी मिलने का मामला सामने आया है। विधायक ने धनबाद एसएसपी से लिखित शिकायत कर सुरक्षा बढ़ाने और कार्रवाई की गुहार लगाई है। गढ़वा जिला नियोजनालय द्वारा आज जिला मुख्यालय स्थित गोविंद उच्च विद्यालय के मैदान में दत्तोपंत ठेगड़ी रोजगार मेले का आयोजन किया। इसमें शामिल विभिन्न निजी कंपनियों द्वारा 139 युवक युवतियों मजदूरों को रोजगार प्रदान किया गया। इससे पूर्व रोजगार मेले का उद्घाटन उपायुक्त पशुपतिनाथ मिश्रा, पुलिस अधीक्षक आशुतोष शेखर, उप विकास आयुक्त प्रेमलता मुर्मू ने संयुक्त रूप से किया। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 4 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: दोस्तों ये मधुर गीत हमने फिल्म जब वी मेट से लिया था, जिसे लिखा था फैज अनवर ने, आवाज थी उस्ताद राशिद खान की, और इस गाने को संगीतबद्ध किया था संदेश शांडिल्या ने। अगला गाना हम आपको सुनवाएंगे इस छोटे से विज्ञापन अंतराल के बाद।
1: सतना मध्य प्रदेश के श्रीमान भरत गुप्ता करके हैं, माय गॉड पर एक मेल भेजा, रेलवे में जा रहे थे, उसका अपना अनुभव कहा। उन्होंने कहा साहब मैं पहले भी रेलवे में जाता था, इस बार भी रेलवे में गया, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि रेलवे में हर पैसेंजर, रेलवे में लोग खाते पीते रहते हैं, कागज वागज फेंकते रहते हैं, बोले कोई फेंकता नहीं था। इतना ही नहीं, ढूंढते थे भाई कहीं डिब्बे में डस्टबिन है कि हम कूड़ा कचरा उसमें डालें, और जब देखा कि भाई रेलवे में ये व्यवस्था तो नहीं है, तो उन्होंने खुद ने एक कोने में ही सब लोगों ने अपना कूड़ा कचरा इकट्ठा कर दिया। बोले ये मेरे लिए बहुत ही सुखद अनुभव था, मैं भरत जी का आभारी हूँ कि उन्होंने ये जानकारी मुझे पहुँचाई। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा प्रभाव छोटे छोटे बच्चों में हुआ है। सैकड़ों परिवार ये बात की चर्चा करते हैं कि हमारा बच्चा अभी कहीं चॉकलेट खाता है तो कागज तुरंत उठा लेता है। मैंने अभी एक सोशल मीडिया में किसी का देखा था, किसी ने लिखा था आज का मेरा हीरो, और आज का मेरा हीरो में उन्होंने किसी बच्चे की तस्वीर दी थी और कहा था कि वो बच्चा खुद इन दिनों कहीं पर भी कूड़ा कचरा है तो उठा लेता है, स्कूल जाता है तो उठा लेता है, अपने आप कर रहा है। आप देखिए सबको लगने लगा है कि हमारा देश, हम गंदा नहीं करेंगे, हम गंदगी में इजाफा नहीं करेंगे, और जो भी करते हैं वो शर्मिंदगी महसूस करते हैं, तुरंत कोई न कोई उनको टोकने वाला मिल जाता है। मैं इसे शुभ संकेत मानता हूं।
0: श्रोताओं फिल्म संगीत कार्यक्रम से अब हमें दीजिए इजाजत। अगला कार्यक्रम आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से।

0: पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी। आज सुनते हैं जम्मू कश्मीर से साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले प्रोफेसर शफी शौक के साथ हमारी खास बातचीत। इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आकाशवाणी समाचार के विशेष संवाददाता तारिक राठौर।
1: आज आकाशवाणी न्यूज के जिन मेहमान शख्सियत के साथ हम बातचीत करेंगे वो हैं एक वन ऑफ द एमिनेंट राइटर्स, ऑथर्स और एक एकेडमिक रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर से। इनका बहुत तकरीबन 35 साल का जो है

पैगंबर लेकिन वही नाकामियां कामयाबी बन गई। ये अजीब इत्तेफाक है। चिमल में लेकिन वहाँ नाकामी ये हुई कि अच्छा डिवीजन नहीं रहा, इसलिए मैंने साथ अंग्रेजी में एडिशनल सब्जेक्ट्स पास किए।

0: रहमान राही, प्रोफेसर हामदी कश्मीरी, डॉक्टर शमसुद्दीन अहमद वगैरह वगैरह, ऐसे काजी गुलाम मोहम्मद, ऐसे लोगों से उठना बैठना रहा। मैं तो स्टूडेंट था लेकिन वो मुझे पहले ही जानते थे, क्योंकि वो मैगजीन जो मैं छापता था
1: जी
0: उसकी वजह से वो मुझे जानते थे, और इसी रेडियो स्टेशन से मेरे बहुत सारे प्रोग्राम चलते थे, अदबी मबास में हिस्सा लेता था, इस वजह से भी वो मुझे जानते थे, यानी कि एक तालिबे इल्म की हैसियत से भी मुझे वो हौसला अफजाई मिली कि बड़े लोगों के साथ उठना बैठा रहा। और इंग्लिश डिपार्टमेंट में बहुत अच्छा माहौल था, अदबी हमारे हेड ऑफ डिपार्टमेंट प्रोफेसर एम एस वॉन्ट थे, बहुत बड़े स्कॉलर थे, और उसके साथ साथ प्रोफेसर जे रमन साहब थे, मेरे दोस्त भी थे और मेरे टीचर भी, तो उनके साथ दोस्ती का रिश्ता। प्रोफेसर ए एन धर साहब जो मेरे सुपरवाइजर बन गए एम फिल और पी एच डी में, पहले जयरामन साहब थे, मैंने वहीं से एम फिल भी किया पी एच डी भी किया। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि जैसे कि मैंने कहा कि माई प्रोग्रेशन हैज नॉट बीन क्वाइट लीनियर इन स्ट्रेट डायरेक्शन, मैंने उन्हीं दिनों कश्मीरी डिपार्टमेंट नाम की कोई चीज थी ही नहीं, तो उसको कायम करने के लिए एक जद्दोजहद शुरू की कि यहाँ कश्मीरी डिपार्टमेंट होना चाहिए। उन्हीं दिनों कश्मीरी डिपार्टमेंट बन गया, और जब मैं इंग्लिश में मुझे ही ये काम सौंपा गया कि मैं उसका पहला टीचर बन गया।
1: रिपब्लिक डे 26 जनवरी को कॉन्फर किया गया पद्मश्री, व्हाट वाज योर इनिशियल रिएक्शन? क्या आपके जहन में ये था कि पद्मश्री आपको कॉन्फर किया जाएगा?
0: नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसके लिए और भी बहुत काम करना पड़ता है पद्मश्री के लिए। इससे पहले मुझे बड़े बड़े एजाजात मिले हैं, साहित्य अकेडमी के कई अवार्ड मिले, स्टेट अवार्ड भी मिला है वगैरह वगैरह, मुझे बहुत सारे कंट्रीज का दौरा करना पड़ा, लेकिन ये जो है पद्मश्री, मैंने कभी इसके बारे में सोचा नहीं था कि मुझे मिलेगा।
1: प्रोफेसर शौक साहब, व्हाट इज द हिस्ट्री ऑफ राइटिंग बाय ह्यूमन बीइंग, वेयर फ्रॉम दिस मोड ऑफ एक्सप्रेशन हैज ओरिजिनेटेड? तो आप क्यों लिखते हैं, आपने क्यों लिखना शुरू किया पहले से?
0: इट इज अ मैटर ऑफ इंट्रोस्पेक्शन व्हेन आई थिंक हाउ डिड आई राइट एंड व्हाई डिड आई राइट। इस एज में पहुंचकर जो मुझे लगता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल राइटिंग is an expression of creativity. So creativity in itself is an instinct for every human being. Creativity bachpan se hi paida hoti hai, playfulness. Jo playfulness bachpan ki hai, banana, bigadna, todna, marodna vagera aur phir se naya banana, ye human instinct hai. To instinctually kuch kaam karne se ये है कि सबसे पहले जो इन्वॉल्वड है पर्सन हु क्रिएट्स, ही गेट्स सम काइंड ऑफ प्लेजर इन मेकिंग एंड रिशेपिंग, एंड वही बेसिक पर्पस है। फॉर इंस्टेंस फॉर मी, whether I write in English or Kashmiri or Hindi or any other language, it gives me a sort of gratification that I am involved in this kind of writing. I am the first reader of my writing, answerable to myself. I assess my writing first of all. I become the first critic of my writing. तो ये अलग बात है, फिर मुझे कोई पढ़ने वाला मिले या ना मिले, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका कोई पढ़ने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी वो बहुत ही अच्छा लिख के गए हैं इस दुनिया से। मैं समझता हूँ कि सबसे पहले हर किसी शायर को, नावल निगार को, अफसाना निगार को, ड्रामा नवीस को ये देखना है कि इज इट सेटिस्फाइंग द क्रिएटर्स ओन इंस्टिंक्ट टू क्रिएट और नॉट। इफ इट डज नॉट, देन इट नीड नॉट बी मेड पब्लिक।
1: हिस्ट्री भी इसमें है कि इंसान का पहले से इंस्टिंक्ट रहा है। क्या आपको लगता है कि एज अ राइटर किस पॉइंट ऑफ टाइम पे या इन द लाइफ आपको लोग जो पढ़ते हैं या पढ़ते थे, आपको किस तरह का सेटिस्फेक्शन मिलता था?
0: सबसे पहले हम अपने आप हो जाएं लिखने से, कुछ क्रिएट करने से, तो वो बड़ी कामयाबी है। लेकिन उसके साथ ये भी है, वरना कोई छापता ही नहीं, पब्लिश ही नहीं करता। पब्लिश इसलिए करते हैं कि कोई और भी उस दुनिया में हो जो मेरे एक्सपीरियंस में शरीक हो, शामिल हो, मेरा जो अपना एक्सपीरियंस कोई और समझने वाला,
1: रीडर जो आपका होगा,
0: रीडर जो होगा, या अगर कोई सिंगर हो कोई सुनने वाला हो, अगर कोई पेंटिंग करता है तो कोई देखने वाला। तो इसी तरह स्कल्पचर वगैरह में भी, फाइन आर्ट्स हैं, उनमें यही है, क्रिएटर के अलावा कोई और इसमें शामिल हो। लेकिन ये जरूरी नहीं कि किसी को बहुत सारे रीडर्स मिले, और मिलते भी नहीं। अगर हम किसी बड़े से बड़े राइटर को भी लें, दुनिया के सबसे अजीम, بس میں سمجھتا ہوں میرے لیے سب سے عظیم دنیا کا رائٹر جو ہے وہ ولیم شیکسپیئر ہے. سب اس کا نام جانتے ہیں, کوئی دنیا میں ہے ہی نہیں جو بھی ایجوکیٹڈ ہے جو اس کا نام
1: ولیم شیکسپیئر کو ان کے نام کو نہیں جانتے.
0: اس کے کام کو کون پڑھا ہے؟ بہت سارے لوگ. اس کے اتنے درجنوں ڈراماز ہیں, ان کو کس نے پڑھا ہے؟ کسی ایک نے ایک پلے پڑھا, کسی نے ایک چیپٹر پڑھا, کسی نے ایک کا سین پڑھا, کچھ ڈائلاگس یاد کیے, اتنا ہی مل گیا اس کو. اور شیکسپیئر کو خود کیا ملا؟ کچھ بھی نہیں. وہ یہ کہ اپنی زندگی اس نے بہت ہی فائدہ مند طریقے سے گزاری, کہ وہ کریٹ کرتا رہا اور خوش ہوتا رہا. وہی خوشی جب وہ ایکسٹیسی ملے گی اپنے آپ کو, کریٹر کو, وہ بڑا انعام ہے.
1: پروفیسر صاحب, بینگ این آتھر اینڈ رائٹر, آپ کو کیا لگتا ہے زندگی میں کس طرح کا پرپز آپ کو لگا؟ ایز رائٹر آپ کو فیلنگ ہے آج کی تاریخ میں؟
0: نہ صرف یہ کہ میں اپنے دکھ درد اور اپنے تجربات کا اظہار کروں, بلکہ میں ایک زمانے میں رہتا ہوں, کسی جگہ رہتا ہوں. سب سے پہلے میں اپنے گھر میں رہتا ہوں, پھر اپنے ملک میں رہتا ہوں, اپنے ریاست میں رہتا ہوں, اور اس دنیا میں رہتا ہوں.
1: جی,
0: 21ویں صدی میں رہتا ہوں. میرا اکیلا پن بالکل کوئی معنی نہیں رکھتا. میری ایگزسٹنس جو ہے, میرا وجود جو ہے, از ان ریسپانس ٹو ادر انڈیویجولز آف دس 21st سینچری لیونگ ان سرفیس آف دا گلوب. ان سب کے ساتھ میرا تعلق ہے جن کو میں جانتا نہیں, لیکن ایز رائٹر, سینسٹیو رائٹر, وہ آنسریبل ہے. چاہے وہ امریکہ میں ہو, کہیں بھی ہو, ان سب لوگوں کے ساتھ ایک رشتہ بنانا چاہیے. جو رشتہ ہے اپنے زمانے اور اسپیس اینڈ ٹائم کے ساتھ رشتہ ہے, وہی رشتہ, اس رشتے کی بنا پر ہم اب ایک دوسرے کے دکھ درد سمجھتے ہیں,

0: और शरीक हो जाते हैं, चाहे उसके बारे में डायरेक्टली लिखें या ना लिखें। लेकिन जब भी मैं अपनी बात करूंगा, अपनी एगनीज और अपनी पेन के बारे में लिखा, वो मेरा इंडिविजुअल पेन, मेरी इंडिविजुअल एगनी नहीं, बल्कि पूरे इस 21वीं सदी के इंसान की मुसीबत है, उसका अजाब है, उसका तन्हाईपन है, वो लोनलीनेस है जो हमको मिली 21वीं सदी में। लोनलीनेस और सेंस ऑफ एलिनेशन को जब मैं बहुत ही इंटेंसिफाई करके लिखता हूँ तो वो यूनिवर्सल खुद ही बन जाता है। आज भी अगर हम कोशिश करेंगे कि हम जानें 16वीं सदी में या 17वीं सदी में कश्मीर कैसा था, कहाँ ढूंढेंगे वो, सबके सब इस जहानी पानी से चले गए हैं। तो अगर हम झलक ढूंढना चाहें वो उस जमाने के अदब पारों में ढूंढ के निकालेंगे, कहीं कहीं कोई एक शेर, कोई एक मिसरा या कोई एक नज़म पूरी मिलेगी तो हम खुश हो जाते हैं कि हमने कुछ पाया 17वीं सदी या 18वीं सदी के बारे में, वरना लिरिसिज्म वो कॉमन हो जाता है। इसलिए तर्जमानी बुनियादी शर्त है अदब की।
1: प्रोफेसर साहब, हैव योर फोकस्ड एरियाज आपके इमोशंस से जुड़ी हुई जो चीजें थी वो हाउ दोज पैरामीटर्स हैव इन्फ्लुएंस्ड योर राइटिंग्स?
0: लाजमन है कि कोई राइटर इस दुनिया में किसी भी जबान में किसी भी मुल्क में लिखता हो वो इन आइसोलेशन नहीं लिखता, अलग से होके नहीं लिखता
1: जी।
0: ही राइट्स इन रिस्पॉन्स टू अदर लिटरेचर्स, अदर लिटरेचर्स ऑफ अदर लैंग्वेज ऑल्सो, विद इन हिज ओन लैंग्वेज, विद इन हिज ओन सोशो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर। लेकिन इसके लिए डिलिबरेट कोशिश नहीं करनी चाहिए कि मैं जरूरी आज के मसलन हाई फाई साइंस के बारे में लिखूं, AI के बारे में लिखूं या आज के इंतजार के बारे में। अगर डिलिबरेटली हम कोशिश करेंगे वो अच्छा अदब कभी नहीं बन पाता। हाँ, जरूर ये है कि मैंने जैसा कहा कि कोई भी शायर हो, अदीब हो, वो इन आइसोलेशन नहीं लिख पाता, ही हैज टू रीड अ लॉट, क्योंकि अदब में दो चीजें शामिल हैं, एक तो उसका सब्जेक्ट मैटर और हालत। ठीक है, हमें उसका सब्जेक्ट मैटर मिलता है आसपास के लोगों से या बाय ट्रेडिशन मिलता है हमें, लेकिन हालत का ताल्लुक जहां तक है, मसलन अगर ये टेबल मेरे सामने है, ये वही आदमी बना सकता है जिसको मकसद के बारे में, वो एक कारपेंटर हो तो अगर कोई कारपेंटर बनना चाहे उसको जरूर है उस्ताद के पास जाना पड़ेगा।
1: एग्जैक्टली
0: इसी तरह लिटरेचर में भी, अगर कोई शॉर्ट स्टोरी राइटर हो, हमारे दौर का कोई भी शॉर्ट स्टोरी राइटर हरगिज नहीं लिख पाता तब तक जब तक कम से कम उसने रशियन

तो आइए सुनते हैं आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम रांची मेलोडीज। यह वह मंच है जहां संगीत की मिठास हर दिल को छू जाती है, जहां हर धुन एक कहानी कहती है। संगीत केवल आवाज नहीं, एक एहसास है जो बिना शब्दों के भी बहुत कुछ कह जाती है। रांची मेलोडीज इसी एहसास को समर्पित है। तो आइए श्रोताओं, इसी सकारात्मक सोच के साथ शुरुआत करते हैं आज के पहले गीत का।

श्रोताओं, अभी आप हिम्मतवार फिल्म का ये खूबसूरत सा गीत सुन रहे थे जिसे गाया था बाबुल सुप्रियो ने और साधना सरगम ने, संगीतबद्ध किया था नदीम श्रवण ने और ये रचना थी समीर की। और अब बारी है एक मधुर और भावनात्मक गीत की जो दिल को छू जाए और मन को शांति दे। तो पेश है एमएम करीम का और चित्रा की आवाजों में फिल्म इस रात की सुबह नहीं से ये प्यारा सा गीत, जिसे संगीत से संवारा है एमएम करीम ने और शब्द रचना है निदा फजली की।

श्रोताओं, शाम ढलते ही जब थकान महसूस हो तो संगीत सबसे बड़ा सुकून बन जाता है, और यही सुकून हम आप तक पहुंचाते हैं हर दिन रांची मेलोडीज के जरिए।

आनंद बख्शी का लिखा लता मंगेशकर और कुमार सानू की आवाजों में अभी आपने जब प्यार किसी से होता है फिल्म का ये मधुर गीत सुना, जिसे संगीत दिया था जतिन ललित ने। रांची मेलोडीज केवल गीतों का संग्रह नहीं, यह एक अनुभव है, यह वह अनुभव है जहां संगीत मन की थकान को शांति में बदल देता है। यह कार्यक्रम हर उस श्रोता के लिए है जो रेडियो को आज भी अपना सच्चा साथी मानता है।

जी हाँ दोस्तों, ये खूबसूरत सा गीत जिसे आपने अभी सुना, इसे हमने लिया था फिल्म अंदाज से। स्वर थे अलका याग्निक और उदित नारायण का। नदीम श्रवण ने धुन तैयार की थी और ये रचना थी समीर की। संगीत की यही विशेषता है कि कुछ ही क्षणों में यह मन को हल्का कर देता है, और यही उद्देश्य है इस कार्यक्रम का, संगीत के माध्यम से आपके दिन को बेहतर बनाना। तो इसी के साथ आइए सुनते हैं अरिजीत सिंह और तुलसी कुमार की आवाज़ों में सरबजीत फिल्म का ये मधुर गीत। तर्ज बनाया है अमाल मल्लिक ने और ये रचना है रश्मि विराग की।

आइए अब सुनते हैं ये भावनात्मक गीत जो आपकी यादों को ताज़ा कर देगा। तो ये गाना है फिल्म एयरलिफ्ट फिल्म से अरिजीत सिंह और तुलसी कुमार की आवाज़ों में। धुन है अमाल मलिक के और कुमार ने इस गाने को लिखा है।

प्रिय श्रोताओं, संगीत के इस सुंदर सफर को अब यहीं विराम देने का समय आ चुका है। उम्मीद है आज का रांची मेलोडीज कार्यक्रम आपके मन को सुकून दे पाया होगा। इसी विश्वास के साथ हम आज के इस कार्यक्रम से विदा लेते हैं। फिर मुलाकात होगी आपसे यहीं इसी समय नई धुनों के साथ। नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। आइए सुनते हैं मुख्य समाचार।
1: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं नूतन लकड़ा। केंद्र सरकार ने मूल्य स्थिरीकरण बफर के लिए प्याज की खरीद मूल्य में 13% की बढ़ोतरी की है। इसकी खरीद मूल्य 1875 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़कर अब 2125 रुपए प्रति क्विंटल हो गया है। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने बताया कि संशोधित खरीद मूल्य आज से प्रभावी हो गया है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत अपने आवास पर स्वयं इन्यूमरेशन फॉर्म भरकर संबंधित बीएलओ को सौंपा। उन्होंने मतदाताओं से अपील की कि बीएलओ के घर पहुंचने पर वे तुरंत फॉर्म भरकर हस्ताक्षर सहित जमा करें ताकि पुनः निरीक्षण कार्य के समय पूरा हो सके। झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से न्याय सदन में आज वित्तीय प्रबंधन पर राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मौजूदा झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश सह झालसा के कार्यकारी अध्यक्ष सुजीत नारायण प्रसाद ने वित्तीय प्रबंधन पर अपनी बातें रखी। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने सी बॉक्स पोर्टल को कामकाजी महिलाओं के अधिकारों और सुरक्षा के लिए एक सशक्त माध्यम बताया है। सोशल मीडिया पर उन्होंने कहा कि इसके जरिए कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की शिकायतें पूरी तरह गोपनीय और सुरक्षित तरीके से ऑनलाइन दर्ज की जा सकती हैं। राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में लंबित अदालती मामलों के त्वरित निपटारे के लिए मुख्य सचिव अविनाश कुमार की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। मुख्य सचिव ने सभी विभागीय सचिवों को अदालती मामलों में तय समय पर शपथ पत्र दाखिल करने के सख्त निर्देश दिए हैं। खूंटी स्थित जिला मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय में आज शिक्षक अभिभावक बैठक का आयोजन किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों को नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करना, शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाना तथा अभिभावकों को बच्चों की पढ़ाई के प्रति अधिक जागरूक बनाना था। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 5 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम कल्याणी। चर्चा में आज आप सुनेंगे मित्र वही जो समय पर काम आए। वार्ता में आज बातें होंगी परिवार में बढ़ती संवादहीनता पर। वार्ताकार हैं अरुणा प्रकाश और भेंट करता है संजीव कुमार लाल। श्रोताओं, इस कार्यक्रम की प्रस्तुति है संजीव कुमार लाल की।

कल्याणी कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त युवराज और आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। उम्मीद करते हैं कि इस भाग दौड़ भरे जिंदगी में आप सब स्वस्थ हैं, व्यस्त हैं और मस्त हैं। दोस्तों, ये कार्यक्रम हमारी जिंदगी से, हमारे परिवार से, पास पड़ोस से और समाज से जुड़ा कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम में हम बहुत सारी बातों की जानकारी और चर्चा आपके साथ करते हैं। दोस्तों, हमारी कोशिश होती है कि सामाजिक, पारिवारिक, आर्थिक, शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य मुद्दे पर आपसे चर्चा करते हैं और विभिन्न पहलुओं से आपको रूबरू कराते हैं। दोस्तों, जरूरत के समय काम आने वाला दोस्त ही सच्चा दोस्त होता है। इस कहावत का अर्थ है कि सच्चा दोस्त वही होता है जो मुश्किल समय में हमारा साथ देता हो। बहुत से लोग खुद को दोस्त कहते हैं, लेकिन सच्चा दोस्त मुश्किल वक्त में हमारा सहारा बनता है। यही गुण सच्चे दोस्तों को सिर्फ जान पहचान वाले से अलग करता है। तो साथियों, आइए एक खास विषय पर हम आपसे विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं कि मित्र वही जो समय पर काम आए। मित्रों, मानव जीवन में मित्रता का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। मनुष्य सामाजिक प्राणी है और उसे जीवन के हर पड़ाव पर ऐसे साथी की आवश्यकता होती है जो सुख दुख में उनके

0: समय में मित्र की सही पहचान होना जरूरी है। कहा जाता है कि सोने की पहचान आग में ही होती है और मित्र की पहचान कठिन समय में होती है। जब जीवन में आर्थिक संकट, बीमारी, असफलता या किसी अन्य परेशानी का सामना करना पड़ता है, तब बहुत से लोग हमें साथ छोड़ देते हैं। ऐसे समय में जो व्यक्ति बिना किसी स्वार्थ के हमारी सहायता करता है, वही हमारा सच्चा मित्र कहलाता है। महाभारत में भगवान श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता इसका सर्वोच्च उदाहरण है। सुदामा अत्यंत गरीब थे, लेकिन श्री कृष्ण ने उन्हें कभी नहीं बुलाया। जब सुदामा कठिन परिस्थिति में द्वारका पहुंचे, तब श्री कृष्ण ने उनका अत्यंत सम्मान किया और उसकी सहायता की। यह घटना बताती है कि सच्ची मित्रता धन दौलत नहीं, बल्कि प्रेम, विश्वास और अपनत्व पर आधारित होता है। मित्रता में विश्वास और ईमानदारी रखना बहुत जरूरी है। मित्रता की नींव विश्वास पर ही टिकी होती है। यदि मित्र एक दूसरे के प्रति ईमानदार हो, एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करें और हर परिस्थिति में साथ निभाए, तो यह संबंध जीवन भर मजबूत बना रहता है। सच्चा मित्र कभी धोखा नहीं देता और न ही अपने मित्र की पीठ के पीछे बुराई करता है। आज के समय में मित्रता कितना जरूरी है। आज के डिजिटल युग में सोशल मीडिया के माध्यम से हजारों लोग मित्र बन जाते हैं, लेकिन हर व्यक्ति सच्चा मित्र नहीं हो सकता। मित्रों की संख्या से अधिक महत्वपूर्ण उनके साथ संबंध में गुणवत्ता होती है। मित्र चुनते समय उसके संस्कार, व्यवहार और चरित्र पर ध्यान देना अति आवश्यक है। सच्चे मित्र के गुण क्या क्या है, आइए हम आपको बतलाते हैं। सच्चे मित्र में अनेक अच्छे गुण होते हैं। वह हर परिस्थिति में साथ देता है, हमारी सफलता पर ईर्ष्या नहीं करता बल्कि खुशी बनाता है, हमारी गलतियों को प्रेम पूर्वक सुधारने का प्रयास करता है, संकट के समय सहायता के लिए सबसे आगे आता है, विश्वास और गोपनीयता बनाए रखता है, हमें सही दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देता है। मित्रता जीवन को आनंदमय बनाती है। एक सच्चा मित्र हमारे मानसिक तनाव को कम करता है, हमें प्रेरणा देता है और कठिन समय में आत्मविश्वास बनाए रखने में सहायता करता है। परिवार के बाद यदि कोई व्यक्ति सबसे अधिक हमारा साथ देता है, तो वह हमारा सच्चा मित्र ही होता है। अंततः यही कहा जा सकता है कि मित्र वही जो समय पर काम आए, केवल एक कहावत नहीं बल्कि जीवन का महत्वपूर्ण सत्य है। सच्चा मित्र वही है जो बिना किसी स्वार्थ के हर परिस्थिति में हमारे साथ खड़ा रहे। हमें भी ऐसा मित्र बनाने का प्रयास करना चाहिए जो दूसरे के सुख दुख में सहभागी बने। सच्चा मित्र विश्वास, त्याग, सहयोग और प्रेम की नींव पर टिकी होती है। यदि जीवन में एक भी सच्चा मित्र मिल जाए, तो वह किसी अनमोल धन से कम नहीं होता है। दोस्तों, परिवार समाज की सबसे महत्वपूर्ण इकाई है। परिवार में प्रेम, विश्वास और सहयोग से ही सुख शांति बनी रहती है। इसलिए आज के समय में बढ़ती व्यस्तता, आपसी संवाद की कमी, स्वार्थ, नशे की लत, आर्थिक तनाव और आपसी मतभेद के कारण पारिवारिक विघटन की समस्या बढ़ती जा रही है। तो मित्रों, आइए इस खास विषय परिवार में बढ़ती संवादहीनता कारण और निवारण विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे स्टूडियो में आमंत्रित है हमारे खास मेहमान अरुणा प्रकाश जी।
1: परिवार केवल एक मकान में साथ रहने वाले लोगों का समूह नहीं है, बल्कि भावनाओं, विश्वास, प्रेम और अपनत्व का एक सुंदर बंधन है। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि परिवार के सदस्य एक ही घर में रहते हुए एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं। पहले लोग साथ बैठकर भोजन करते थे, दिन भर की बातें साझा करते थे, सुख दुख बांटते थे। आज स्थिति यह है कि परिवार के सभी सदस्य अपने अपने मोबाइल, टीवी या अन्य व्यस्तताओं में खोए रहते हैं और तभी पनपती है संवादहीनता। और संवादहीनता का अर्थ सरल शब्दों में यही है कि जब लोग एक दूसरों से बात करना बंद कर देते हैं, एक घर में रहते हुए भी एक दूसरे से दूर होते जाते हैं, तो इसमें परिवार की जो धुरी है वो हिल जाती है। कई बार माता पिता बच्चों को नहीं समझ पाते और कई बार बच्चे माता पिता की भावनाओं को कदर नहीं कर पाते। पति पत्नी के बीच भी संवाद की कमी तनाव और विवाद का कारण बन जाते हैं। और इस संवादहीनता के कई कारण हैं: भाग दौड़ भरी जीवन शैली, तकनीक पर बढ़ती निर्भरता, समय का अभाव, अहंकार और एक दूसरे को सुनने में कमी। जब संवाद कम होता है तो प्रेम और विश्वास भी कमजोर होने लगते हैं। इस समस्या का समाधान भी हमारे ही हाथ में है। हम प्रतिदिन कुछ समय परिवार के लिए निकाल सकते हैं, साथ

0: बैठकर भोजन करना। पहले हमारे परिवार में यह एक परंपरा थी कि परिवार के लोग साथ बैठकर भोजन करते थे। समय के साथ इस मूल्य में भी, जैसे सारे मानवीय और पारिवारिक मूल्यों का ह्रास हुआ है, इसका भी ह्रास हुआ है और हम टीवी के साथ बैठकर खाना पसंद करते हैं। एक ही घर में रहते हैं पर दिन भर में शायद 5 मिनट भी दिल की बातचीत एक दूसरे से नहीं करते हैं। रात को अपने अपने कमरों में चले जाते हैं और धीरे धीरे किसी की परेशानी का पता हमें बहुत बाद में चलता है। अब एक छोटी सी कहानी सुनिए या एक घटना कहिए कि कल्पना कीजिए एक परिवार की जहां पिता नौकरी में व्यस्त रहते हैं, माँ पूरे दिन घर के काम और जिम्मेदारियों में लगी रहती है, बेटा मोबाइल और सोशल मीडिया में खोया रहता है और बेटी अपनी पढ़ाई और दोस्तों में व्यस्त रहती है। यह हर घर की कहानी हो सकती है। सब घर एक ही जैसे हैं। एक दिन बच्चों के स्कूल से शिकायत आती है कि उनका व्यवहार बदल गया है, बच्चे हिंसक हो रहे हैं, पढ़ाई में कंसंट्रेशन कम गई है, और तब परिवार को एहसास होता है कि यह जो समस्या है यह अचानक नहीं आई, बल्कि संवाद की कमी ने उस समस्या को जन्म दिया था। यह हमारे घर में से किसी के घर की कहानी हो सकती है। तो हम देखें कि संवादहीनता जो परिवार में पनप रही है, इसके मुख्य कारण क्या हैं? इसमें सबसे प्रमुख कारण है मोबाइल और डिजिटल दुनिया का बढ़ता प्रभाव। आज तकनीक ने जीवन आसान तो बनाया है, लेकिन परिवारों के बीच दूरी भी बढ़ा दी है। पहले लोग साथ बैठकर बातें करते थे, पर अब साथ बैठकर भी अपने-अपने मोबाइल को देखते हैं। दूसरा कारण, व्यस्त जीवन शैली। आज हर व्यक्ति अपने काम, नौकरी, पढ़ाई और जिम्मेदारियों में इतना व्यस्त है कि परिवार के लिए समय निकालना कठिन हो गया है। समय के अभाव में भावनात्मक दूरियां बढ़ती चली जा रही हैं। तीसरा कारण, सुनने का आदत का अभाव। अक्सर हम बातें करते हैं और बातें करने में रुचि तो रखते हैं, लेकिन सामने बैठने वाले व्यक्ति को धैर्यपूर्वक सुनना भूल जाते हैं। अब किसी को लगता है कि उसकी बातों को कोई सुन ही नहीं रहा है और उसके बोलने की कोई कीमत ही नहीं है, तो धीरे धीरे परिवार का वह व्यक्ति बात करना कम कर देता है और दूरियां यहीं से शुरू हो जाती हैं। कुछ कभी कभी अहंकार और कुछ गलत फहमियां भी इसका कारण बनते हैं। छोटी छोटी बातों पर मनमुटाव होना। कई लोग सोचते हैं कि पहले वही बात कर ले, उसके ही अहंकार को पहले तोड़ लूं, पर इससे क्या होता है कि रिश्ते धीरे धीरे अपने जड़ों को खो देते हैं और रिश्तों के बीच एक दीवार खड़ी हो जाती है। पीढ़ियों में अंतर भी एक बड़ा कारण है। बुजुर्गों की सोच अलग है, युवाओं की सोच अलग है। यदि दोनों एक दूसरे को समझने का प्रयास करें तो अच्छी बात है, पर यह होता नहीं है और संवाद टूटने लगता है। देखिए, संवादहीनता के दुष्परिणाम भी हैं। जब परिवार में बातचीत कम होती है तो विश्वास कमजोर होता है, गलत फहमियाँ बढ़ती हैं, तनाव और अकेलापन बढ़ जाता है। आज हम देख रहे हैं कि हमारे यहाँ डॉक्टर्स में मनोचिकित्सक और मनोवैज्ञानिक सबसे ज़्यादा काम कर रहे हैं। बच्चों के मानसिक विकास भी प्रभावित होता है और परिवार में प्रेम और अपनापन कम होना शुरू हो जाता है, तो रिश्ते दरकने लगते हैं। धीरे धीरे लोग एक घर में रहते हुए भी भावनात्मक रूप से अलग हो जाते हैं। अब इस संवादहीनता का समाधान भी हमारे ही पास है। कुछ छोटे छोटे उपाय करके हम इस संवादहीनता में जो आपस में दीवार खड़ी हो रही है उसमें कमी ला सकते हैं, जिसका एक सरल उपाय है कि प्रतिदिन परिवार के साथ समय बिताया जाए। कम से कम 20 से 30 मिनट बिना मोबाइल के बैठिए। दिन भर की अपनी कार्यशैली और जो भी कार्य आपने दिन भर किए परिवार के साथ उसको साझा कीजिए और एक दूसरे से पूछिए कि आज आपका दिन कैसा रहा। दूसरा उपाय, सुनना सीखिए। सिर्फ बोलना ही संवाद नहीं है, अच्छे श्रोता बनना उतना ही आवश्यक है जितना कि अच्छा वक्ता। अब जब हम किसी की बात को ध्यान से सुनते हैं तो उसे लगता है कि उसे सम्मान मिला और अपनापन भी, तो वह अपनी बातों को खुलकर बोल पाता है। तीसरा उपाय, छोटी छोटी बातों पर धन्यवाद और प्रशंसा व्यक्त करना। एक धन्यवाद, जैसे आप अपने बच्चों को कहें कि मुझे तुम पर गर्व है, तुमने आज एक अच्छा काम किया, या तुमने बहुत अच्छा किया, मैं बहुत खुश हूं। ये छोटे छोटे सेंटेंस जो हैं वो रिश्तों में नई ऊर्जा का संचार करते हैं। चौथा उपाय है, विवाद होने के बाद संवाद। विवाद होना बहुत आसान है, पर विवाद के बाद संवाद की जो स्थिति है यह हमें बनानी पड़ती है। समस्या को बहुत दिनों तक मन में नहीं रखना होता है, शांत मन से बैठकर बात करनी होती है। विवाद होना स्वाभाविक है, पर विवाद के बाद अगर आप संवाद ना करें तो यह अस्वाभाविक है और यही फिर संवादहीनता का प्रमुख कारण बन जाती है और रिश्तों में एक बहुत बड़ा समस्या खड़ी करती है। पांचवा उपाय, परिवार की छोटी छोटी परंपराओं को बनाइए। जैसे बाइबल का एक लाइन है कि अ फैमिली दैट ईट्स टुगेदर एंड प्रेज टुगेदर स्टेज टुगेदर। तो एक सप्ताह में एक दिन भी साथ भोजन करना, साथ साथ घूमना, पूजा करना या साथ बैठकर बातचीत करना, ये छोटी छोटी आदतें रिश्तों में सुधार लाएंगी और रिश्तों को मजबूत बनाएंगी। हम सभी चाहते हैं कि हमारा परिवार सुखी रहे, लेकिन सुखी परिवार अपने आप नहीं बनते, उन्हें समय, धैर्य, प्रेम और संवाद से बनाया जाता है। रिश्ते कभी अपने आप नहीं टूटते हैं, हमारी चुप्पी, हमारा अहंकार और हमारी उपेक्षा धीरे धीरे हमारे रिश्तों को कमजोर करते हैं। इसी तरह रिश्ते कभी उपहारों से नहीं बनते हैं, बल्कि छोटी छोटी बातों से बनते हैं और यह अपनापन भी इन सभी छोटी छोटी बातों से आ सकता है। अंत में केवल इतना ही कहना चाहूंगी कि यदि हम अपने परिवार को मजबूत करना चाहते हैं तो हमें संवाद को जीवित रखना होगा। यह संकल्प लेना होगा कि हम अपने परिवार के साथ प्रतिदिन समय निकालेंगे, एक दूसरे को ध्यान से सुनेंगे, नाराजगी तो होगी पर नाराजगी को चुप्पी में नहीं बदलने देंगे और अपने परिवार को प्रेम, संवाद और सम्मान देकर एक आदर्श परिवार बनाने की कोशिश करेंगे। जहां संवाद होता है वहां विश्वास जन्म लेता है, और जहां विश्वास होता है वहां प्रेम बढ़ता है, और जहां प्रेम होता है वहां सच्चा परिवार बसता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस वार्ता को समाप्त करूंगी।
1: दोस्तों, यदि परिवार के सदस्य प्रेम, विश्वास और आपसी सम्मान बनाए रखें तो किसी भी समस्या का समाधान आसानी से निकाला जा सकता है। छोटी छोटी बातों को लेकर विवाद को बढ़ाने के बजाय समझदारी और सहनशीलता से परिचय देना चाहिए। तो मित्रों, अभी हमने सुना अरुणा प्रकाश जी को। तो दोस्तों, बातें और चर्चाएं का सिलसिला और भी आगे चलते रहेंगी, लेकिन उससे पहले आइए सुनते हैं एक बेहतरीन गीत।

जी हाँ दोस्तों, अभी आपने सुना एक सदाबहार गीत जो अपने समय सभी संगीत प्रेमियों के जुबान पर रहती थी, और 60 से 70 के दशक में यह गीत फिल्म ज्वेल थीफ से काफी लोकप्रिय हुआ था। इस गीत को गाई थी लता मंगेशकर ने और संगीत दिया था एसडी बर्मन ने। तो दोस्तों, एक बेहतरीन गीत के बाद कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए चलते चलते आपसे चर्चा करते हैं एक और खास विषय पर। सीमित संसाधनों से भी घर चलता है। मित्रों, परिवार समाज की सबसे महत्वपूर्ण इकाई है। प्रत्येक परिवार चाहता है कि उसके सभी सदस्यों का जीवन सुखी, सुरक्षित और सम्मानजनक हो, लेकिन हर परिवार आर्थिक रूप से सम्मान नहीं होता। कुछ परिवारों के पास पर्याप्त संसाधन होते हैं, जबकि अनेक परिवार सीमित आय और साधनों के साथ साथ जीवन यापन करते हैं। फिर भी यह सत्य है कि घर केवल धन संपत्ति से नहीं, बल्कि समझदारी, प्रेम, सहयोग और संतोष से चलता है। यदि परिवार के सदस्य मिलजुल कर जिम्मेदारियों का निर्वहन करें, तो उपलब्ध संसाधनों का सही उपयोग करें, तो सीमित संसाधनों से भी घर अच्छी तरह से चलाया जा सकता है। दोस्तों, आइए हम जानते हैं कि सीमित संसाधनों का सही महत्व क्या है। तो दोस्तों, सीमित संसाधनों का अर्थ अभाव नहीं, बल्कि उपलब्ध साधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करना है। जब आय सीमित होती है, तब परिवार का प्रत्येक सदस्य खर्च करने से पहले आवश्यकता और इच्छा के बीच का अंतर समझता है। इससे अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रहता है, जरूरतों की पूर्ति आसानी से हो जाती है। मित्रों, घर को व्यवस्थित ढंग से चलाने के लिए मासिक बजट बनाना बहुत आवश्यक है। आय के अनुसार भोजन, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी और आवश्यक खर्चों की योजना बनाई जाए तो आर्थिक कठिनाइयां काफी हद तक कम हो जाती है। बिना योजना के किया गया खर्च अक्सर परिवार को कर्ज और तनाव की ओर ले जाता है। सीमित आय वाले परिवारों के लिए बचत सबसे बड़ी ताकत होती है। थोड़ी थोड़ी बचत भविष्य में किसी आकस्मिक आवश्यकता जैसे बीमारी, बच्चों की पढ़ाई या अन्य आपातकालीन परिस्थिति में बहुत काम आती है। इसलिए आय चाहे कम हो, नियमित बचत की आदत अवश्य डालनी चाहिए। मित्रों, आज के समय में हमें दिखावे से बचना चाहिए। आज के समय में कई लोग दूसरे की देखा देखी अनावश्यक खर्च कर बैठते हैं। महंगे मोबाइल, कपड़े, वाहन या समारोह पर अत्यधिक खर्च करने से परिवार की आर्थिक स्थिति प्रभावित हो सकती है। सादगी और आवश्यकता के अनुसार जीवन जीना ही समझदारी है। सम्मान खर्चे से नहीं, बल्कि अच्छे व्यवहार और संस्कारों से मिलता है। साथियों, आज के समय में बच्चों को अच्छे संस्कार देना चाहिए। बच्चों को यह सिखाना आवश्यक है कि जीवन में सफलता केवल धन से नहीं, बल्कि मेहनत, ईमानदारी, अनुशासन और संतोष में मिलती है। यदि वो छोटी उम्र में ही संसाधनों का सम्मान करना सीख जाए, तो भविष्य में जिम्मेदार नागरिक और सफल परिवार निर्माता बन सकते हैं। अंततः यह स्पष्ट है कि सीमित संसाधनों से भी घर अच्छी तरह से चल सकता है। यदि परिवार में प्रेम, विश्वास, अनुशासन, सहयोग और समझदारी हो, तो धन जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करने का एक साधन ही है। लेकिन परिवार की वास्तविक खुशहाली आपसी सम्मान, सादगी, संतोष और जिम्मेदारी में निहित है। हमें उपलब्ध संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करते हुए बचत, मेहनत और सकारात्मक सोच को अपनाना चाहिए। यही आदतें परिवार को आर्थिक रूप से मजबूत, वो आत्मनिर्भर और सुखी बनाती है। तो दोस्तों, इसी के साथ आज का हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं कि आज की प्रस्तुतियां, बातें और गीत संगीत का यह कार्यक्रम आपको खूब पसंद आया होगा। तो मित्रों, अब दीजिए अनुमति अपने दोस्त युवराज को, और फिर से होगी मुलाकात अगले सप्ताह नए विषयों, नई जानकारियों और नए गीतों के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, खुश रहे और मुस्कुराते रहे।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कल्याणी, ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। पीएम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज एवं एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज पर। आइए आपको बता दें आज के शेष कार्यक्रमों का विवरण।

आज के शेष कार्यक्रमों का विवरण कुछ इस प्रकार है। अब से थोड़ी ही देर में यानी 4:35 से आप सुन सकेंगे फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सांझ सरगम। शाम 5 होंगे प्रादेशिक मुख्य समाचार। 5:02 पर आप सुन सकेंगे कार्यक्रम युववाणी। इस कार्यक्रम के अंतर्गत चर्चा का विषय होगा इंटरनेशनल डे ऑफ कॉपरेटिव्स, सहकारिता और युवा। साथ ही आप सुन सकेंगे कुछ फिल्मी गीत। 5:30 पर होगा कार्यक्रम श्रमिक लोक। चर्चा का विषय होगा अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस, कॉपरेटिव से लाभान्वित होते श्रमिक, सौर ऊर्जा, पीएम सूर्य घर योजना, औद्योगिकरण और वन का संतुलन, सतत विकास। शाम 6 आप फिर सुनेंगे प्रादेशिक मुख्य समाचार।

शाम 6:02 पर होगा। कार्यक्रम किसान वाणी। इस कार्यक्रम के अंतर्गत चर्चा का विषय होगा मुर्गी पालन एक लाभकारी व्यवसाय। आज की बात होगी पशुओं में होने वाली प्रमुख विशेषताएं। विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर दीक्षा मलेठा, भेंटकर्ता कृष्ण जीवन पौराणिक। 6:32 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम हमारी दुनिया। चर्चा का विषय होगा प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। साथ ही आप सबसे सुन सकेंगे कुर्माली वार्ता, स्वच्छ भारत अभियान एक चुनौती, वार्ताकार रतन कुमार महतो। शाम 7:00 आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।

7:15 पर आप सुनेंगे हो लोकगीत, कलाकार होंगे बुधन सिंह कुंकल एवं साथी। 7:20 पर होंगे क्षेत्रीय समाचार नागपुरी उराव मुंडारी हो एवं संताली भाषा में।

7:45 पर आप सुनेंगे समाचार ध्वनि चित्र। रात्रि 8 बजे आप सुन सकेंगे फिल्मी गीतों का कार्यक्रम रजनीगंधा। 8:30 पर सुर्खियों में रात्रि 8:45 पर आप सुनेंगे समाचार संध्या आकाशवाणी दिल्ली से। रात्रि 11:10 पर हमारी मीडियम वेव की ये सभा समाप्त हो जाएगी। ये था आज के शेष कार्यक्रमों का विवरण। अगला कार्यक्रम बस थोड़ी ही देर में, कृपया थोड़ी प्रतीक्षा करें।

ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सांझ सरगम। आइए सुनते हैं कार्यक्रम में पहला गीत फिल्म आजा नचले से, स्वर राहत फतेह अली खां का।

आज नचले फिल्म से आप सुन रहे थे ये गीत राहत फतेह अली खां के स्वर में, शब्द रचना जयदीप साहनी की एवं संगीत सलीम सुलेमान का। आइए सुनते हैं कार्यक्रम में अगला गीत फिल्म आशिकी 2 से।

तुम ही हो। ये गीत आप सुन रहे थे अरिजीत सिंह के स्वर में। शब्द रचना एवं संगीत मिथुन का एवं फिल्म का नाम था आशिकी 2। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म अजब प्रेम की गजब कहानी से।

इरशाद कामिल का लिखा हुआ गीत आप सुन रहे थे। कैलाश खेर के स्वर में संगीत प्रीतम का एवं फिल्म का नाम था अजब प्रेम की गजब कहानी। आइए सुनते हैं कार्यक्रम सांस सरगम में अगला गीत फिल्म बर्फी से।

सैयद कादरी द्वारा लिखा हुआ गीत आप सुन रहे थे फिल्म बर्फी से। संगीत प्रीतम का एवं स्वर था रेखा भारद्वाज का। इसी गीत के साथ श्रोताओं कार्यक्रम सांस सरगम अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज़ एवं FM 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 5 बजने को है, बस थोड़ी ही देर में आप सुन सकेंगे प्रादेशिक मुख्य समाचार। कृपया थोड़ी प्रतीक्षा।

नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं नूतन लकड़ा। केंद्र सरकार ने मूल्य स्थिरीकरण बफर के लिए प्याज की खरीद मूल्य में 13% की बढ़ोतरी की है। इसका खरीद मूल्य 1875 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़कर अब 2125 रुपये प्रति क्विंटल हो गया है। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने बताया कि संशोधित खरीद मूल्य आज से प्रभावी हो गया है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत अपने आवास पर स्वयं इन्यूमरेशन फॉर्म भरकर संबंधित बीएलओ को सौंपा। उन्होंने मतदाताओं से अपील की कि बीएलओ के घर पहुंचने पर वे तुरंत फॉर्म भरकर हस्ताक्षर सहित जमा करें ताकि पुनरीक्षण कार्य समय पर पूरा हो सके। झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से न्याय सदन में आज वित्तीय प्रबंधन पर राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मौजूदा झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश सह झालसा के कार्यकारी अध्यक्ष सुजीत नारायण प्रसाद ने वित्तीय प्रबंधन पर अपनी बातें रखी। लोहरदगा के उपायुक्त संदीप कुमार मीणा की अध्यक्षता में आज समाहरणालय में जिला आधार निगरानी

0: निगरानी समिति की बैठक आयोजित की गई। इसमें जिले में संचालित आधार सेवा केंद्रों की अद्यतन स्थिति की विस्तृत समीक्षा करते हुए आधार सेवाओं को अधिक सुलभ और प्रभावी बनाने के निर्देश दिए गए। गोड्डा जिले के नगर थाना क्षेत्र के धुरमाडी गांव के पास तेज रफ्तार वाहन और बाइक की टक्कर में एक 25 वर्षीय युवक की मौत हो गई। हादसे के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने लगभग एक घंटे तक सड़क जाम कर दी। पुलिस ने लोगों को समझा बुझाकर मामला शांत कराया। खूंटी स्थित जिला मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय में आज शिक्षक अभिभावक बैठक का आयोजन किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों को नियमित उपस्थिति सुनिश्चित कराना, शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाना तथा अभिभावकों को बच्चों की पढ़ाई के प्रति अधिक जागरूक बनाना था। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 6 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है, FM के 101.7 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 5:02 हो रहे हैं। संध्याकालीन सभा में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। श्रोताओं, आइए आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रम विवरण के बारे में जानते हैं।

अब से कुछ देर बाद यानी कि 5:05 पर सुनिएगा कार्यक्रम गुलदस्ता। आज के इस गुलदस्ता कार्यक्रम में आप सुनेंगे भूले बिसरे गीत। 5:30 पर हम आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम किसान वाणी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। इसमें आज चर्चा होगी धान की धनाई में ध्यान देने योग्य बातें। संथाली लोगी सुनिएगा शंकर चंद्र मुर्मू और साथियों के स्वर में। आज के मेहमान के अंतर्गत भेंटवार्ता होगी गर्मा लत्तेदार सब्जियों की खेती। भेंटवार्ताकार होंगे नांगी सिंह कुंटिया और इनसे बातें करेंगे ठाकुर चंद्र मुर्मू। एक और संथाली लोकगीत होगा मदन सोरेन और साथियों के स्वर में। छह बजे आप सुनेंगे मुख्य समाचार आकाशवाणी के रांची केंद्र से। 6:02 पर सुनिए बंगला कार्यक्रम सात रंग। 6:30 पर हम आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम आपका स्वास्थ्य। इसमें आज चर्चा होगी कैंसर, मधुमेह, हृदय रोग और स्ट्रोक की रोकथाम और नियंत्रण। भेंटवार्ताकार होंगे भेंटवार्ता सुनिए मस्तिष्क ज्वर कारण व निदान। भेंटवार्ताकार होंगे एहसान फारूक और इनसे बातें करेंगे रमेश दास। 6:55 पर हम आपको ले चलेंगे आकाशवाणी के रांची केंद्र, जहां से आप सुन सकेंगे प्रादेशिक समाचार और जिले में आजकल। 7:15 पर सुनिए फिल्म संगीत का कार्यक्रम कार्यक्रम आपकी पसंद। 8:00 सुनिए फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम रजनीगंधा। 8:45 पर हम आपको ले चलेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र, जहां से आप सुन सकेंगे समाचार संध्या क्रमशः हिंदी और अंग्रेजी में। 9:15 पर सुनिएगा कार्यक्रम आकाशवाणी रांची के कार्यक्रम, जिसे रिले किया जाएगा आकाशवाणी के रांची केंद्र से। 10:00 होगा गजलों का कार्यक्रम महफिल। 10:30 पर सुनिए फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुरों के रंग। 11:00 हिंदी में समाचार होगा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से क्रमशः हिंदी और अंग्रेजी में। और 11:10 पर हमारी आज की सभा संपन्न होगी। तो ये थी आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रम विवरण। हम आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से बोल रहे हैं FM के 101.7 MHz पर। श्रोताओं आइए सुनते हैं कार्यक्रम गुलदस्ता। गुलदस्ता कार्यक्रम सुनने वाले तमाम श्रोताओं का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम के साथ मैं हूँ अवनीश कुमार सिन्हा। पहला गीत हमने लिया है फिल्म इंतकाम से। गायक कलाकार हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी।

अभी आपने सुना फिल्म जौहर महमूद इन गोवा। गायक कलाकार थे सुमन कल्याणपुर और मुकेश। और आइए सुनते हैं फिल्म मुगले आजम का ये नगमा। आवाज़ें लता मंगेशकर की है।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: और आइए सुनते हैं मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ में फिल्म प्यार का सागर, इस फिल्म का गाना।

इस गीत के साथ ही श्रोता, हमारा आज का गुलदस्ता कार्यक्रम अभी ही समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से बोल रहे हैं, FM के 101.7 MHz पर, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम किसान वाणी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

0: ᱪᱟᱹᱥᱤ ᱵᱚᱭᱦᱟ ᱢᱤᱥᱤ ᱠᱚ ᱩᱨᱩᱥ ᱠᱮᱫ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱦᱮᱸᱫ ᱱᱚᱣᱟ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱞᱳᱠ ᱜᱤᱛᱤᱡ ᱛᱮ ᱥᱚᱝᱠᱚᱨ ᱪᱚᱱᱫᱨᱚ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱟᱨ ᱥᱟᱶᱛᱮᱱ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ ᱛᱮ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱫᱚ ᱠᱟᱪᱷᱟ ᱠᱚᱨᱢᱚ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱠᱚ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ ᱞᱮᱫᱟ
1: परिवर्तन क्या है? यह यूनेस्को का संदेश है। जलवायु हमेशा प्राकृतिक रूप से बदलती रही हैं, जिसमें अत्यधिक ठंड और गर्म अवधियां शामिल हैं। वैज्ञानिक बर्फ के परतों, पेड़ों के तनों पर बने छल्लों और अनेक प्रकार के कोरल को देखकर इन परिवर्तनों का अध्ययन करते हैं। लेकिन आज मानवीय गतिविधियां जैसे तेल, गैस और कोयला जलाना और जंगलों को काटना जलवायु परिवर्तन को तेजी से बढ़ा रही है। इससे मौसम में और भी ज्यादा उतार चढ़ाव, पौधों और जानवरों की हानि तथा पानी, भोजन और ऊर्जा की समस्याएं पैदा होती हैं। जलवायु परिवर्तन का मतलब है तापमान और मौसम के तरीकों में लंबे समय तक होने वाला बदलाव। यह एक रोचक तथ्य है। औद्योगिक युग से अब तक पृथ्वी का औसत तापमान 1 डिग्री सेल्सियस से अधिक बढ़ चुका है।
2: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 8 सालों में कृषि एवं इससे जुड़े क्षेत्रों को आधुनिक बनाने और किसानों को सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। साल 2013-14 में जहां कृषि बजट केवल 21,933 करोड़ रुपए था, वहीं साल 2022-23 में इसे बढ़ाकर 1,24,000 करोड़ कर दिया गया। तभी तो साल 2013-14 में जहां खाद्यान्न उत्पादन 265.05 मिलियन टन था, वहीं साल 2021-22 के तीसरे अग्रिम अनुमान में ये बढ़कर रिकॉर्ड 314.51 मिलियन टन हो गया। वहीं साल 2013-14 में बागवानी फसलों का उत्पादन जहां 280 मिलियन टन था, वहीं साल 2021-22 में ये बढ़कर 333.25 मिलियन टन हो गया। किसानों की कृषि संबंधी जरूरतों के लिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना लागू की गई।
3: प्रधानमंत्री जो सम्मान निधि आती है ना, वो डायरेक्ट खाते में आती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई व्यवधान नहीं। और फिर उसको निकाल के हम बाजरा को बीज ले आते हैं, गेहूं को बीज ले आते हैं, सरसों को बीज ले आते हैं। बातें हमारे जो खेल चल तो बढ़िया।
2: अब तक 11.37 करोड़ से भी ज्यादा पात्र किसानों को 2 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा राशि ट्रांसफर की जा चुकी है। किसानों को प्राकृतिक आपदा और बेमौसम बारिश से होने वाले फसल नुकसान से बचाने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत की गई।
4: हमने 1800 रुपए प्रीमियम भरा था, अधिक वर्षा होने की वजह से पूरी फसल खराब हो गई थी। उसका हमने इंश्योरेंस कंपनी को उनको सूचना दी और उनके प्रतिनिधि आके हमारे खेतों का निरीक्षण किया उन्होंने, और उसके बाद में फिर हमारा बीमा 2022 में 76,000 रुपये मुझे प्राप्त हुआ।
2: अब तक 10.69 करोड़ से ज्यादा आवेदक किसानों को 1,18,195 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का भुगतान किया गया है। साल 2014 के मुकाबले अब किसानों को दलहन, तिलहन और धान की उत्पादन लागत से 1.5 गुना ज्यादा MSP दिया जा रहा है। इस बढ़े हुए MSP दर पर साल 2020-21 में 991 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा गेहूं व धान की खरीद हुई। 2,44,159 करोड़ रुपए मूल्य की गेहूं व धान की फसलों की रिकॉर्ड खरीदी हुई, जिससे 1.75 करोड़ से भी अधिक किसानों को फायदा हुआ। एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के तहत 1,00,000 करोड़ रुपए की मदद से कृषि और इससे संबंधित बुनियादी ढांचों को विकसित किया जा रहा है।
5: AIF के थ्रू हमको लोन मिला, जिससे ये मिल चल रही है। इस क्षेत्र में ऐसी और भी मिलें, और भी प्रोजेक्ट हैं जो चल रहे हैं। ये सरकार का बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, जिससे गांव में खुशहाली आ रही है।
2: 313.58 लाख से भी ज्यादा नए किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए गए। मिट्टी में पोषक तत्वों के अधिकतम उपयोग करने के लिए किसानों को सॉइल हेल्थ कार्ड जारी करने की शुरुआत की गई। विभिन्न चरणों में अब तक 23 करोड़ से भी ज्यादा सॉइल हेल्थ कार्ड्स जारी किए जा चुके हैं। किसान की आय में बढ़ोतरी करने और पर्यावरण को स्वस्थ रखने के लिए परंपरागत कृषि विकास योजना को बढ़ावा दिया गया।
6: ये गंगा के किनारे जैविक खेती करना ये बहुत ही जरूरी जो सरकार का उपक्रम है। प्रदूषण फैलता है, उससे भी उसको राहत मिलती है, और इस तरह से फसल भी अच्छी होती है और उसकी गुणवत्ता भी अच्छी होती है।
2: खेत स्तर पर जल उपयोग दक्षता बढ़ाने हेतु सूक्ष्म सिंचाई के प्रोत्साहन हेतु प्रति बूंद अधिक फसल योजना क्रियान्वित की जा रही है। 10,000 से ज्यादा नए FPO का गठन और उसका संवर्धन किया जा रहा है।
7: मैं एपीओ का डायरेक्टर हूं। मेरा एपीओ पूरा हो गया है। 3,02,000 रुपया किसान का है शेयर होल्डर और 3,02,000 रुपया सरकार दी है, उससे हम लोग खाद बीज का दुकान किया हूं।
2: किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य दिलाने के लिए देश भर की मंडियों को आपस में ई नाम प्लेटफॉर्म से जोड़ा जा रहा है। ग्रामीण स्तर पर रोजगार को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन की शुरुआत की गई। देश को खाद्य तेल में आत्मनिर्भर बनाने के लिए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन की शुरुआत की गई। इसके तहत 11,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की राशि आवंटित की गई है। संवेदनशील कृषि उत्पादों की आवाजाही के लिए किसान रेल चलाई जा रही है। बहुत शीघ्र खराब होने वाले फल, सब्जियों एवं अन्य बागवानी उत्पादों की आवाजाही को सुनिश्चित करने के लिए किसान रेल का संचालन होने से किसानों को लाभ हो रहा है। कृषि को आधुनिक बनाने के लिए स्मार्ट उपकरण उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। इसके अलावा सिंचाई, कीटनाशकों और पोषक तत्वों के छिड़काव के लिए ड्रोन टेक्नोलॉजी को भी अपनाया जा रहा है।
8: हमारी सरकार किसानों के हित में हर संभव कदम उठा रही है, लगातार एक के बाद एक नए कदम उठाती जा रही है।
2: कृषि में रिफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के 8 साल शानदार प्रदर्शन से उपलब्धियां बेमिसाल।

0: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: चसी हम इसे को नितोबन आज में था नौमीन बार जरूरी संदेश को नियत हम दिला कचक्रम मुनासिब बुलाया और बन बढ़ाया तेहिंग मिन गपल मराव लिखाते गर्मा लत्तेदार सब्जियों की खेती विषय दी कहते मैंने तो नड़ियान जिनिस को चले का बन चास तरह और नुआ किन लई अन्ना की सिंह कुंटिया तिकिन अन्ना किन से लगा पल मराव रहे अलिंग में नालिंग ठाकुर चंद्र मुर्मू तिकिन दिला बन आज में नौमीन गपल मराव
4: चासी हगिया को नैन किसान वाणी कार्यक्रम रे जाओगे किली मिली चास बास्ती आए नेते पूरे इनकना को वो जगह रही अच्छी को नेते अब इनकम ची आय बढ़ाओ लेकिन ना मिल लेकिन ना चास बास पाइटियो ना दो से पेट को पाइटी तीन कोई तीन को पाइटी तीन नेते इस पूरे हो को इनका महिला समूह बैके थे इस पूरे कृषि कार्य रे को जुड़े हो करना

नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं नूतन लकड़ा। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनर्निरीक्षण अभियान के तहत अपने आवास पर स्वयं इन्यूमरेशन फॉर्म भरकर संबंधित बीएलओ को सौंपा। उन्होंने मतदाताओं से अपील की कि बीएलओ के घर पहुंचने पर वे तुरंत फॉर्म भरकर हस्ताक्षर सहित जमा करें ताकि पुनर्निरीक्षण कार्य समय पर पूरा हो सके। रांची में विशेष गहन पुनर्निरीक्षण 2026 के तहत इन्यूमरेशन फॉर्म वितरण संग्रहण और डिजिटाइजेशन कार्य की समीक्षा करते हुए उपायुक्त सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी मंजुनाथ भजंत्री ने कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने रांची के महात्मा गांधी मार्ग स्थित श्री हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना कर राज्यवासियों को सुख समृद्धि और कल्याण की कामना की। इस दौरान उन्होंने मंदिर परिसर में नवनिर्मित वातानुकूलित सामुदायिक हॉल श्री राम वाटिका का उद्घाटन करते हुए इसे धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक गतिविधियों की प्रेरणादायी केंद्र बताया। झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से न्याय सदन में आज वित्तीय प्रबंधन पर राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मौजूदा झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश सह झालसा के कार्यकारी अध्यक्ष सुजीत नारायण प्रसाद ने वित्तीय प्रबंधन पर अपनी बातें रखी। सरायकेला खरसावां जिले के आरआईटी थाना क्षेत्र स्थित असांगी चेक डैम में नहाने के दौरान दो स्कूली छात्र गहरे पानी में डूब गए। पुलिस और गोताखोरों की टीम ने काफी मशक्कत के बाद एक छात्र का शव बरामद कर लिया है, जबकि दूसरे छात्र की तलाश है। रामगढ़ में आज भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में भाजपा के प्रदेश महामंत्री सरोज सिंह ने कहा कि 23 जून को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस से 6 जुलाई उनके जन्म दिवस तक पूरे देश में विशेष पखवाड़ा मनाया जा रहा है। सम्मेलन में बड़कागांव विधायक रोशन लाल चौधरी सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित थे। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन शाम 7 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

कार्यक्रम आपका स्वास्थ्य में आप सबों का स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं रमेश दास। कैसे हैं श्रोताओं? हमें उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम आपका स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां दें। सबसे पहले हम आपको बता दें कि जो कैंसर, मधुमेह, हृदय रोग और स्ट्रोक की रोकथाम और नियंत्रण हम कैसे कर सकते हैं, इसके लिए सरकार की ओर से कई राष्ट्रीय कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। और ख़ासकर मैं बता दूं कि इसे हम अगर NPCDCS और NHM राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन भारत में गैर संचारी रोगों से निपटने के लिए मिलकर काम करते हैं, जहां NPCDCS NHM के तहत एक प्रमुख कार्यक्रम है जो जागरूकता, शीघ्र पहचान, बुनियादी ढांचे के निर्माण और 30 प्लस आयु वालों की जांच, जिसमें कैंसर, मधुमेह, उच्च रक्तचाप, स्ट्रोक पर ध्यान केंद्रित करता है, ताकि इन बीमारियों से होने वाली मौतों को

0: रोका जा सके। श्रोताओं, अगर हम देखें तो इसकी मुख्य गतिविधियां हैं जागरूकता फैलाना, जी हाँ, IEC यानी सूचना शिक्षा और संचार के माध्यम से स्वास्थ्य संवर्धन करना, जांच करना, जिसमें जैसे मैंने कहा कि 30 प्लस आयु वर्ग के लोगों की मौखिक स्तन, गर्भाशय, ग्रीवा के कैंसर, मधुमेह और उच्च रक्तचाप के लिए स्क्रीनिंग करना। अगर हम देखें तो जिला स्तर पर NCD क्लिनिक और CHC यानी जिसे हम सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कहते हैं के स्तर पर क्लिनिक स्थापित करना, और अगर हम क्षमता की बातें करें तो स्वास्थ्य कर्मियों को इसके लिए प्रशिक्षण भी देना है। तो श्रोताओं, जैसे मैंने कहा कि इसके लिए सरकार कई योजनाएं चला रखी है और इन्हीं में से ये एक योजना था।
1: ये कहानी है एक गृहिणी और उसके अंतर्मन की।
2: बिजली का बिल, किराना, स्कूल फीस, सब हो गया।
3: बन गया बजट?
2: हाँ,
3: 5,000 बच गए।
2: तो नई साड़ी ले ले?
3: ना,
2: पिछले महीने तो ली थी।
3: एक और नहीं, पहले बजट बनाओ, फिर छोटी छोटी बचत को बैंक में सेव करो और पैसों को बढ़ते देखो।
2: बढ़िया,
3: जाओ भाई।
4: RBI कहता है,
5: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
0: श्रोताओं, बरसात का मौसम है और खासकर अगर हम देखें तो बरसात के मौसम में हम कई बीमारियों से ग्रसित हो सकते हैं। इसके लिए जरा हमें सचेत रहना होगा। आज हम बरसात के मौसम में होने वाले जो मस्तिष्क ज्वार है, जिसे हम दिमागी बुखार कहते हैं, का खतरा काफ़ी बढ़ जाता है। यह मुख्य रूप से अगर देखें तो मच्छरों और दूषित पानी से फैलने वाली गंभीर बीमारी है। इसके लक्षण में अगर हम देखें तो तेज़ बुखार, सिर दर्द और उल्टियां होती है, और मिर्गी के दौरे भी पड़ना इसके लक्षण हैं। यह बीमारी खासकर बच्चों को तेज़ी से प्रभावित करती है। श्रोताओं, अगर हम देखें तो इसके जो प्रमुख कारण है, बरसात के मौसम में पनपने वाले मच्छरों के काटने से यह वायरस दिमाग तक पहुंचता है, जिसे हम जापानी इन्फेसाइटिस या जिसे हम शॉर्ट में जेई कहते हैं ये है। और दूषित पानी के सेवन से ये जो है संक्रमण दिमाग तक पहुंच सकता है, और इसके बचाव के उपाय तो हम अपने कार्यक्रम में, इससे आपका स्वास्थ्य कार्यक्रम में हर बार आपको बताते हैं कि मच्छरों से बचाव जो है इसका प्रमुख उपाय हम कहें, अपने आसपास पानी ना जमा होने दें, सोते समय हमेशा मच्छरदानी का प्रयोग जरूर करें, हमेशा सुरक्षित और उबला हुआ पानी पिए, खाना बनाने और खाने से पहले हाथों को साबुन से जरूर धोएं। तो किसान भाइयों, या हम यूँ कहें कि हमारे सभी श्रोताओं से हमारा अनुरोध होगा कि आप इन बातों पर जरा अमल कीजिए। तो चलिए, अब जब से हम बातें कर रहे हैं कि मस्तिष्क ज्वार के बारे में, इस पर हम कुछ और विस्तृत जानकारी लेते हैं, जानकारी दे रहे हैं एहसान फारूक। सबसे पहले तो नमस्कार।
6: नमस्कार।
0: हमारे श्रोताओं को ये बताइए कि ये मस्तिष्क ज्वार है क्या?
6: एक्चुअली मस्तिष्क ज्वार जैपनीज इंसेफ्लाइटिस के नाम से भी जाना जाता है, और ये एक तरह का मॉस्किटो बॉर्न जूनोटिक वायरल डिजीज़ है। यह बीमारी मच्छरों के द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में वायरस का प्रसरण कराता है। बाकी वेक्टर बॉर्न डिजीज़ में जिस तरह से मैन टू मैन ट्रांसमिशन होता है मादा एनोफिलीज मच्छर के द्वारा, उसके ठीक उलट जैपनीज इंसेफ्लाइटिस में बीमारी फैलाने वाला मच्छर है, जो क्यूलेक्स ट्रेनोटोराइचस के नाम से जाना जाता है। ये मच्छर

0: जलीय पक्षी या पशु को जब काटता है तो उससे वायरस को लेकर दूसरे आदमी में यह प्रसरण कराता है। इसलिए इसे मॉस्किटो बोर्न, मॉस्किटो द्वारा फैलने वाले वायरल डिजीज़ है। ये वायरस जो लेता है जलीय पक्षियों में, जलीय पक्षी जैसे बोगला और ये पॉन्ड हेरोन्स जो होते हैं, और विशेषकर सुअर, सुअर में जो है जेई का वायरस, जैपनीज इंसेफ्लाइटिस का वायरस, मस्तिष्क ज्वर का वायरस जो होता है प्राकृतिक रूप से में प्रचुर मात्रा में होता है। ये जो है पिग जो होते हैं सुअर, ये नेचुरल रिजर्वर होते हैं वायरस के, और इस वायरस से जलीय पक्षी या फिर सुअर को कोई नुकसान नहीं है। लेकिन यही वायरस जब मच्छर उसको काटती है तो वायरस को लेकर दूसरे आदमी में इंजेक्ट कर देती है, जिससे मस्तिष्क ज्वर फैलने का आशंका बढ़ा रहता है।
1: अच्छा, एक बात जानना चाहेंगे कि ये खासकर कैसे मौसम में ज़्यादा देखने को मिलता है?
0: ये मानसून, और मानसून के बाद इसका प्रकोप ज़्यादा बढ़ जाता है। और मस्तिष्क ज्वर से हर आयु वर्ग के लोगों को हो सकता है, महिलाओं को, पुरुष को, विशेषकर बच्चों में ये विशेषकर बहुत चिंता का विषय है। और बच्चों में जो है मस्तिष्क ज्वर के चलते जटिलताएँ बहुत बढ़ जाती हैं, जिससे जो है मृत्यु की आशंका बनी रहती है। हर आयु वर्ग के लोगों को हो सकता है, लेकिन विशेषकर बच्चों में विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। यह बीमारी जो है क्यूलेक्स जो मच्छर होते हैं, ये विशेषकर जल जमाव वाले एरिया में होते हैं, जहाँ जल जमाव है प्राकृतिक रूप से, बड़े बड़े जल जमाव हो, धान का खेत हो, सिंचाई की नालियाँ हो, या उससे रिश्ता हुआ जो रिसाव होता है, वैसे जगह में ये मच्छर का प्रजनन होता है। और जहाँ आदमी के साथ साथ पशु पक्षी साथ में रहते हैं वहाँ होने की आशंका बहुत होती है।
1: अच्छा, एक बात जानना चाहेंगे कि इसके लक्षण क्या है, हमें कैसे पता चलेगा कि ये बीमारी हमें हुआ है?
0: मस्तिष्क ज्वर एक तरह का फेब्राइल इलनेस है, और शुरुआती इसका जो लक्षण होता है सिंपल हेडेक, सर में दर्द, फीवर, अच्छा फेब्राइल इलनेस होगा। लेकिन अगर इसको इग्नोर किया जाए तो आने वाले कुछ ही दिनों में यह सीरियस सीवियर हो सकता है। सीवियर होने के कुछ प्रमुख लक्षण है कि बहुत तेज़ सर दर्द होगा, और फीवर बहुत हाई फीवर होगा, हाई फीवर 104 डिग्री फारेनहाइट तक चला जाता है। और ये विशेषकर ह्यूमन बॉडी के सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, स्नायु तंत्र को जो है डैमेज करता है, यानी कि स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन को ये डैमेज करता है, और ब्रेन में इन्फ्लामेशन हो जाता है, जिसे मस्तिष्क ज्वर के नाम से जाना जाता है। जब ब्रेन में इफेक्ट करता है, ब्रेन का इन्फ्लेमेशन हो जाता है और स्पाइनल कॉर्ड में इन्फ्लेमेशन होता है, तो पूरा सेंट्रल नर्वस सिस्टम जब डैमेज होने लगता है तो बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं, जैसे शारीरिक क्रियाओं में समन्वय का अभाव हो जाता है, और इसके चलते जो है पैरालिसिस, फोकल पैरालिसिस, फेशियल पैरालिसिस या कार्डियल पैरालिसिस होने का चांसेस रहता है, और बोलने में लड़खड़ाहट होना, उल्टी होना, कंफ्यूजन होना, पहचान खो देना, डिसओरिएंटेशन, कोमा, शॉक, ये बहुत सीरियस सिम्टम मिलते हैं शुरुआत में। और नेक रिजिडिटी हो जाता है इसमें सबसे, गर्दन में अकड़न हो जाता है।
1: अच्छा।
0: गर्दन में अकड़न होना, कोमा में चला जाना, फेब्राइल इलनेस होना, और शारीरिक क्रियाओं में समन्वय का अभाव होना, और पैरालिसिस के चांसेस ज़्यादा होते हैं।
1: अच्छा।
0: कुछ केसेस में जो है अगर शुरुआती में इसका अगर हम लोग सही से रोगी का पहचान कर पाएँ और उसको इमीडिएट अगर हम लोग सदर अस्पताल रेफर करवाएं तो बचने की संभावना रहती है।
1: अच्छा।
0: नहीं तो इसको जो है हम घर होम बेस्ड मैनेजमेंट नहीं कर सकते हैं, होम बेस्ड घर में इसको ट्रीटमेंट नहीं किया जा सकता है। जब भी ऐसा केस मिले किसी भी व्यक्ति को जो बोलने में लड़खड़ाहट हो, वीकनेस हो बहुत ज़्यादा, सर में बहुत दर्द हो, फीवर बहुत ज़्यादा हो, शारीरिक क्रियाओं में समन्वय का अभाव हो, या कहीं भी चेहरा में जो है लगे कि पैरालिसिस बोलने में दिक्कत हो, या फेशियल पैरालिसिस हो, या कोई लिम्स में पैरालिसिस हो, तो तुरंत हमको जो है इमीडिएट उसको देर ना करते हुए तुरंत रेफर करना चाहिए, क्योंकि इसका जो है कोई इलाज नहीं है।
1: अच्छा।
0: बचाव ही इसका इलाज है।
1: अच्छा।
0: अगर हम लोग हॉस्पिटल में इसको एडमिट कर देते हो, लक्षण के आधार पर वहाँ इसका डायग्नोसिस किया जाता है, और जो हॉस्पिटल में ही संभव, हमारे सदर हॉस्पिटल में जो DPH लैब है वहाँ इसका, वो स्पाइनल फ्लूड से एक सैंपल लिया जाता है, उसका वायरस आइसोलेशन करने के बाद हम इसकी पुष्टि कर पाते हैं कि एक्चुअली में यह जेई का वायरस है या नहीं। अगर जेई का वायरस होता है तो फिर इसका सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करना पड़ता है, और जो अंडर सुपरविजन ऑफ डॉक्टर ही संभव है। और बच्चों में इसमें बहुत ज़्यादा जटिलताएँ ज़्यादा देखने को मिलती हैं, और बच्चों में डेथ रेट बहुत ज़्यादा है इसमें।
1: अच्छा, एक बात और जानना चाहेंगे, ये बीमारी ना हो तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए?
0: बीमारी ना हो इसके लिए तो हमें, हम जहाँ रहते हैं हमारे घर के अंदर, घर के आसपास या गांव में कहीं भी जो है जल जमाव ना होने दें, गंदे पानी का जल जमाव ना होने दें। अगर बड़ा बड़ा जल का जमाव है जिसको लोग हटाने भी नहीं देंगे, डिस्पोज नहीं करने देंगे, तो ऐसे जगह हमें कम से कम वीकली जो है वो केरासिन तेल का छिड़काव करना चाहिए, जला मोबिल का छिड़काव करना चाहिए, जाके जो भी उसमें मच्छर का जो लार्वा होगा वो जो इनक्यूबेशन पीरियड होता है 7 से 14 दिन, वो 7 से 14 दिन में अगर वीकली भी अगर हम लोग उसको स्प्रे करते हैं तो लार्वा मस जाता है, उससे फिर ट्रांसमिशन रुकने का संभावना। दूसरी बात है कि शाम के समय हमें ढका हुआ कपड़ा पहनना चाहिए, अपने घर के आसपास पूरी तरह से साफ सफाई रखना है, नाली में जो पानी बह रहा है उसको जमा नहीं होने देना है, पानी बहता रहे, एक जगह पानी जमा ना रहे ये, और पूरा ढका हुआ कपड़ा पहने, रात में जब भी सोए तो मच्छरदानी के अंदर सोए, ये सावधानी। और जहाँ पशु पक्षी और आदमी साथ में रहते हैं वहाँ विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है, साथ में ना रहें, विशेषकर जहाँ सुअर पालन होता है वहाँ ना हो, या सुअर पालन जहाँ हो रहा है वो पूरा तरह से वो मच्छर विरोधी जगह मिले, जगह होना चाहिए, या जहाँ सुअर पालन जहाँ हो रहा है वहाँ से कम से कम 5 किलोमीटर दूरी पर लोगों को होना चाहिए।
1: अच्छा,
0: इसलिए कि नेचुरल रिजर्वर है और उसी से होने के चांसेस होती है, तो ज़्यादा चांसेस होता है जहाँ सुअर और आदमी साथ में रहता है या पशु पक्षी साथ में रहते हैं, जहाँ जल जमा हो, गंदा पानी का जल जमा हो, वहाँ धान का खेत हो, ये सब जगह। और धान के खेत में तो हम लोग मोबिल वगैरह नहीं डाल सकते हैं, तो वहाँ एक होता है गम्बूसिया मछली होता है छोटे छोटे, उसको डाला जाता है ताकि वो जो है लार्वा को, उसका खुराक है उस लार्वा को ही खा लेता है। हाँ, ये जल बचने के उपाय। शाम के समय हमें कुछ वो नीम का तेल जो आसानी से उपलब्ध है, नारियल का तेल, नीम का तेल या नीम का सूखा हुआ पत्ता घर में जलाएं, ताकि जो भी वेक्टर अंदर है क्यूलेक्स मच्छर वो उसके प्रकोप से बाहर निकले। अच्छा। और मच्छरदानी का प्रयोग करें, घर में नेट वगैरह लगाएं शाम के समय में, और ख़ास करके मानसून के दौरान, मानसून के बाद ये हमें करना चाहिए। और ऐसा करने से हम लोग जेई के साथ साथ और भी दूसरे वेक्टर बोर्न डिजीज, फाइलेरिया, मलेरिया, डेंगू से भी बच सकते हैं।
1: अंत में हमारे श्रोताओं को आप क्या सलाह देना चाहेंगे?
0: मेरा यही सलाह होगा कि ये गंभीर रोग है और सबसे दिक्कत है कि इसका कोई इलाज नहीं है, और वक्त रहते अगर इसकी पहचान कर ली जाए तो अंडर ट्रीटमेंट डॉक्टर के ऑब्जर्वेशन में इसको रखा जाए, और वहाँ ही इसका सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट में इसका इलाज संभव है। और इम्यूनाइजेशन जो होता है, रूटीन इम्यूनाइजेशन, उसमें जेई का टीका उपलब्ध है हमारे यहाँ। हर अभिभावक को चाहिए, हर माता पिता को चाहिए कि अपने छोटे बच्चों को पहला टीका 9 महीना में और दूसरा 1.5 साल में अवश्य लगवा दें। और ये टीका जो है हमारे सदर अस्पताल में, हमारे CSC सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में, और फिर जितने भी हमारे स्वास्थ्य उप केंद्र हैं गाँव में, सब जगह रूटीन इम्यूनाइजेशन में दिया जाता है। तो ये सुनिश्चित अगर हो तो बच्चों को अगर ये 2 टीका लग जाए तो भविष्य में जेई होने की संभावना कम होगी, और जो बताया गया है प्रिकॉशन उस पर पूरा ध्यान रखना चाहिए।
1: तो आपने हमारे श्रोताओं को बहुत अच्छी जानकारियाँ दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी।

0: सनसनी राहें न अपनाओ, बच्चों के भविष्य को नई दिशा दिखाओ।
1: झारखंड पुलिस नक्सल मुक्त झारखंड की दिशा में संकल्पित है। नक्सलवाद से मुक्त झारखंड हेतु सुरक्षा बलों द्वारा सघन नक्सल विरोधी अभियान जारी है। इस संदर्भ में न सिर्फ झारखंड पुलिस बल्कि नक्सलियों के परिवार जनों के द्वारा भी सक्रिय नक्सलियों को मुख्य धारा में जुड़ने की अपील की गई है।
2: नाम है रंगबला देवी, गाँव बारे हतो तो घर आई नहीं। हमारे घर बहुत दुख के बात है, तो हम बात हो जा है।
3: कुटुम बुरन सिंह तमसाय अनिता तमसाय भुरुपा सेना करना ऐसे दुखुर मिना यापा में रिया तपा में रिया वा बेटा मिका
4: अन्या तुम दो बुंबई कोड़ा पटन तुम गुंडे कोड़ा अन्या हम दो कोदमरी कोड़ा पटन पटन तुम

0: naik kura. Minimal puri-puri na bagi atau kirim dengan asyik sih kalau polis kalau ini lari celah atau mana. Buruan gue yang dapat jahit dari kakak gue, ini buka kok kakak nenek ni ya.
1: Aling muni suren tu ada api leh tanah aling si. Aja hurare minairo, jita hurare minairo. Tuh bugin hurate sesen ka eh. Uaga bita huran ka. Ali ayah nutun tuh ina mula api leh tanah.
2: झारखंड सरकार आत्मसमर्पण के दौरान आत्मसमर्पण करने वाले उग्रवादी को श्रेणीवार 6 लाख तथा 3 लाख 2 बराबर किस्तों में देगी। साथ ही गृह निर्माण हेतु 4 डिसमिल भूमि 6,000 प्रति माह की वृत्ति पर व्यावसायिक प्रशिक्षण, निशुल्क चिकित्सा, बच्चों को शिक्षा हेतु शिक्षण शुल्क, कन्यादान हेतु अनुदान, उग्रवादी का 5 लाख तक का जीवन बीमा एवं इनके आश्रितों को सामूहिक बीमा, 4 लाख तक का स्वनियोजन हेतु ऋण देने तथा अन्य कई लाभ देने का भी प्रावधान है। आएं आत्मसमर्पण कर झारखंड सरकार के आकर्षक एवं उत्साहवर्धक आत्मसमर्पण एवं प्रत्यार्पण नीति का लाभ उठाएं। हिंसा छोड़ मुख्य धारा में शामिल होकर समाज व राज्य की समग्र विकास में अपना भागीदारी सुनिश्चित करें। इसके लिए मोबाइल नंबर 7008088527 पर संपर्क कर सकते हैं।
3: तो इसी महत्वपूर्ण संदेश के साथ ही हमारा आज का आपका स्वास्थ्य कार्यक्रम भी समाप्त होता है। अगले बार कुछ विशेष जानकारियों के साथ हम पुनः हाजिर होंगे। तब तक मुझे यानी रमेश दास को विदा दे। नमस्कार, अपना ख्याल रखिएगा।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम आपका स्वास्थ्य। हम आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से बोल रहे हैं FM 101.7 MHz पर। श्रोताओं, आइए अब हम आपको ले चलते हैं आकाशवाणी के रांची केंद्र, जहां से आप सुन सकेंगे प्रादेशिक समाचार और जिले में आजकल। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन, आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।
1: कम प्रीमियम ज्यादा बोनस अपनों के लिए सबसे सही RPLI, इससे बेहतर कुछ नहीं।
2: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
3: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं नूतन लकड़ा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट का किया उद्घाटन। कहा, डिजाइन इन इंडिया, मेक इन इंडिया हमारा मंत्र। जमशेदपुर की तनिषा भी संवाद में हुई शामिल। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत भरा अपना इन्यूमरेशन फॉर्म। मतदाताओं से अभियान में सहयोग का किया आग्रह। झारखंड उच्च न्यायालय ने सरकारी अस्पतालों में लंबे समय से संविदा पर कार्यरत ANM कर्मियों को सेवा से नहीं हटाने और नियमित रूप से वेतन भुगतान करने का दिया निर्देश। पलामू जिले के सिक्का गांव में आर्जिनिमोन मिले सरसों तेल से हुई ड्रॉपसी बीमारी के कारण एक ही परिवार के 5 लोगों की हुई थी मौत। स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट से हुआ खुलासा। और राजकीय श्रावणी मेला 2026 को लेकर झारखंड और बिहार के अधिकारियों ने की बैठक। श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधाओं पर जोर। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात के सांडदा में इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन को प्रोत्साहन देते हुए सीजी सेमी आउटसोर्स सेमीकंडक्टर संयोजन और जांच केंद्र का उद्घाटन किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि डिजाइन इन इंडिया, मेक इन इंडिया के मंत्र के साथ भारत आगे बढ़ रहा है।
4: आज का ये कार्यक्रम इस बात का प्रमाण है कि भारत जो ठान लेता है वो करके दिखाता है। 5 साल पहले भारत ने संकल्प लिया था कि देश को सेमीकंडक्टर हब बनाएंगे। हम डिजाइन इन इंडिया, मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़े और आज देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में भी चीप पैकेजिंग का कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हो रहा है।
3: कार्यक्रम के दौरान जमशेदपुर की बेटी तनिषा गौतम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीधा संवाद किया। भारत की पहली मेड इन इंडिया कमर्शियल सेमीकंडक्टर चिप लॉन्च के अवसर पर इस संवाद का आयोजन किया गया। डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनी के रूप में कार्यरत तनिषा ने ऐतिहासिक मिशन से जुड़े अपने अनुभव को प्रधानमंत्री के साथ साझा किया। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत अपने आवास पर स्वयं इन्यूमरेशन फॉर्म भरकर संबंधित बीएलओ को सौंपा। उन्होंने मतदाताओं से अपील की कि बीएलओ के घर पहुंचने पर वे तुरंत फॉर्म भरकर हस्ताक्षर सहित जमा करें ताकि पुनर्निरीक्षण कार्य समय पर पूरा हो सके। उन्होंने सभी कर्मचारियों और पदाधिकारियों से भी अपने तथा परिवार के सदस्यों का इन्यूमरेशन फॉर्म शीघ्र भरवाने का आग्रह किया। रांची में विशेष गहन पुनर्निरीक्षण 2026 के तहत इन्यूमरेशन फॉर्म का वितरण, संग्रहण और डिजिटाइजेशन कार्य की समीक्षा करते हुए उपायुक्त सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी मंजूनाथ भजंत्री के कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिया। उपायुक्त ने स्पष्ट किया कि निर्वाचन कार्य में किसी भी प्रकार की शिथिलता स्वीकार नहीं की जाएगी और निर्धारित समय सीमा में गुणवत्तापूर्ण ढंग से कार्य पूरा किया जाए। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने आज जमशेदपुर के आदित्यपुर में दिवंगत हिमांशु सिंह के परिजनों से मुलाकात कर शोक संवेदना व्यक्त की। इस दौरान श्री साहू ने घटना की सीबीआई जांच की मांग की। उन्होंने कहा कि यह घटना राज्य की कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़ी करती है।
5: इस प्रकार से जमशेदपुर में जो पुलिस की मौजूदगी में हमने दो दो जुआ नौनिहाल बच्चों का साथ जो घटना घटी है उसकी जितनी निंदा करें शायद मुझे कम लगता है। एक जुआ की मौत हो गई, एक जुआ जीवन और मौत से जूझ रहा है, और ये बतलाने का अपराधियों ने काम किया है कि यहाँ पुलिस प्रशासन की सरकार नहीं चल रही है, इस राज्य में अपराधियों का समानांतर सरकार चलने का काम कर रही है।
3: राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने रांची के महात्मा गांधी मार्ग स्थित श्री हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना कर राज्यवासियों के सुख समृद्धि और कल्याण की कामना की। इस दौरान उन्होंने मंदिर परिसर में नवनिर्मित वातानुकूलित सामुदायिक हॉल श्री राम वाटिका का उद्घाटन करते हुए इसे धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक गतिविधियों का प्रेरणादायी केंद्र बताया। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। झारखंड उच्च न्यायालय ने राज्य के विभिन्न सरकारी अस्पतालों में 17-18 वर्षों से संविदा पर कार्यरत ANM कर्मियों को अंतरिम राहत देते हुए अंतिम निर्णय तक उन्हें सेवा से नहीं हटाने और नियमित रूप से वेतन भुगतान करने का निर्देश दिया है। अदालत ने सेवा नियमितीकरण से जुड़ी याचिका पर झारखंड कर्मचारी चयन आयोग JSSC से विस्तृत जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 22 अगस्त को होगी। पलामू जिले के पड़वा प्रखंड के सिक्का गांव में एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत के मामले में स्वास्थ्य विभाग ने जांच रिपोर्ट जारी कर दी है। सिविल सर्जन डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव ने बताया कि अर्जीमोन मिले सरसों तेल के सेवन से परिवार के सदस्यों को ड्रॉप्सी रोग हो गया था, जिससे शरीर में सूजन फैलने के बाद उनकी मौत हो गई। धनबाद के निरसा से विधायक आरूप चटर्जी को कथित तौर पर गैंगस्टर प्रिंस खान द्वारा धमकी दिए जाने का मामला सामने आने के बाद पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। वसेपुर क्षेत्र में प्रिंस खान से जुड़े एक ठिकाने पर आज बुलडोजर चलाया गया। धनबाद के सिटी SP ऋत्विक श्रीवास्तव ने बताया कि कुड़की जब्ती के आदेश को लेकर कार्रवाई की गई है।
6: पूरी तरह से लगभग खंडर हो चुका था, इसका पार्ट पूरी तरह सब गिर रहा था। यहाँ पे बच्चे खेलते थे, एक दो बच्चों को यहाँ पे चोटें भी आई और संभवतः इसका नक्शा वगैरह भी पास नहीं था, तो इन सभी के मद्देनजर कुर्की भी की गई। जो पार्ट्स गिर रहे थे, जो खंडर हो चुका था जिसके कारण जनमानस को दिक्कत हो रही थी, बस उसे अभी तोड़ा जा रहा है और जैसे ही हमारे पास पूरा ऑर्डर आ जाएगा तो वैसे ही घर को भी उठाया जाएगा उसमें।
3: झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से न्याय सदन में आज वित्तीय प्रबंधन पर राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश सह झालसा के कार्यकारी अध्यक्ष सुजीत नारायण प्रसाद ने वित्तीय प्रबंधन पर अपनी बातें रखीं।

0: भीड़ प्रबंधन और श्रद्धालुओं की सुविधा की समीक्षा की गई। देवघर के उपायुक्त सौरभ कुमार भुवानिया ने बताया कि मेले के दौरान वीआईपी दर्शन पर रोक रहेगी।
1: सभी बिंदुओं पे आज बहुत ही दृढ़ तरीके से चर्चा हुई और सभी जिलों में आपस में कोऑर्डिनेशन हम लोग स्टैब्लिश करके डेटा शेयरिंग करके और जो भी इंफॉर्मेशन है, चाहे कोई अगर एम्बुलेंस हेल्थ का जरूरत पड़ता है या फिर कोई भी गाड़ी का आवागमन का जरूरत है या फिर श्रद्धालु जो आ रहे हैं ये कितने हैं, कितनी मात्रा में आ रहे हैं, हर तरह का जो डिटेल्स है वो आपस में शेयर करें ताकि हम लोग आगामी श्रावणी मेला उसका संपादन हो बहुत बढ़िया से।
0: रांची जिला जूनियर वुशु प्रतियोगिता का आयोजन कल मोरहाबादी स्थित बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम के वुशु हॉल में होगा, जिसमें जिले के विभिन्न विद्यालयों, क्लबों और प्रशिक्षण केंद्रों के जूनियर खिलाड़ी भाग लेंगे। इस प्रतियोगिता के माध्यम से खिलाड़ियों को राज्य और राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं के चयन का अवसर मिलेगा। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट का किया उद्घाटन, कहा डिजाइन इन इंडिया, मेक इन इंडिया हमारा मंत्र। जमशेदपुर की तनीषा भी संवाद में हुई शामिल। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनर्निरीक्षण के तहत भरा अपना इन्यूरेशन फॉर्म। मतदाताओं से अभियान में सहयोग का किया आग्रह। झारखंड उच्च न्यायालय ने सरकारी अस्पतालों में लंबे समय से संविदा पर कार्यरत एएनएम कर्मियों को सेवा से नहीं हटाने और नियमित रूप से वेतन भुगतान करने का दिया निर्देश। पलामू जिले के सिक्का गांव में आर्जिनमोट मिले सरसों तेल से हुई ड्रॉपसी बीमारी के कारण एक ही परिवार के 5 लोगों की हुई थी मौत, स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट से हुआ खुलासा। और राजकीय श्रावणी मेला 2026 को लेकर झारखंड और बिहार के अधिकारियों ने की बैठक, श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधाओं पर जोर। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार के ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सुबह 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
2: प्रस्तुत है जिले में आजकल।

0: इस अंक में आप सुनेंगे दुमका जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। रिपोर्ट के साथ हमारे दुमका संवाददाता।
1: दुमका जिले के चारों विधानसभा क्षेत्रों दुमका, जामर, जरमुंडी और शिकारीपाड़ा में SIR यानी मतदाता विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान शुरू हो गया है। यह अभियान मतदाता सूची को दुरुस्त करने और उसके शत प्रतिशत सत्यापन के लिए चलाया जा रहा है। BLO और BLO पर्यवेक्षक घर घर जाकर मतदाताओं का भौतिक सत्यापन कर रहे हैं। इसका उद्देश्य योग्य नागरिकों का नाम मतदाता सूची से जोड़ना और अयोग्य मतदाताओं का नाम मतदाता सूची से हटाना है। BLO चांदनी बीबी कहती हैं कि
2: मैं घर घर जाके गन्ना पत्र बांट रहा हूँ और जो सही पाया जा रहा है उनका मोबाइल में नाम कर।
1: सरकारी शिक्षिका गायत्री रॉय वॉलंटियर के रूप में SIR अभियान को पूरा करने में जुटी हुई हैं। वह बताती हैं कि
3: मेरा प्रमुख काम है BLO और मतदाता को SIR से संबंधित सभी तरह का सहयोग प्रदान करना। ये सरकार की तरफ से एक पहल है जिसमें कोई भी योग्य मतदाता छूटे नहीं और कोई भी फर्जी मतदाता मतदाता सूची में नहीं है।
1: मतदाता टीम के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए गणना प्रपत्र में जरूरी जानकारी भरकर हस्ताक्षर कर BLO को लौटा रहे हैं। दुमका में संताल हूल दिवस शौर्य और गौरव भाव के साथ समारोह पूर्वक मनाया गया। दुमका की पोखरा चौक स्थित अमर शहीद सीधो कानू एवं वीरांगना फूलो झानू की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण कर लोगों ने शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। दुमका के विधायक और झामुमो नेता बसंत सोरेन, पूर्व विधायक और भाजपा नेत्री सीता सोरेन, उपायुक्त अभिजीत सिन्हा, पुलिस अधीक्षक पीताम्बर सिंह खेरवार एवं विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों ने माल्यार्पण पढ़कर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर विधायक बसंत सोरेन ने कहा कि
4: इस दिन को लोग जरूर मनाए और उनके द्वारा कार्य किए गए हैं उन चीजों को याद करते हुए उन्हें अनुसरण करते हुए अपने जीवन को एक प्रेरणा के तौर पर जीवन में लाने का प्रयास करें।
1: भाजपा नेत्री सीता सोरेन ने राज्य सरकार पर निशाना साधते

0: हुए इस अवसर पर कहा कि
1: हम लोग आंदोलन कर रहे हैं क्योंकि आज की सरकार की जो गलत नीतियों का जो परचम लहरा रही है और अवैध खनन पूरे जोर शोर से चल रही है और यहाँ के जनता भूखे मर रहे हैं वो हम लोग देखने पा रहे हैं।
0: दुमका सिविल कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद कोर्ट परिसर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां सक्रिय हो गई हैं। पुलिस अधीक्षक पीताम्बर सिंह खेरवार ने बताया कि दुमका के जिला एवं सत्र न्यायाधीश के नाम स्पीड पोस्ट से एक धमकी भरी चिट्ठी मिली थी जिसमें दुमका सिविल कोर्ट को बम से उड़ाने की बात लिखी हुई है। उन्होंने कहा कि
2: डिस्ट्रिक्ट जज साहब को एक पोस्ट लेटर दिया गया जिसमें कि बोला गया कि हम लोग कोर्ट में हमला करेंगे। इसमें मुख्य बात है स्पीड पोस्ट में चिट्ठी लिखे थे वो अपने आधार कार्ड भी मेंशन किया है अपना डिटेल एड्रेस भी दिए थे तो उसका छानबीन किया गया। पूर्वी वर्धमान का वो निवासी है जो आधार कार्ड है उन लोगों ने बताया कि हम लोग कभी ऐसा चिट्ठी नहीं लिखे हैं लगता है कोई दुर्भावना से हम लोग से किसी का विवाद होगा इसलिए हम लोग का नाम दे दिया और आधार कार्ड निकाल के जज साहब के यहाँ कोई स्पीड पोस्ट कर दिया।
0: बासुकीनाथ श्रावणी मेले की तैयारी युद्ध स्तर पर जारी है। इस माह के अंत में मेले की शुरुआत होनी है। आर के नीरद आकाशवाणी समाचार दुमका।
3: अभी आप सुन रहे थे दुमका जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट पर आधारित कार्यक्रम जिले में आज कल।

आप सुन रहे थे जिले में आजकल। ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है FM के 101.7 MHz पर। श्रोताओं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम आपकी पसंद। आपकी पसंद कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम के साथ मैं हूं अवनीश कुमार सिन्हा। पहली पसंद आप सबों की है, सुनना चाहा है। सरायकेला पाड़ापुर देशावली ग्राम पहाड़पुर से शिवम शिवाजी मुंडरी, सुरुमानी मुंडरी, हीरामणि मुंडरी, हिमांती मुंडरी, डोबरो मुंडरी, साजन मुंडरी, सिद्धेश्वर मुंडरी, पाड़ापुर शिवाजी, डोबरो मुकेश, कुशल मुंडरी, जानम सिंह मुंडरी, सिद्धिबोस, सोना बाबू सोना, FM शिवा मुंडरी, भाटपारा छत्तीसगढ़ से सोहन जोशी, विष्णु साहू, अंकिता, अमृता जोशी, लोकेश जोशी, गोल्डन रेडियो लिस्नर क्लब राज पैलेस मऊनाथ भंजन से राजेश कुमार वर्मा, राजीव वर्मा, रितेश सोनी, दुधनाथ भारती, पारुल पल्लवी, शैलजा सोनी, रविदास मंदिर हकीकतपुरा मऊ यूपी से मुन्ना स्वर्णकार, सोनी स्वर्णकार, आर्यन स्वर्णकार, लिटिल पीहू स्वर्णकार एवं पूरा स्वर्णकार परिवार, गांव किता सरायकेला से राधा कृष्ण गोप, सुनीता गोप, उमा गोप, गीता गोप, रीता गोप, सरस्वती गोप, आराध्या गोप, अमित गोप, सुमित गोप, अंकित गोप, अभिषेक गोप, विनोद गोप, आशीष गोप, विकी गोप, राजू गोप, राजन गोप, माहिर गोप, शुभम गोप, वसुंधरा कॉलोनी सेंटोला चाईबासा से भोला राम मधुर, मधु लकड़ा, नताशा और बेबी, बड़ी बाजार चाईबासा से विनोद कुमार पवन, मीना पवन, खरसावा बड़ा बाम्बो से नायडू महतो, उषा महतो, प्रिया महतो, डॉली महतो, तरुण महतो एवं समस्त परिवार के सदस्य। इसी गीत को सुनना चाहा है छत्रपति संभाजी नगर से राजेश सावले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश और शीतल राजेश। आप सभी सुनना चाहते हैं फिल्म स्वीकार किया मैंने। इस फिल्म का गाना आवाजें हैं लता मंगेशकर की।

अगली पसंद आप सबों की है। सुनना चाह चांदपुर पोटका से संतोष कुमार भगत, बासंती भगत, मृणाल कांति भगत, चांदनी भगत, मास्टर आयुष भगत, राजकुमार भगत। कॉलेज रोड घाटशिला से सोना, रूपा, मोनिका, शिवम, मौसमी, संतोष, आनंद। गांव कुईड़ा से पौंडे बोईपाई, रेशनल बोईपाई, यशमती बोईपाई, कश्मीरा बोईपाई, मोनिका बोईपाई, सुनीता बोईपाई, मीनाक्षी बोईपाई, देवी चरण भंज और तारकेश्वर बांदा। छोटा निमरी चाईबासा से बाबूराम, शांति देवी, रोहन, कोमल और ऋतिक। दौलतबाग मुरादाबाद से जफर हुसैन, नईमा बेगम, कासिम अली, नदीम अली, जुनैद अब्बासी। आदर्श नगर मलौट से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरभ शर्मा, साइना शर्मा। सरोज चौक अमरावती महाराष्ट्र से कमरुल्ला ठेकेदार, नसीम बेगम, आयशा खान, हदिया खान, असमा, सालिया सोएब खान, पोत्रा मुश्तबा खान, रऊ भाई, साहिद भाई। गांधीबाग अंकोला से रमेश कटनकर और वैशाली कटनकर। आप सभी सुनना चाहते हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ में फिल्म महबूबा का ये नगमा।

श्रोता सुन रहे हैं आपकी पसंद कार्यक्रम आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से। अगली पसंद आप सबों की बड़ा बम्बू सुपाई साई से देवेंद्र तांती, राकेश तांती, कुमारी निशा तांती, प्रकाश तांती, ललित प्रधान, उग्रसेन प्रधान, सुदर्शन प्रमाणिक, सुशीला प्रमाणिक, श्यामदेव नायक, पूजा और सीमा, ग्राम गिले लोहर से कोमल बेसरा, बसंती रमेश, बनमाली बेसरा, अन्नू, सिद्ध कुमारी और पूजा। बड़ा नीमरी चाईबासा से तुलसी पथिक, मीरा देवी, बजरंगी ठाकुर, मीतू रंजन, राजीव रंजन, मौलिक रंजन, अमृत कुमार, अमित कुमार, सुमित कुमार। तुरी टोला चाईबासा से मदन ठाकुर, पुष्पा देवी,

ठाकुर, संगीता देवी, लाडो, हरी, खुशी कुमारी, रिया कुमारी, अर्पिता कुमारी, आमजोड़ा पोखरिया मालुका से शिवा गोप, प्रेम गोप, प्यारी बहने, संगीता गोप, लिपि गोप, दीपाली गोप, चांडिल ग्राम हारूडी से तुलसीदास महतो, कल्पना महतो, मनमहिनी महतो, मनोरमा और दीनबंधु, महुलडिया सोनवाल से नंदकिशोर महतो, राधामणि महतो, रवि बारी, वंदनी, दीपक, संतोष, राहुल, बिट्टू, आयुष, गीतेश, अन्नू, तन्नू, डिस्को महतो, भाई नंदू महतो, मेन रोड सोनवा से गुरुचरण नायक, अनुसुईस नायक, प्रियंका नायक, देवाशीष नायक, गुलशन नायक, पिनाक पानी प्रधान, तनुश्री प्रधान, नील पानी प्रधान, नीक पानी प्रधान, अमलाटोला चाईवासा से गोरख प्रसाद गुप्ता, फुलवंती गुप्ता, अभिषेक गुप्ता और सोनू, महाली साई से बिरबल महाली, सरस्वती महाली, प्रेमचंद महाली, फूलमणि महाली, शकुंतला महाली, सुमांति महाली, यशोदा महाली और शांति महाली। इसी गीत को सुनना चाहे खरसमापति साई से सुकरा नायक, मंजू नायक, जलेश्वर नायक, गौरव नायक, सोनुआ गांव पोड़ाहाट से मिथुन नायक, राकेश नायक, मुकेश नायक और मखरू आचार्य। आप सभी सुनना चाहते हैं मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में फिल्म आन मिलो सजना, इस फिल्म का गाना, आइए सुनते हैं।

अगली पसंद आप सबों की। न्यू कॉलोनी टुंगरी से रश्मिता महतो, स्वाति महतो, विश्वजीत महतो, अभिजीत महतो, आर्या, वीर, तेजस, प्रकाश जायसवाल, प्रदीप जायसवाल, उर्मिला देवी वैष्णवी, रीना जायसवाल, हजारीबाग गोला रोड सेठ मोहल्ला से अन्नपूर्णा देवी, सुधा देवी, प्रिया देवी, आशा देवी, उदय जायसवाल, हन्नू, ऊर्जा, उन्नति, उत्कर्ष, अंशु जायसवाल, खम्हरिया बिलासपुर से साबित खान, सावित्री देवी, धर्मेंद्र प्रजापति, प्रतीक कुमार, बेड़ी से हुकुम कर्मकार, सुनीता कर्मकार, हार्दिक कर्मकार, प्राची कर्मकार, तनु कर्मकार, आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, मेहराज जहां, जमशेदपुर से हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल भाटिया, नवनीत भाटिया, पप्पी भाटिया, बड़ी बाजार चाईवासा से मौजम बिहारी, समीमा खानम, निम्मी, बिट्टू, किरण, रोशनी, परी, मुस्कान, नबीहा, बड़ी बाजार चाईवासा से भगीरथ महतो एवं इनके परिवार के सभी सदस्य, अमरपुर पिंडा छत्तीसगढ़ से दीपक कुमार, रोशन कुमार, बंसीलाल, रेखा देवी, श्वेता देवी, दिशा और लवी श्रीवास्तव, शिवाजी चौक राजिम छत्तीसगढ़ से अनिल कुमार, अंजुलता, आदित्य और क्रिस श्रीवास्तव, डोगरगांव छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गजभिय, राधिका गजभिय, देवी अनिष्का और तन्मय गजभिय। आप सभी सुनना चाहते हैं फिल्म राजकुमार का ये नगमा, आवाजें लता मंगेशकर की है।

अगली पसंद आप सबों की। करसवा गांव दलाई किला से लक्ष्मण सोए, आयो सोए, गीता सोए, सीनी माई सोए, सरिता सोए, तनुजा सोए, सारिका द्वारिका सोए। कोटावा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय। दुबिहा नेवादा गाजीपुर से प्रतीक राय, रोशनी राय, प्रांजल राय। ग्राम जोजो कुड़वा से सुकरा महतो, पीताम्बर महतो, मुरारी महतो, राजेश महतो, कविराज महतो, सुपाई साई से कर्ण प्रधान, ज्योति प्रधान, जगबंधु प्रधान, दुष्यंत प्रधान, मिथुन प्रधान। बड़ा कुड़मा से सुदर्शन महाली चिगड़ू महतो। रावर करनाल से ज्ञान भूषण शर्मा, सोमनाथ कालिया। इसी गीत को सुनना चाहे धमतरी छत्तीसगढ़ से संतोष कुमार ध्रुवंशी, सरोज ध्रुवंशी, मास्टर शानू ध्रुवंशी। रेलवे कॉलोनी बठिंडा पंजाब से जगमाल सिंह डागला, हैप्पी डागला, जयस नायक, शोभा नायक एवं समस्त डागला परिवार। कुचाई बिद्री से केपी सेठ सोए, सरिता सोए, दुर्गामती, राजकुमारी, रेशमी, विशाल, मुन्ना और सनी। ग्राम सूराबेड़ा से बासिंग सरदार, वीरू सरदार, रमेश, कमल सिंह और अंशु एवं सरदार परिवार। आप सभी सुनना चाहते हैं फिल्म कन्यादान का ये नगमा, आवाज़ें मोहम्मद रफ़ी की है।

अगली पसंद आप सबों की सरगुजा मैन पार्ट से सोनिया थापा, सोनम थापा, रेशमा थापा, अदीबा थापा, बिहारी कॉलोनी से परवीन डोम, सरफुद्दीन डोम, कुमारी वली डोम, कुमारी डब्लू डोम, जेल रोड मथुरा से वसीम, आसमा बेलदार अकरम, आसमा बेलदार उल्ला, आसमा बेलदार, दुर्गाई सेलू जिला परभनी से चंदू कुलकर्णी, हेमलता सी आर कुलकर्णी, लुधियाना पंजाब से अमरजीत सोनम कौर, परमजीत अदीबा कौर, बिहारी कॉलोनी महासमुंद से वलीउल्ला फ़कीर, डब्लूउल्ला फ़कीर, परवीन आशमा फ़कीर, बुलंदशहर से बद्रवली अंसारी, फर्जी वली अंसारी, फर्जी वली अंसारी, ग्राम खेड़ियाघर प्रखंड मंझारी से बसंत बेंकुरा, सुलोचना पान, हेमंत पात्रो, कौशिक कुमार पान, दीपक कुमार, कल्पना कुमारी, रूपाली कुमारी, झीपी कुमारी, जयमणि जयंती, अल्पना और नवीन, एकता कॉलोनी रोहतक से सीताराम कागड़ा, बबीता बोत, निखिल कागड़ा, अंकित कागड़ा, साहिल कागड़ा, जोजो कुड़मा से मनोज गागराई, बसंती गागराई, सोनाली गागराई, आयशा गागराई, रचना गागराई, जितेंद्र गागराई, तालुका बुरहानपुर ग्राम मोहत मध्य प्रदेश से भैया तड़बी, रीना तड़बी, सन्नी बाबू, रोजूबाई तड़बी, परू मुबारक बारेकर, मनोहर ठाकुर, तैमूर बारेकर, मुकाम पोस्ट भोकरी महाराष्ट्र से अरशद तड़बी, अरसलान यूनुस तड़बी, सदाबहार रेडियो श्रोता संघ मोहत जिला बुरहानपुर से मुशर्रफ खां तड़बी, जरीना तड़बी, मुबारक तड़बी, परवेज तड़बी, बिटिया रोजमिन तड़बी, तैमूर तड़बी और समस्त परिवार तड़बी परिवार। आप सभी सुनना चाहते हैं फिल्म सूरज का ये नगमा, आवाज़ें मोहम्मद रफ़ी की है।

कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं आप सबों की पसंद पे अगला गीत। न्यू कॉलोनी नीमडी चाईबासा से ठाकुर प्रसाद रंगीला, निर्मला देवी, अर्चना देवी, खुशबू खुशी, अभिषेक, अंश, अंशु और अनीश। कासम कॉलोनी सनाबद मध्य प्रदेश से यूनुस खत्री, सफ़ी खत्री, इद्रिस खत्री, नूर मोहम्मद खत्री, इरफान मीना, कासिम मीना, हासिम मीना। पटेल नगर मलौट पंजाब से डॉक्टर रमेश कुमार जजोरिया, गीता रानी जजोरिया, गगनदीप जजोरिया, बेबी आरजू जजोरिया। उत्तराखंड रुद्रपुर से राजीव, सुमन और आदित्य। बरियातू रांची से नीतीश, मेघा, आकांक्षा और अरब। रेलवे रोड गंज डुंडवारा से मोहम्मद कलीम जख्मी, भुवन प्रकाश गौतम, एम फारूक शेख, अब्दुल सत्तार अंसारी। रिगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, लछनपुर से विश्वनाथ साहू, लेवई से गुलाबदास मानिकपुरी और दत्रेगी से भागवत वर्मा। आप सभी सुनना चाहते हैं फिल्म भीगी पलकें का ये नगमा। आवाज़ें मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की है।

0: लेटेस्ट अपडेट्स के लिए।
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
2: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए 8700014242।
2: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
3: इसके साथ ही श्रोता, हमारा आज का आपकी पसंद कार्यक्रम अभी ही समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से बोल रहे हैं FM के 101.7 MHz पर। कुछ ही पल में आप सुनेंगे फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम रजनीगंधा।

रजनीगंधा कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम के साथ मैं हूं अवनीश कुमार सिन्हा। पहली फरमाइश है ग्राम अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारनी ठाकुर, सूरज ठाकुर, ज्योति ठाकुर, रियांश ठाकुर और गुड़िया ठाकुर की। आप सभी सुनना चाहते हैं फिल्म आँखियों की झरोखों। इस फिल्म का गाना आवाज़ें हेमलता की है।

अगली फरमाइश है पटेल नगर मलौट पंजाब से डॉक्टर रमेश कुमार जजोरिया, गीता रानी जजोरिया, गगनदीप जजोरिया, बेबी आरजू जजोरिया की। आप सभी सुनना चाहते हैं फिल्म आँखें का ये नगमा, आवाज़ें लता मंगेशकर की है।

श्रोता सुन रहे हैं फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम रजनीगंधा आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से। अगली फरमाइश है माहौलडीहा सोनवा से नंद किशोर महतो, राधामणि महतो, रवि बारी बंदनी, संतोषी दीपक, संतोष राहुल, अन्नू तन्नू, भाई नंदू महतो, गुरुचरण नायक, अनसुया नायक, सागरिका नायक, देवाशीष नायक, गुलशन नायक और किशोर महतो। आप सभी सुनना चाहते हैं फिल्म बिन फेरे हम तेरे। गायक लगा रहे हैं किशोर कुमार।

अगली फरमाइश बड़ा बाम्बो सुपाई साई से है। देवेंद्र तांती, राकेश तांती, कुमारी निशा तांती, प्रकाश तांती, ललित प्रधान, उग्रसेन प्रधान, श्यामदेव नायक, पूजा सीमा नायक, सुदर्शन प्रमाणिक, ममता, नमिता, सुशीला, ग्राम गीले लोहर से कोमल बेसरा, बसंती, रमेश, अन्नू, बनमाली, सिद्धू कुमारी और पूजा। आप सभी सुनना चाहते हैं फिल्म जाग उठा इंसान, इस फिल्म का गाना। आवाज़ें आशा भोसले और किशोर कुमार की है, गीत लिखा इंदिवर ने, संगीत राजेश रोशन का है।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: और आई सुनते हैं आप सबों की फरमाइश पे अगला गीत, बड़ा नेमडी चाईबासा से तुलसी पथिक, मीरा देवी, बजरंगी ठाकुर, मीतू रंजन, राजीव रंजन, मौलिक रंजन, अमित कुमार, सुमित कुमार और शुभम कुमार। आप सभी सुनना चाहते हैं फिल्म दिल है कि मानता नहीं। आवाज़ें हैं कुमार सानू और अनुराधा पौडवाल की। गीत लिखा है समीर।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: और आइए सुनते हैं आप सबों की फरमाइश पे अगला गीत। सेंटोला चाईवासा से भोला राम मधुर, मोहिनी मीरा मधुर, विनोद कुमार पवन और मीना पवन। आप सभी सुनना चाहते हैं फिल्म पूरब और पश्चिम का ये नगमा। आवाज़ें महेंद्र कपूर और साथियों की है, गीत इंदिवर का।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: इसके साथ ही श्रोता, हमारा आज का फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम रजनीगंधा अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से बोल रहे हैं FM के 101.7 MHz पर, और आइए अब हम आपको ले चलते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र, जहां से आप सुन सकेंगे समाचार संध्या। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चिप विनिर्माण इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए गुजरात के साणद में सीजी सेमी आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली और टेस्ट सुविधा का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत ने समय पर लिए गए फैसलों, प्रभावी कूटनीति और राष्ट्रीय संसाधनों के उचित प्रबंधन से पश्चिम एशिया संकट का सफलतापूर्वक सामना किया। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, भारत ने रिकॉर्ड 38,000 करोड़ रुपए से अधिक की रक्षा सामग्री निर्यात की। महाराष्ट्र के कई क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त, नदियां उफान पर। और मैनचेस्टर में दूसरे T20 क्रिकेट मैच में भारत ने मेजबान इंग्लैंड को 191 रन का लक्ष्य दे दिया है। वैभव सूर्यवंशी सबसे कम उम्र में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने वाले भारतीय खिलाड़ी बन गए। और विस्तार से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत डिजाइन इन इंडिया और मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़ रहा है। गुजरात के साणद में देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में चिप पैकेजिंग के वाणिज्यिक उत्पादन का शुभारंभ करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही।
1: आज का ये कार्यक्रम इस बात का प्रमाण है कि भारत जो ठान लेता है वो करके दिखाता है। 5 साल पहले भारत ने संकल्प लिया था कि देश को सेमीकंडक्टर हब बनाएंगे। हम डिजाइन इन इंडिया, मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़े और आज देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में भी चिप पैकेजिंग का कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हो रहा है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि साणद संयंत्र में प्रत्येक वर्ष 20 करोड़ चिप तैयार होंगी।
1: मुझे बताया गया है कि अभी यहां से हर साल 20 करोड़ चिप्स निकलेगी और मुझे बताया गया आप सभी यही नहीं रुकने वाले हैं, आपने हर साल 500 करोड़ चिप्स का लक्ष्य रखा है, यानी हर दिन 1.5 करोड़ से ज्यादा। मेरा पक्का विश्वास है कि आप उसे बहुत जल्द हासिल करके रहेंगे।
0: श्री मोदी ने कहा कि ये विकास भारत की जबरदस्त इलेक्ट्रॉनिक्स क्रांति का अगला कदम है, जिसने देश को दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता बना दिया। उन्होंने कहा कि साणद में सीजी सेमी आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर संयोजन और जांच केंद्र, घरेलू चिप निर्माण व्यवस्था मजबूत होने के साथ तकनीकी आत्मनिर्भरता को भी बढ़ावा देगा और वैश्विक सेमीकंडक्टर मूल्य श्रृंखला में भारत की स्थिति में इससे सुधार होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने पश्चिम एशिया संकट का सफलतापूर्वक सामना किया।
1: भारत ने हर स्तर पर सही फैसले लिए, संकट का समय रहते सटीक आकलन किया, प्रभावी रणनीति बनाई, भारत के संसाधनों का संतुलित प्रयोग किया, भारत की डिप्लोमेटिक पावर का सकारात्मक इस्तेमाल किया और तब जाकर भारत संकट से उबर पाया है।
0: इस अवसर पर इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस वर्ष के अंत तक भारत में 5 सेमीकंडक्टर संयंत्र चालू हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि साणद संयंत्र केवल 27 महीने में पूरा हो गया।
2: आज भारत का तीसरा सेमीकंडक्टर प्लांट चालू हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 28 फरवरी को पहला प्लांट चालू किया और 31 मार्च को दूसरा प्लांट चालू किया और आज 4 जुलाई को तीसरा प्लांट। जिस तेजी से माननीय प्रधानमंत्री जी ने कैबिनेट में 12 प्लांट अप्रूव किए और 12 प्लांट में से 3 में कॉमर्शियल प्रोडक्शन चालू हुआ, आज दुनिया भर में भारत की सेमीकंडक्टर क्षमता पर एक नया विश्वास उठ खड़ा हुआ है।
0: श्री वैष्णव ने कहा कि संयंत्र में निर्मित चिप का उपयोग कारों, स्कूटरों और कई तरह के औद्योगिक कार्यों में किया जाएगा। ये चिप जापान, अमरीका और यूरोप भेजी जाएंगी और इससे भारतीय प्रौद्योगिकी को दुनिया भर में पहचान मिलेगी। इससे पहले राजस्थान के पचपदरा में प्रधानमंत्री ने 1,05,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। श्री मोदी ने जयपुर मेट्रो के चरण दो की आधारशिला भी रखी। उन्होंने पचपदरा में देश के सबसे आधुनिक ग्रीनफील्ड रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल परिसर को राष्ट्र को समर्पित किया। ग्रीनफील्ड रिफाइनरी तेल गैस या खनिजों के लिए एक औद्योगिक प्रसंस्करण संयंत्र है। इसे अविकसित स्वच्छ भूमि पर बिल्कुल नए सिरे से बनाया जाता है। श्री मोदी ने कहा कि पचपदरा रिफाइनरी भारत को एक विकसित और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक परियोजना है।
1: ये रिफाइनरी यहाँ हजारों लोगों के रोजगार का माध्यम बनेगी। मैं राजस्थान के युवाओं को इस रिफाइनरी की विशेष तौर पर बधाई देता हूँ। आज का दिन साक्षी है कि बीजेपी सरकारें परियोजनाओं को सिर्फ शिलान्यास करके नहीं छोड़ती है, बल्कि हम उन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए भी दिन रात एक कर देते हैं।
0: श्री मोदी ने राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों में लगभग 54,000 नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र भी दिए। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने बताया है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक बुलाने के सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। ये सत्र राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सार्थक बहस, चर्चा और निर्णयों पर केंद्रित होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि देश का रक्षा निर्यात 38,000 करोड़ रुपये के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। नई दिल्ली में कार्यक्रम में रक्षा मंत्री ने ये जानकारी दी।
3: आज हमारा डिफेंस प्रोडक्शन मोर देन 1,78,000 करोड़ पहुंच चुका है। 7-8 साल 9 साल पहले तक हमारा ये डिफेंस प्रोडक्शन अप्रॉक्सिमेटली 46,000 करोड़ था। डिफेंस एक्सपोर्ट भी रिकॉर्ड 38,000 करोड़ रुपए से ऊपर पहुंच गया है। और मैं आपको बतलाना चाहूंगा 2013 और 14 में यह केवल 686 करोड़ था, जो आज यह बढ़कर 57 टाइम्स बढ़ चुका है।
0: नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने कहा है कि संशोधित उड़ान योजना का शुभारंभ भारत की क्षेत्रीय कनेक्टिविटी यात्रा के अगले अध्याय का परिचायक है। श्री नायडू ने कहा कि 28,840 करोड़ रुपए से अधिक के बजट आवंटन के साथ प्रधानमंत्री मोदी द्वारा शुरू की गई ये योजना टीयर 2 और टीयर 3 शहरों में कनेक्टिविटी को और मजबूत बनाएगी। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने मादक पदार्थों की मांग में कमी लाने के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना शुरू की है। इसका उद्देश्य रोकथाम, जागरूकता पैदा करना, क्षमता निर्माण, उपचार, पुनर्वास और सामाजिक एकीकरण है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार ने कहा कि इन पहलों का उद्देश्य जागरूकता, उपचार, पुनर्वास और सामाजिक एकीकरण के जरिए मादक पदार्थों के दुरुपयोग को रोकना है। ऑटोमोबाइल उद्योग के विशेषज्ञों ने कहा है कि एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम को एक सुनियोजित, चरणबद्ध और वैज्ञानिक रूप से संचालित प्रक्रिया के जरिए लागू किया गया है। नई दिल्ली में इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की प्रबंध निदेशक वर्तिका शुक्ला ने कहा कि एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम 2018 में संरचित चर्चा और हितधारकों के परामर्श के लिए सार्वजनिक क्षेत्र में रखा गया था। टोयोटा किर्लोस्कर मोटर्स के प्रमुख और कार्यकारी उपाध्यक्ष विक्रम गुलाटी ने कहा कि एथेनॉल एक स्वच्छ ईंधन है, ये अच्छी परिचालन क्षमता और तेज गति प्रदान करता है। सरकार ने व्यापक पायरेसी की खबरों के बीच मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम को नोटिस जारी किया है। सरकार ने टेलीग्राम को पायरेटेड फिल्मों और ओटीटी कंटेंट के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। टेलीग्राम को 15 दिन के भीतर कार्रवाई रिपोर्ट देने को कहा गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। महाराष्ट्र के कई क्षेत्रों में लगातार मूसलाधार बारिश से सामान्य जनजीवन प्रभावित है। प्रशासन हाई अलर्ट पर है। वर्षा के कारण मुंबई, ठाणे, रायगढ़ और पालघर, गोंदिया, भंडारा, धुले, नासिक और पुणे के कई हिस्से प्रभावित हुए हैं। मुंबई, ठाणे और पालघर में स्कूल बंद करने पड़े। पालघर जिले में बाढ़ जैसे हालात हैं। रायगढ़ में सावित्री, कुंडलिका और उल्लास नदियां उफान पर हैं। मौसम विभाग ने अगले दो दिनों के लिए मुंबई, ठाणे, पालघर और पुणे तथा सतारा के लिए वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमरीका की स्वतंत्रता की 250वीं वर्षगांठ पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और अमरीका के लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री मोदी ने कहा है कि दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी, लोकतंत्र, सुशासन और लोगों की असीम क्षमता में साझा विश्वास पर आधारित है। प्रधानमंत्री मोदी सोमवार को इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी श्री प्रबोवो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। प्रधानमंत्री जकार्ता में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। वैश्विक शांति अभियानों में भारत के दीर्घकालिक योगदान को एक महत्वपूर्ण मान्यता मिली है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में कल संयुक्त राष्ट्र के अधीन सेवारत 651 भारतीय सेना के कर्मियों को प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र पदक से सम्मानित किया गया। संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों के अंतर्गत भारतीय दल की व्यावसायिकता, परिचालन उत्कृष्टता और समर्पित सेवा को सम्मानित किया गया। ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्ला सैयद अली खमेनेई के 6 दिन का राष्ट्रव्यापी अंतिम संस्कार आज सुबह तेहरान में शुरू हुआ। ईरान के दिवंगत नेता को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए हजारों शोक संतप्त लोग एकत्रित हुए थे। हवाई हमले में मारे गए परिवार के सदस्यों के साथ रखे गए खामेनेई के ताबूत को देखकर शोक संतप्त लोगों ने प्रार्थना की। ईरान के वरिष्ठ नेता, सैन्य कमांडर और विदेशी गणमान्य व्यक्तियों ने खामेनेई को श्रद्धांजलि अर्पित की। बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरीटा ने भारत का प्रतिनिधित्व किया। मैनचेस्टर में भारत ने इंग्लैंड को दूसरे T20 क्रिकेट मैच में 191 रन का लक्ष्य दे दिया है। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 190 रन बनाए। ईशान किशन ने सर्वाधिक 49 और अभिषेक शर्मा ने 43 रन बनाए। भारतीय टीम में संजू सैमसन की जगह वैभव सूर्यवंशी को शामिल किया गया है। वैभव 15 वर्ष 99 दिन की उम्र में भारत के डेब्यू करने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं। 5 मैचों की श्रृंखला का पहला मैच बारिश के कारण रद्द हो गया था। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 के पहले मैच में आज रात 10:30 कनाडा का सामना मोरक्को से होगा। एक अन्य मुकाबले में तड़के 2:30 पाराग्वे का मुकाबला फ्रांस से होगा। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने देश में लीवर की महामारी और टाइप 2 मधुमेह से निपटने के लिए राष्ट्रीय मिशन को शुरू करने का आह्वान किया है। नई दिल्ली में डॉक्टर सिंह ने कहा कि ये रोग अब पहले की तुलना में कम उम्र के लोगों में भी देखे जा रहे हैं। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चिप विनिर्माण इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए गुजरात के सांणद में CG सेमी आउटसोर्स्ड सेमी कंडक्टर असेंबली और टेस्ट सुविधा का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत ने समय पर लिए गए फैसलों, प्रभावी कूटनीति और राष्ट्रीय संसाधनों के उचित प्रबंधन से पश्चिम एशिया संकट का सफलतापूर्वक सामना किया। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, भारत ने रिकॉर्ड 38,000 करोड़ रुपए से अधिक की रक्षा सामग्री निर्यात की। और मैनचेस्टर में दूसरे T20 क्रिकेट मैच में भारत ने मेजबान इंग्लैंड को 191 रन का लक्ष्य दे दिया है। और इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: Good evening. This is Akashvani and I am Naresh Mago with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi inaugurates CG semi-outsourced semiconductor assembly and test facility in Sanand, Gujarat to strengthen chip manufacturing ecosystem. Prime Minister Modi says India successfully overcame West Asia crisis through timely decisions, effective diplomacy and prudent management of national resources. Monsoon session of Parliament to be held from 20th of this month to 13th August. India's defence exports reach a record high of over 38,000 crore rupees, says Defence Minister Rajnath Singh. Heavy rain disrupts normal life in many parts of Maharashtra, several rivers in spate. And in men's cricket, India set a target of 191 runs for hosts England in second T20 in Manchester. Vaibhav Suryavanshi becomes youngest debutant in international cricket. Prime Minister Narendra Modi today inaugurated CG Semi's state-of-the-art outsourced semiconductor assembly and test OSAT plant in Sanand, Gujarat. The event was attended by Union Minister Ashwini Vaishnaw and Gujarat Chief Minister Bhupendra Patel along with global tech leaders. Developed with a massive investment of over 7,500 crore rupees, the advanced facility will have an annual production capacity of up to 5 billion semiconductor chips. Addressing a large gathering, Prime Minister Modi emphasized that this development is the next step in India's massive electronics revolution, which has already established the country as the world's second largest mobile phone manufacturer. He stated that the CG Semi OSAT facility in Sanand will not only strengthen the domestic chip manufacturing ecosystem, but also boost technological self-reliance and elevate India's position in the global semiconductor value chain.
1: आज का ये कार्यक्रम इस बात का प्रमाण है कि भारत जो ठान लेता है वो करके दिखाता है। पांच साल पहले भारत ने संकल्प लिया था कि देश को सेमी कंडक्टर हब बनाएंगे हम डिजाइन इन इंडिया मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़े और आज देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में भी चिप पैकेजिंग का कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हो रहा है.
4: Lauding the diverse workforce at the plant, the Prime Minister described the complex as a mini-India where engineers and professionals from various states are working under one roof to power the global digital economy. The Prime Minister also said the Sanand plant is geared to produce 20 crore chips annually. He congratulated CG Semi on setting an ambitious future target of scaling production to 500 crore chips per year.
1: मुझे बताया गया है कि अभी यहां से हर साल 20 करोड़ चिप्स निकलेगी और मुझे बताया गया आप सभी यही नहीं रुकने वाले हैं आपने हर साल 500 करोड़ चिप्स का लक्ष्य रखा है यानी हर दिन 1.5 करोड़ से ज्यादा मेरा पक्का विश्वास है कि आप उसे बहुत जल्द हासिल करके रहेंगे.
4: Addressing at the occasion, Union Minister Ashwini Vaishnaw announced that India will have 5 operational semiconductor plants by the end of 2026. He emphasized that chips produced at the Sanand plant will cater to diverse industrial applications and will be exported to global markets, including the United States, Japan and Europe.
2: आज भारत का तीसरा सेमीकंडक्टर प्लांट चालू हो रहा है.
5: Today India's third semiconductor plant is being launched. The Prime Minister started the first plant on 28th February, the second plant on 31st March and today on 4th July the third plant. Given the speed with which the Prime Minister approved 12 plants in the cabinet and with commercial production already starting in 3 out of those 12 plants, a new wave of confidence in India's semiconductor capabilities has emerged across the world today.
2: आज दुनिया भर में भारत की कंडक्टर क्षमता पर एक नया विश्वास उठ खड़ा हुआ है.
4: Earlier, upon reaching Sanand, the Prime Minister toured the high-tech plant and inspected the production process. He also interacted closely with engineers and operators working inside the facility. Earlier, Prime Minister Modi inaugurated and laid the foundation stone for development projects worth over 1,05,000 crore rupees in Rajasthan, marking a major push to infrastructure, energy, transport and employment generation in the state. During his day-long visit, the Prime Minister inaugurated the new terminal building at Jodhpur Airport. Thereafter, he dedicated the country's most modern greenfield refinery cum petrochemical complex to the nation in Pachupadra in Balotra district, which is an industrial processing plant built from scratch on undeveloped clean land. He also inspected the refinery's state-of-the-art control room, interacted with engineers and technical experts, flagged off fuel tankers, and virtually laid the foundation stone for Jaipur Metro Phase 2. Addressing the program, the Prime Minister said the conflict in West Asia had triggered the biggest energy crisis of the 21st century, but India successfully overcame the challenge through timely decisions, effective diplomacy, and prudent management of national resources.
1: भारत ने हर स्तर पर सही फैसले लिए, संकट का समय रहते सटीक आकलन किया, प्रभावी रणनीति बनाई, भारत के संसाधनों का संतुलित प्रयोग किया, भारत की डिप्लोमेटिक पावर का सकारात्मक इस्तेमाल किया और तब जाकर भारत संकट से उबर पाया है.
4: Mr. Modi also handed over appointment letters to around 54,000 youth recruited across various departments of the government of Rajasthan. Prime Minister Modi will be on a six-day visit to Indonesia, Australia and New Zealand from Monday. At the invitation of Indonesian President Prabowo Subianto, Prime Minister Modi will undertake a state visit to Indonesia from the 6th to the 8th of this month. This will be Mr. Modi's fourth visit to Indonesia and his first bilateral visit since India-Indonesia relations were elevated to a comprehensive strategic partnership in May 2018. Here is a report from our correspondent in Jakarta.
6: During the visit, Prime Minister Modi will hold bilateral discussions with President of Prabowo Subianto, reviewing progress across key areas of cooperation under the strategic partnership. In Jakarta, the Prime Minister is also scheduled to address a large gathering of the Indian diaspora, underscoring the deep cultural and historical ties between the two nations. The Indian community in Indonesia is eagerly waiting for the visit. Speaking to Akashvani, Siddharth Taparia, President of the India Club of Jakarta, highlighted the strong friendship between India and Indonesia. He noted that this high-level engagement reflects the importance both countries place on each other. Mr. Taparia emphasized that India and Indonesia, as two of the fastest-growing economies with large populations, together create a vibrant marketplace. He expressed optimism that two nations will deepen collaboration in infrastructure, trade, defense, agriculture, natural resources, and other sectors. Shondi Bandashgupta, Jakarta, Indonesia.
4: Following his visit to Indonesia, Mr. Modi will embark on the second leg of his visit to Australia from the 8th to the 10th of this month. On the third and last leg of his three-nation visit, Mr. Modi will be in New Zealand on the 10th and 11th of July. The monsoon session of Parliament will commence on the 20th of this month. It will continue till the 13th of August. Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju today informed that President Draupadi Murmu has approved the proposal of the government to convene the monsoon session of Parliament from 20th July. Mr. Rijiju said the session will focus on meaningful debate, discussion and decisions on issues of national importance. This is Akashvani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on our X handle at AIR News Alerts. And for details of stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download News on AIR app. Defence Minister Rajnath Singh today highlighted India's significant progress in manufacturing and technology, saying that the country's defence exports have reached a record of over 38,000 crore rupees. Addressing an event organised by a private media organisation in New Delhi, Mr. Singh said the sharp rise from 686 crore rupees in the financial year 2013-14 reflects an almost 57-fold increase and

0: Spotlight. This is Akashvani. In the program Spotlight, now we bring you a discussion on Prime Minister's visit to Rajasthan and Gujarat, launch of key development projects. The participants are Ashok Tandon, political analyst, and Nishit Kumar, anchor.
1: Prime Minister Narendra Modi is on a one-day visit to Rajasthan and Gujarat, where he inaugurated, dedicated, and laid the foundation stones in both the states. And to discuss more about it, we are joined in by Mr. Ashok Tandon, political analyst. A warm welcome, Mr. Tandon.
2: Thank you.
1: Mr. Tandon, as we all know, the Prime Minister was on a visit to Rajasthan and Gujarat today. But first of all, we'll talk about the Rajasthan visit, wherein he inaugurated, laid the foundation stone, and dedicated to the nation various projects. And if we talk about the transport sector, that is the
3: cricket me. मैनचेस्टर में भारत ने दूसरे T20 मैच में इंग्लैंड के सामने 191 रन का निशाना रखा है। वैभव सूर्यवंशी बैनलक्वामी क्रिकेट में कदम रखने वाले सबसे कम उम्र खिलाड़ी बन गए हैं। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात के सानंद में सीजी सेमी के जदीद तर्ज के आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली और टेस्ट ओसेट प्लांट का इफ्तिताह किया। इस तकरीब में मरकजी वजीर अश्विनी वैष्णव और गुजरात के वजीर आला भूपेंद्र पटेल के साथ साथ आलमी टेक कंपनियों के रहनुमाओं ने भी शिरकत की। वहां बड़ी तादाद में मौजूद लोगों से खिताब करते हुए वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने जोर देकर कहा कि यह कदम भारत के बड़े इलेक्ट्रॉनिक्स इनकलाब में अगला मरहला है, जिसकी बदौलत भारत को मोबाइल फोन तैयार करने वाले दुनिया के दूसरे सबसे बड़े मुल्क का रुतबा पहले ही हासिल है। जनाब मोदी ने कहा कि सानंद में सीजी सेमी ओसेट मरकज से न सिर्फ अंदरूने मुल्क चिप मैन्युफैक्चरिंग इको निजाम को मुस्तहकम करने में मदद मिलेगी, बल्कि इससे आलमी सतह पर सेमी कंडक्टर वैल्यू चेन निजाम में भारत की पोजीशन में इजाफा होगा और तकनीकी खुद किफालत को भी फरोग हासिल होगा। वजीर आजम ने इस एतमाद का इजहार किया कि इस तारीखी प्रोजेक्ट से सानंद सेमी कंडक्टर के एक दरख्शां आलमी मरकज के तौर पर उभरेगा। जनाब मोदी ने इसे विकसित भारत का नक्शराह और मेक इन इंडिया का दूसरा कदम करार दिया। मस्कूरा प्लांट में मुतनव्वा अफरादी कुव्वत की सताइश करते हुए वजीर आजम ने कॉम्प्लेक्स को एक मिनी इंडिया से ताबीर किया, जहां मुख्तलिफ रियासतों से ताल्लुक रखने वाले इंजीनियर्स और पेशावर अफराद आलमी डिजिटल मईशत को तकवियत पहुंचाने की खातिर एक छत के नीचे काम कर रहे हैं। जनाब मोदी ने जोर देकर कहा कि इस उभरते हुए इको निजाम से मसनूई जहानत और नए सिलसिले की टेक्नोलॉजियों के शोबे में भारत के नौजवानों को मजीद आगे बढ़ने के वसी मौके हासिल होंगे। वजीर आजम ने कहा कि सानंद का प्लांट सालाना 20 करोड़ चिप्स तैयार कर सकेगा। जनाब मोदी ने पैदावार बढ़ाकर सालाना 500 करोड़ चिप्स तैयार करने का मुस्तकबिल का बड़ा निशाना तय करने पर सीजी सेमी को मुबारकबाद दी।
4: सीजी सेमी का ये प्लांट भारत, जापान और थाईलैंड के हमारे इंडस्ट्री पार्टनर्स के साझा प्रयासों का भी प्रतीक है। ये केवल एक बिजनेस वेंचर नहीं है, ये टेक्नोलॉजी, भरोसे और साझेदारी का ऐसा मॉडल है जो भारत की सेमीकंडक्टर जर्नी को नई गति देने वाला है। बीते सवा दो सालों में आप सभी ने स्क्रैच से स्केल तक इस पूरी फैसिलिटी को आकार दिया है। आज हम इसके कॉमर्शियल प्रोडक्शन की शुरुआत कर रहे हैं। मुझे बताया गया है कि अभी यहां से हर साल 20 करोड़ चिप्स निकलेगी।
3: इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए मरकजी वजीर अश्विनी वैष्णव ने ऐलान किया कि मुल्क में इस साल के आखिर तक 5 सेमी कंडक्टर प्लांट्स काम करने लगेंगे। मस्कूरा शोबे की तेज रफ्तार पेशरफ्त को उजागर करते हुए वजीर मौसूफ ने कहा कि सानंद मरकज में भूमि पूजन की तकरीब से लेकर कमर्शियल पैदावार का सिलसिला शुरू होने तक सिर्फ 27 महीने लगे।
5: आज भारत का तीसरा सेमीकंडक्टर प्लांट चालू हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 28 फरवरी को पहला प्लांट चालू किया और 31 मार्च को दूसरा प्लांट चालू किया और आज 4 जुलाई को तीसरा प्लांट। जिस तेजी से माननीय प्रधानमंत्री जी ने कैबिनेट में 12 प्लांट अप्रूव किए और 12 प्लांट में से 3 में कॉमर्शियल प्रोडक्शन चालू हुआ, आज दुनिया भर में भारत की सेमीकंडक्टर क्षमता पर एक नया विश्वास उठ खड़ा हुआ है।
3: जनाब अश्विनी वैष्णव ने जोर देकर कहा कि सानंद प्लांट में तैयार होने वाले चिप्स का इस्तेमाल मुख्तलिफ सनती शोबों में किया जाएगा और उन्हें अमेरिका, जापान और यूरोप समेत आलमी मार्केट्स में भी बरामद किया जाएगा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज राजस्थान में 1,05,000 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया और संगे बुनियाद रखा, जिससे रियासत में बुनियादी ढांचे, तवानाई, ट्रांसपोर्ट और रोजगार के मौके पैदा करने को बड़ी तकवीयत मिलेगी। दिन भर के अपने दौरे में वजीर आजम ने जोधपुर हवाई अड्डे पर नई टर्मिनल इमारत का इफ्तिताह किया। इसके बाद जनाब मोदी ने बालोतरा जिले में पचपदरा के मकाम पर मुल्क का सबसे जदीद तर्ज का ग्रीन फील्ड रिफाइनरी पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स मुल्क के नाम वक्फ किया। ग्रीन फील्ड रिफाइनरी तेल, गैस या मादनियात के लिए एक ऐसा सनती प्रोसेसिंग प्लांट है जिसे साफ सुथरी कच्ची जमीन पर नए सिरे से बनाया जाता है। प्रोग्राम से खिताब करते हुए वजीर आजम ने कहा कि मगरबी एशिया की महाजराई से 21वीं सदी का तवानाई का सबसे बड़ा बहरान पैदा हो गया था, लेकिन भारत में बरवक्त फैसलों, मौसर सिफारतकारी और कौमी वसाइल के मोहतात बंदोबस्त के जरिए इस चैलेंज पर कामयाबी के साथ उबूर हासिल किया।
4: भारत ने हर स्तर पर सही फैसले लिए, संकट का समय रहते सटीक आकलन किया, प्रभावी रणनीति बनाई, भारत के संसाधनों का संतुलित प्रयोग किया, भारत की डिप्लोमेटिक पावर का सकारात्मक इस्तेमाल किया और तब जाकर भारत संकट से उबर पाया है।
3: जनाब मोदी ने कहा कि बहरान के दौरान दुनिया के मुल्कों के साथ भारत के दोस्ताना ताल्लुकात का अहम रोल रहा। वजीर आजम ने कहा कि सरकार ने आलमी सतह पर उथल पुथल के बावजूद खाना पकाने की गैस की कीमतों में बहुत ज्यादा इजाफा नहीं होने दिया।
4: हमने संकट शुरू होते ही रिफाइनरी के सामर्थ्य पर फोकस किया, औद्योगिक काम के लिए जो गैस बनती थी उसकी जगह रिफाइनरी को रसोई गैस एलपीजी बनाने के लिए कहा गया और 7 दिनों के भीतर भीतर एलपीजी के उत्पादन में बढ़ोतरी हुई। पहले जो 35,000 मैट्रिक टन एलपीजी का उत्पादन देश में होता था, संकट के दौरान वो 54,000 मैट्रिक टन बढ़ गया।
3: जनाब मोदी ने इस मौके पर तकरीबन 54,000 नौजवानों को तकर्रुरनामे भी सौंपे, जिन्हें राजस्थान सरकार के मुख्तलिफ महकमों में भर्ती किया गया है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। पार्लियामेंट का मानसून इजलास इस महीने की 20 तारीख को शुरू होगा और 13 अगस्त तक जारी रहेगा। पार्लियामानी उमूर के वजीर किरण रिजिजू ने बताया कि सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने 20 जुलाई से पार्लियामेंट का मानसून इजलास तलब करने की सरकार की तजवीज को मंजूरी दे दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब रिजिजू ने कहा कि इस इजलास में कौमी अहमियत के हामिल मामलात पर बामकसद बहस मुबासे और फैसलों पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने आज मैन्युफैक्चरिंग और टेक्नोलॉजी में भारत की नुमाया तरक्की को ये कहते हुए उजागर किया कि मुल्क की दिफाई बरामदात रिकॉर्ड 38,000 करोड़ रुपए से ज्यादा तक पहुंच गई है। नई दिल्ली में मीडिया के एक निजी इदारे की जानिब से मुनक्किदा एक तकरीब से खिताब करते हुए जनाब सिंह ने कहा कि माली बरस 2013-14 में 686 करोड़ रुपए से जबरदस्त इजाफा तकरीबन 57 गुना है और इससे मेक इन इंडिया दिफाई प्लेटफॉर्म में बढ़ते आलमी एतमाद की अक्कासी होती है।
2: आज हमारा डिफेंस प्रोडक्शन मोर देन 1,78,000 करोड़ पहुंच चुका है। 7-8 साल 9 साल पहले तक हमारा ये डिफेंस प्रोडक्शन अप्रॉक्सिमेटली 46,000 करोड़ था। डिफेंस एक्सपोर्ट भी रिकॉर्ड 38,000 करोड़ रुपए से ऊपर पहुंच गया है और मैं आपको बतलाना चाहूंगा 2013 और 14 में यह केवल 686 करोड़ था, जो आज यह बढ़कर 57 टाइम्स बढ़ चुका है।
3: वजीर दिफा ने कहा कि माली बरस 2025-26 में सालाना दिफाई पैदावार भी अब तक की सबसे ज्यादा बुलंदी 1,78,000 करोड़ रुपए से ज्यादा तक पहुंच गई, जो 2014-15 की सतह से तकरीबन 3 गुना है। भारत की मैन्युफैक्चरिंग की वसीतर हुसूलियाबियों को उजागर करते हुए जनाब सिंह ने मेक इन इंडिया पहल के तहत मोबाइल फोन्स मैन्युफैक्चरिंग की तौसी, मोटर गाड़ियों के बरामदात में इजाफे, अंदरूने मुल्क तैयार करदा रेल इंजन और डिजिटल बुनियादी ढांचे की मजबूती को उजागर किया। गुजश्ता दहाई में मुल्क की तरक्की के बारे में बात करते हुए जनाब सिंह ने कहा कि

0: केवल कालिदास की कथा नहीं है, यह नाटक हमें बताता है कि हर बड़ी उपलब्धि के पीछे कुछ ऐसी स्मृतियाँ और संबंध भी छूट जाते हैं जिनका मूल्य समय बीतने पर अधिक गहराई से समझ में आता है।
1: वही आषाढ़ का दिन है, उसी तरह मेघ गरज रहे हैं, वैसे ही वर्षा हो रही है, वही मैं हूँ, उसी घर में हूँ, किंतु
2: लोग सोचते हैं मैंने उस जीवन और वातावरण में रहकर बहुत कुछ लिखा है, परंतु मैं जानता हूँ कि मैंने वहाँ रहकर कुछ नहीं लिखा। जो कुछ लिखा है वो यहाँ के जीवन का ही संचय था। कुमार संभव की पृष्ठभूमि ये हिमालय है और तपस्विनी उमा तुम हो मलिका, मेघदूत के यक्ष की पीड़ा मेरी पीड़ा है और विरह विमर्दता यक्षिणी तुम हो।
3: मेघ, मन और मालवा, अभी आपने ये रूपक सुना। आलेख और वाचन सुश्री भावना झा का था और नाट्य स्वर था नेत्रा और प्रांजल का। साथियों, कहते हैं इंसान कुछ नहीं करता, समय प्रावर्तिक रहकर उसे उस ओर आकर्षित करता है। मोहन राकेश की कृति आषाढ़ का एक दिन विवेक, आत्मबोध और अनुभव जैसे बिंदुओं पर मौन रहकर भी बहुत कुछ कह जाती है, चिंतन के नए द्वार खोल जाती है और यथार्थ कुछ कुछ तत्कालीन समाज को आगाह करता है। लेकिन एक सीढ़ी नीचे उतरा जाए तो वहाँ एक ऐसी पीढ़ी दिखाई देती है जो जड़ता, बंधन, दमन और शोषण में लिपटी हुई है। निराशा के बीच वहाँ कोई उम्मीद भी नहीं। साहित्य के हर अनुयायी ने किसी न किसी मोड़ पर प्रेमचंद को अवश्य पढ़ा है, सब कुछ न सही पर बहुत कुछ जरूर पढ़ा है, कुछ ऐसा भी है जो नहीं पढ़ा होगा। आइए ऐसी ही कुछ रचनाओं पर चर्चा करते हैं वरिष्ठ प्रसारण कर्मी, लेखक और आलोचक श्री राजीव कुमार शुक्ल से। आपसे बातचीत कर रही हैं युवा लेखिका नवोदिता मिश्रा।
4: 31 जुलाई को महान कथाकार साहित्यकार प्रेमचंद की जयंती है और प्रेमचंद जैसे बड़े और प्रसिद्ध लेखक की कुछ रचनाएं जो कालजयी हो गई, मगर ऐसे भी बहुत सी रचनाएं हैं जिनका जिक्र कम होता है या जिनको एक आम पाठक द्वारा या कुछ खास पाठकों द्वारा भी कम पढ़ा गया है, हालांकि वो बहुत अच्छी रचनाएं हैं अपने कथ्य में, अपने प्रभाव में। प्रेमचंद, कुछ अनपढ़े कुछ अनसुने, इस विषय के इर्द गिर्द आज हम बात करने का प्रयास करेंगे। तो पहला सवाल वो ये है कि कुछ रचनाएं जो इतनी लोकप्रिय हो गई कि उनकी पहचान ही बन गई, तो क्या इसी लोकप्रियता ने उनकी अन्य उत्कृष्ट रचनाओं को पाठकों की दृष्टि से ओझल कर दिया?
5: देखिए, ओझल कर दिया शायद ज्यादा बड़ा एक बयान होगा, और वैसे एक हद तक तो ये देखिए होता ही है कि किसी भी रचनाकार ने अगर प्रचुर मात्रा में लिखा है तो उस प्रचुर मात्रा में लिखी गई रचनाओं में से कुछ रचनाएं अधिक चर्चित होती हैं, किसी समय विशेष में ज्यादा चर्चित होती हैं, समय बदलता है, युग के मानदंड और मान्यताएं बदलती हैं, आवश्यकताएं बदलती हैं, मनुष्य के सरोकार बदलते हैं, तो उसके साथ साथ कई कहानियां, कई रचनाएं, कई कविताएं, कई उपन्यास फिर से वो महत्वपूर्ण हो जाते हैं, फिर से प्रकट हो जाते हैं। ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। अगर आपकी साहित्य में रुचि है और आपको साहित्य पढ़ने में सुख मिलता है और उससे आप कुछ समृद्ध होते हैं, तो हर साहित्यकार की और खासतौर से खूब लिखने वाले साहित्यकारों की जो बहुत चर्चित रचनाएं हैं उनके अलावा भी कई रचनाएं होती हैं जिनको पढ़ने से आप समृद्ध होते हैं और उनकी रचना धर्मिता के बहुत सारे ऐसे पहलू आपके सामने आते हैं जो कुछ रचनाओं विशेष पर अगर आप केंद्रित बने रहें तो उतने प्रकट नहीं होते हैं,
4: वो रचनाएं भी बहुत इजाफा करती हैं। मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि प्रेमचंद की ऐसी कौन सी रचनाएं हैं जिनका साहित्यिक मूल्य आपकी दृष्टि में बहुत ऊंचा है लेकिन कम पढ़ी गई या कम चर्चित है या बिल्कुल ही अनदेखी रह गई?
5: देखिए, बिल्कुल अनदेखी रह गई वाली बात तो थोड़ी कठिन होगी, क्योंकि प्रेमचंद का जैसे मान सरोवर है जिसमें उनकी कहानियां संग्रहित हैं, वो बहुत सारी कहानियां हैं, उन सारी कहानियों की चर्चा तो शायद एक बातचीत में एक आदमी के द्वारा करना लगभग असंभव ही होगा। एक संयोग है, मेरी स्कूली शिक्षा उत्तर प्रदेश में हुई और ये दौर था, ये 1960 के दशक का अंत था और उस समय उत्तर प्रदेश के विद्यालयों में हिंदी के विद्यार्थियों के लिए एक पुस्तिका हुआ करती थी जिसमें प्रेमचंद की ऐसी कहानियां थी जिनको बाल मनोविज्ञान के साथ जोड़ करके ज्यादा बच्चों के लिए इनको अनुकूल माना जाता था और प्रेमचंद की कई कहानियां एक साथ पढ़ने का जो सौभाग्य था वो उससे शुरू हुआ। उसमें जहां तक मुझे याद है कि कफन शायद नहीं थी, सबसे चर्चित कहानियों में कफन है, पूस की रात है, लेकिन कई कहानियां थी जो बहुत चर्चित हैं और सब जानते हैं, ईदगाह जैसे महान कहानी है और ईदगाह उसमें थी। हाँ, एक कहानी और जो बहुत लोकप्रिय भी है और मुझे बहुत प्रिय है, बड़े भाई साहब, जिसमें अगर आप पढ़ें तो शिक्षा की बात है लेकिन साथ साथ मनोविज्ञान भी है, अद्भुत कहानी है। अगर इससे हम जोड़कर देखें तो मुझे एक कहानी जो बहुत प्रिय है वो गुल्ली डंडा है। इस कहानी में ये है मूल रूप से कि एक आदमी है जो अब किसी कस्बे में रहता था बचपन में, वहां उसका बचपन बीता है और अब वो बाद में उसके पिता का ट्रांसफर हो गया, वो थोड़ा ठीक ठाक समृद्ध घर का था, वो इंजीनियर बन गया और बहुत साल बाद उस अपने कस्बे में लौट के आया है। अब वो याद कर रहा है तो उसमें उससे मीठी याद है वो गुल्ली डंडा के खेल की है और फिर उसकी जो रोमांच का वर्णन करते हैं पर गुल्ली डंडा का पूरा जो आनंद होता है, लेकिन साथ साथ एक सामाजिक चेतना अपने आप आती है। और कहा जाता है कि हिंदी में ऐसी कहानियों की कमी है जिनमें खेल का, विज्ञान का, ऐसे विषय जो है अपेक्षाकृत कम आते हैं, तो ऐसी ही अगर आप प्रेमचंद की कहानी शतरंज के खिलाड़ी आप, जो कि बड़ी काफी प्रसिद्ध कहानी है, पर उसमें जो आप याद करें कि भारतीय ढंग के शतरंज में प्यादे किस तरह चलते हैं और विलायती शतरंज में कैसे चलते हैं, इसको वो कहानी की विकास में और कहानी के मर्म के बयान में इस्तेमाल करते हैं। तो कहने का अर्थ ये कि सिर्फ शतरंज का ही नाम नहीं रख दिया है। ऐसी एक कहानी जो मुझे याद आती है इसमें बाल मनोविज्ञान की ही अगर बात करें तो रामलीला कहानी। रामलीला कहानी हमारे आज के समय में भी लगता है बहुत ही सार्थक और प्रासंगिक है। अब इस कहानी में क्या है कि रामलीला हो रही, अच्छा शुरुआत इससे होती है कि वो आदमी जो कहानी लिख रहा है वो फिर वही मामला है कि वो बूढ़ा हो चला है और लिखते हैं कि अब जब मैं लोगों को खोटे लगाकर और हु करते दौड़ता हूं तो कई बार हंसी आती है, पर बचपन में लगता था कि उसका जादू था, उसका रोमांच था। और फिर लिखते हैं कि मेरे बगल वाले घर में ही वो मेकअप हुआ करता था और जिसमें वो सीता का मेकअप और तमाम देवियों का मेकअप और उन पर बुंदियां चिपकाना और रज पीस करके लगाना उनके ऊपर जो पाउडर, और मैं बहुत उत्साहित रहता था। और जब राम का सीता लक्ष्मण का रथ निकलता था तो राम के पीछे खड़े होते थे और लिखते हैं कि मुझे ये लगता था कि जो आनंद उसमें आता था वो लाट साहब के चैंबर में बैठकर भी नहीं आया। मतलब लाट साहब उस जमाने में जो ब्रिटिश टाइम था, हम जानते हैं कि प्रेमचंद चले गए 8 अक्टूबर 1936 को। यहाँ तक तो कहानी बच्चे की है लेकिन उसके बाद कहानी आगे बढ़ती है। ये रामलीला का मंचन हो चुका है लगभग और अब स्थिति ये है कि उसमें चर्चा चल रही है कि जो कराने वाले लोग हैं, जो कमेटी है, जो जमींदार साहब हैं, कि चढ़ावा कम आया है तो मतलब ये कि जो मुनाफा होता था, जो कमाई होती थी रामलीला के जरिए, वो उतनी हो नहीं पाई, तो उसकी भरपाई कैसे की जाए। तो भरपाई के लिए अंत में ये होता है कि कोई नाचने वाली एक महिला है, उनको बुलाया जाता है और फिर उनको ये काम दिया जाता है कि अपनी अदाओं से आप लोगों से कुछ पैसे निकलवाइए, और वो निकलवाती हैं। और उसमें होता ये है कि बालक, जो कहानी कह रहा है, इस बालक के पिता पुलिस में हैं और बड़े कड़क आदमी हैं, तो इससे भी वो मांगती हैं कुछ पैसे दीजिए इस तरह का, तो लोग कहते हैं कि इससे तुम्हारी दाल नहीं गलेगी, तो वो बड़े गुस्से से देखते हैं और निकाल के अशर्फ भी दे देते हैं। इनको बड़ी शर्म भी आती है कि मेरे पिताजी जो है वो यहाँ आकर के इस तरह पैसे दे रहे हैं। अगले दिन स्थिति ये होती है कि राम, सीता और लक्ष्मण रो रहे हैं, मतलब वो बच्चे रो रहे हैं जो उनका अभिनय करते थे, और राम का अभिनय करने वाला जो बच्चा है वो उनको समझा रहा है, तो बताते हैं कि इस बार जमींदार साहब ने कुछ दिया नहीं, कहा कि बहुत कम आमदनी हुई है, आगे कभी ले जाना, रास्ते के लिए भी कुछ नहीं दिया है, तो हम लोग क्या करें कैसे जाएं सोच रहे हैं। तो ये पिताजी से पैसे मांगने जाता है कि आप 2 रुपए दे दीजिए तो उन लोगों को दे दूं, तो वो नहीं देते। अब यहां बाल मनोविज्ञान का एक रूप देखिए। उस दिन से मुझे अपने पिता से ऐसी चिढ़ हो गई कि जीवन में उनके किसी सीख को फिर मैंने माना ही नहीं। इससे मेरा नुकसान भी हुआ लेकिन मेरे अंदर ऐसी एक जुगुप्सा पैदा हुई कि आप उस नाचने वाली को अशर्फी देने को तैयार थे लेकिन इन बच्चों को आप नहीं दे सके। और फिर वो कहते हैं कि मैं कहीं से, मुझे 2 आने कहीं पड़े थे या मिल गए और वो जाकर माँ से मांग के या कहीं से 2 आने दिए। यानी एक कहानी का वो एक सिरा उठाते हैं और उस सिरे से वो उसे कहां तक ले जाते हैं। कई कहानियां और दिमाग में घूमने लगी। प्रेरणा कहानी याद आ रही है, एक बच्चे की कहानी जिसको अपने शिक्षक से प्रेरणा मिली। ये सही है कि ज्यादा चर्चा के केंद्र में वही कहानियां रहती हैं जो बहुत चर्चित हैं और होनी भी चाहिए। मतलब यहाँ पर मैं इस पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा रहा हूँ।
4: तो जहाँ आप होनी भी चाहिए, जहाँ आप कह रहे हैं, वहाँ एक सवाल मन में आता है कि क्या जिन रचनाओं को हमने मान लिया है कि जो बहुत चर्चित हैं, बहु पठित हैं, उनमें और जो दूसरी और रचनाएं जिनका भी आप जिक्र भी कर रहे थे उदाहरण सहित, तो क्या उनमें अपने कथ्य में, अपने प्रभाव में या उनकी अपनी
5: अंतर नहीं है, विस्तार है। मुख्य बात यह है कि प्रेमचंद का एक तो विकास हुआ लगातार। प्रेमचंद ने बिल्कुल सामान्य किस्सा गोई से शुरू किया और वो निखरते चले गए। प्रेमचंद जो हैं, उनकी जो आखिरी दौर की कहानियां हैं, कफन है या पूज की रात है, ये उनकी सबसे महान कहानियां मानी जाती हैं। उनका अंतिम पूरा जो उपन्यास है वो गोदान है, जो उनका महानतम उपन्यास माना जाता है। और सच्चाई ये है कि उनका वैचारिक विकास भी हुआ, वो एक किस्सा गोई से आगे बढ़े, अपने समय से प्रभावित थे, आदर्शवादी चेतना के साथ आगे बढ़े, हृदय परिवर्तन बहुत होता था उनकी कहानियों में। लेकिन ये है कि प्रेमचंद के यहाँ हमें क्या मिलता है, आपने पूछा, वो ये मिलता है कि जब आप कुछ कहानियों पर ही केंद्रित रहते हैं तो आपको एक वानगी मिलती है उनकी कहानी कला की, उनके सरोकारों की। जब और कहानियां पढ़ते हैं तो आप पाते हैं कि जीवन के इतने सारे तमाम पक्ष और हैं। प्रेमचंद उतने तक ही नहीं थे, वो सामाजिक यथार्थवाद की चेतना, सामाजिक प्रतिरोध की चेतना, बदलाव की चेतना, आजादी की लड़ाई का हिस्सा, मजदूरों किसानों के हकों के लिए लड़ने वाले, तो वो आप देखिए कितनी चीजें हैं जो आपको आपको पढ़ना चाहिए कि कितने तरह से जीवन को उन्होंने देखा, उसमें विचार किया। प्रेमचंद ने कहा है कि सच्चा साहित्यकार स्वभावतः प्रगतिशील होता है और साहित्य जो है राजनीति के आगे चलने वाली मशाल है, उनके वाक्य हैं। लेकिन यह है कि मनुष्य से और सृष्टि से बहुत गहरा और आत्मीय प्रेम किए बिना आप साहित्यकार नहीं हो सकते, कलाकार नहीं हो सकते, अच्छे मनुष्य नहीं हो सकते। और प्रेमचंद के यहाँ उनकी कहानी कला में कितने व्यापक स्तर पर, कितनी सूक्ष्मताओं के साथ हमारा संसार, हमारा जीवन मिलता है, जो तब था और जो आज 9 दशक बाद भी प्रेमचंद हमारे पुरोधा हैं और हमारी उंगली पकड़कर हमें ले चल रहे हैं।
4: बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने इतने विस्तार में प्रेमचंद की कहानियों के बारे में हमारे श्रोताओं को अवगत कराया आपने।
3: ये भी प्रेमचंद, अभी आप इस विषय पर वरिष्ठ प्रसारण कर्मी, लेखक और आलोचक श्री राजीव कुमार शुक्ल से बातचीत सुन रहे थे। आपसे बातचीत कर रही थी युवा लेखिका नवोदिता मिश्रा। साथियों, प्रेमचंद का युग यकीनन वैसा ही रहा होगा जैसा उनकी कृतियों में है, पर देश को आजादी मिलते ही सब कुछ न सही पर बहुत कुछ बदला। राष्ट्रीय धारा के कवियों की चेतना प्रस्फुटित हुई। अतीत और तत्काल के महासंगम की ज्वाला ने देशभक्ति, एकता और अखंडता के नए सूत्र रचे। आइए उस धारा के महत्वपूर्ण कवि रामधारी सिंह दिनकर की राष्ट्रभक्ति और शक्ति पर एक वार्ता सुनते हैं। दिनकर राष्ट्र के हितकर वार्ताकार हैं वरिष्ठ लेखक, स्तंभकार और प्राध्यापक डॉक्टर अवनिजेश अवस्थी।
6: भारत के स्वाधीनता संग्राम में जो भारत के और भारतीय भाषाओं के, विशेष रूप से हिंदी के कवियों ने जो योगदान दिया, उसमें एक लंबी चौड़ी सूची है। माखनलाल चतुर्वेदी हैं, सोहनलाल द्विवेदी हैं, सुभद्रा कुमारी चौहान है, और इसमें एक नाम है राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर का। रामधारी सिंह दिनकर न सिर्फ राष्ट्रीय भावना के कवि हैं, बल्कि उनकी वाणी में और उनकी लेखनी में जो ओज था वो अद्भुत ओज था। और मंचों पर जिस तरीके से वो कविता का गायन किया करते थे, उसमें मुझे लगता है कि शायद सचमुच लोगों की भुजाएं फड़कने लगती होंगी।
7: सुख से नहीं, विवश उड़ने के पंख नहीं होने से, और मूक इसलिए कि उनके कंठ नहीं खुलते हैं। सोचा है यह कभी कि गूंगापन कैसी पीड़ा है, भीतर भीतर दर्द भोगना लेकिन बता न पाना, उसे किसी से कहकर मेरे मन को चोट लगी है। बोल नहीं सकता जो उसका भी दुख कोई दुख है, कितने लोग समझते हैं आशा उदास आंखों की।
6: आप लोगों को हैरत होगी कि रामधारी सिंह दिनकर 1928 में सरदार वल्लभ भाई पटेल जो बारदोली में किसान आंदोलन कर रहे थे, उसके संदर्भ में उस समय जब विजय संदेश रामधारी सिंह दिनकर कविता लिखते हैं, तो उस कविता को पढ़ करके आज भी भुजाएं फड़कने लगती हैं। और वो दृश्य सामने आ जाता है कि जब सरदार पटेल ने बारदोली के किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था और उसमें ब्रिटिश सरकार को पराजय का मुंह देखना पड़ा था। मैं आपको उनकी 4 लाइनें सुना सकता हूँ और अद्भुत आपको आनंद आएगा उस कविता को सुनने में। तेग तोप तलवार उधर थी, इधर निरीहों की थी आह, उधर मिटा देने की धुन थी, इधर प्रबल मिटने की चाह, इधर उठी हुंकार सृष्टि सारी वह डावा डोल हुई, प्रलय कारणी ध्वनि जनसत्ता की अतिशय अनमोल हुई, ठोक ताल दुंद भी बजा शासन की हस्त हिलाई है, वीर बार दोली वालों की गाओ विजय बधाई है। निरे निहत्थे हैं पर क्यों डर जाएं तेरी फटकारों से, गगन गूंज जाएगा भीषण सहस हुंकारों से, दमन जेल से डरे कौन पाशवी शक्ति में क्यों भूला, भारतीय बच्चे झूलेंगे फांसी का प्यारा झूला, बलिवेदी पर चढ़कर जग में अनुपम कीर्ति कमाई है, वीर बारदोली वालों की गाओ विजय बधाई है। और एक कविता नहीं, उनकी लंबी कविताओं की ऐसी सूची है जो बार बार जहां पर वो इस तरीके की बात करते हैं। और जिस तरीके से फांसी के फंदों पर झूल जाने वाले हमारे क्रांतिकारी थे, शहीद थे, उनके लिए ये कविताएं एक ऐसा संजीवनी का काम करती थीं कि उन कवियों की कविताएं पढ़ करके लोग भारत के स्वाधीनता आंदोलन में कूद पड़ते थे। रामधारी सिंह दिनकर ने रश्मि रथी जैसी काव्य कृति लिखी, और न सिर्फ राष्ट्र के स्तर पर वो जिस तरीके से समाज में भी बात करते हैं, जाति जाति रटते केवल जिनकी पूंजी पाखंड, मैं क्या जानू जाति जाति हैं ये मेरे भुजदंड। एक कविता और मैं आपको सुनाना चाहूंगा, 1945 में ये कविता लिख रहे हैं। हा भारत की लाल भवानी, जवा कुसुम के हारों वाली, शिवा रक्त रोहिणी वसना, कबरी में लाल सितारों वाली, कर में लिए त्रिशूल कमंडल, दिव्य शोभनी सुरसर स्नाता, राजनीति की अचल स्वामिनी, साम्य धर्म ध्वज धर की माता, भारत भूमि के मिट्टी से श्रृंगार सजाने वाली, चढ़ हिमाद्री पर विश्व शांति का शंख बजाने वाली। 1945 के आसपास ना एक बहुत बड़ा ये चल रहा था कि राष्ट्रीयता क्या होती है, और राष्ट्रीयता कहीं अंतर्राष्ट्रीयता में बाधित तो नहीं होती, इसलिए रामधारी सिंह दिनकर भारत भूमि पर भारत के स्वाधीनता आंदोलन की आवाज बुलंद करने के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को उस देश के रूप में स्थापित करते हैं जो विश्व शांति की बात करता है। जिस समय भारत परतंत्र था उस समय ये बात कहना बड़ा मुश्किल था, लेकिन दिनकर जी ने बात कही। जयप्रकाश नारायण रामधारी सिंह दिनकर जी से बहुत अधिक प्रभावित थे, उस समय उनकी कविता बड़ी प्रसिद्ध हुई, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। दिनकर जी ने कुछ साम्यवादी स्वभाव की भी कविताएं लिखी और गांधी जी पर भी कविताएं लिखी उन्होंने, लेकिन खुद उन्होंने कहा ये कि मैं जीवन भर गांधी और मार्क्स के बीच में झटके खाता रहा हूं, इसीलिए उजले को लाल से गुणा करने पर जो रंग बनता है वही रंग मेरी कविता का रंग है, वही रंग केसरिया रंग, वो रंग उन्होंने कहा। और स्वयं ये किसी आलोचक ने नहीं कहा, किसी दिनकर जी के पाठक ने नहीं कहा, स्वयं दिनकर जी स्वीकार करते हैं। 1965 के युद्ध के समय सैन्य शिविरों में वो कविताएं गाई जाती थी, और दिनकर की अन्य अन्य कविताएं जो हैं सैनिकों के लिए शिविरों में, वहां के आम आदमी जो थे जब गांवों से सेनाएं निकलती थी तो दिनकर जी की कविताएं गा गा करके सैनिकों का उत्साह बढ़ाया जाता था। बहुत सारे ऐसे लोग मिलते हैं जिनको रश्मि रथी पूरी याद है, परशुराम की प्रतीक्षा से वो उद्धृत करते हैं, क्षमा क्षोभती उसी भुजंग को जिसके पास गरल हो। ये कविता की लाइन ऐसी है जो आम तौर पर तब से पिछले 50 60 70 80 वर्षों से लेकर के आज तक जो है लगातार उद्धृत की जाती है, मुहावरा बन गई है, अपनी बात को कहने का अंदाज बन गया है। दिनकर जी की कविताएं जो है, श्वानों को मिलता दूध दही, भूखे बच्चे अकुलाते हैं, ये कविता की पंक्तियां ऐसी हैं जो आम आदमी के मुंह पर, आम आदमी की जुबान पर आती हैं। अपनी बात को कहने के लिए दिनकर जी की पंक्तियों का उदाहरण देकर के जिस तरीके से अपनी बात को यहां पर पुष्ट किया जाता है या स्पष्ट किया जाता है, ये वास्तव में कवि दिनकर की वो सार्थकता है या वो उनकी सफलता है जो शायद हर कवि को नहीं मिलती। दिनकर जी की बहुत प्रसिद्ध कृति है उर्वशी, अपने समय का सूर्य हूं मैं। जब दिनकर जी इस तरीके की पंक्ति पढ़ा करते थे तो समूचा मंच जो है अनगिनत तालियों से भरा रहता था। एक लंबी उनका काव्य नाटक जिसमें चंद्रगुप्त के बारे में है, सेल्यूकस का उदाहरण देते हैं वो कि सेल्यूकस आपने आकर के हमें बहुत अच्छा किया कि हमें अपने आत्मगौरव का भान करा दिया। वो लिखते हैं, भारत भूमि है एक, हिमालय से आसे तु निरंतर, पश्चिम में कंबोज कपिश तक उसकी ही सीमा है, किया कौन अपराध गए जो हम अपनी सीमा तक, अनाहूत हमसे लड़ने को क्यों सेल्यूकस चढ़ आया, मदोन्नमत यूनान जानता था न मगध के बल को, समझा था वह हमें छिन्न शायद पुर के कैसा, वह कलंक का पंख आज धुल गया देश के मुख से, हम कृतज्ञ हैं सेल्यूकस ने अवसर हमें दिया है। दिखा दिया पूरे विश्व को भारत की उस आत्मगौरव का व्यक्त करने का अवसर दिया सेल्यूकस ने। वीर सिकंदर के गौरव का प्रतिभू सेल्यूकस था, आज खड़ा है वह विपन्न आहत सा मगध सभा में, उस बलिष्ठ शार्दूल सदृश निष्प्रभ हत तेज अकिंचन, पर्वत से टकराकर जिसने नखरद तोड़ लिए हो, उस भुजंग सा जिसकी मणिमस्तक से निकल गई हो। तो ये है रामधारी सिंह दिनकर।
3: दिनकर राष्ट्र के हितकर। अभी आप ये वार्ता सुन रहे थे वरिष्ठ लेखक, स्तंभकार और प्राध्यापक डॉक्टर अवनिजेश अवस्थी की इस वार्ता के साथ ही हम अमित घोष, उमा शंकर जोशी, अजीत कुमार, महाश्वेता देवी, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, गोपाल दास नीरज, कुंवर बेचैन, कन्हैया लाल नंदन की स्मृति को नमन करते हुए आपसे यहीं विदा लेते हैं। वाचन स्वर नीलम मलकानिया, प्रस्तुति सहयोग वंदना, आलेख और प्रस्तुति राम अवतार पैरवा की।

ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है FM के 101.7 मेगाहर्ज पर। श्रोताओं, आइए सुनते हैं गजलों का कार्यक्रम महफिल। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हरिहरन के स्वर में गजल।

हरिहरन द्वारा गाए इस गज़ल के साथ ही श्रोताओं, हमारा आज का गज़लों का कार्यक्रम महफिल अब ही समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से बोल रहे हैं, FM के 101.7 MHz पर, और आइए सुनते हैं कार्यक्रम सुरों के रंग। पहला गाना है फिल्म प्यासा से, गायक कलाकार हैं मोहम्मद रफ़ी।

और यही सुनते हैं आराधना फिल्म का ये नगमा। आवाज़ें हैं लता मंगेशकर की, गीत लिखा है आनंद बख्शी ने, संगीत एच डी बर्मन का है।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 870-001-4242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 870-001-4242।
2: अभी आपने सुना फिल्म रात अकेली है, इस फिल्म का गाना, आवाज़ें थी मोहम्मद रफ़ी की। और आइए सुनते हैं फिल्म मेरे हमसफर में लता मंगेशकर को।

अभी आपने सुना फिल्म मनपसंद का ये गाना, आवाज़ें थी किशोर कुमार की। कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं फिल्म ममता का ये नगमा, आवाज़ें लता मंगेशकर की हैं।

लता जी, लोग कहते हैं भी तुम्हें इतना मानती हैं लता जी, तुम्हें उस्ताद समझती हैं, तुम्हें प्यार करती, ये सब मैं समझती हूँ उनका बड़ापन है। तो ना लता तो लता है, लता जी की तरह मेरी नज़र में अभी तक कोई पैदा नहीं हुआ। लता जी को अल्लाह ने आवाज़ दी है, इल्म उनको उनके वालिद साहब से मिला, खुदा की तरफ से उन पर करम हुआ।

इस गीत के साथ ही श्रोता, हमारा आज का सुरों के रंग कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से बोल रहे हैं, FM के 101.7 MHz पर। कुछ ही पल में आप सुनेंगे समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं किरण शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत डिजाइन इन इंडिया और मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़ रहा है। गुजरात के सानंद में देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में चिप पैकेजिंग के वाणिज्यिक उत्पादन का शुभारंभ करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही।
1: आज का ये कार्यक्रम इस बात का प्रमाण है कि भारत जो ठान लेता है वो करके दिखाता है। 5 साल पहले भारत ने संकल्प लिया था कि देश को सेमीकंडक्टर हब बनाएंगे। हम डिजाइन इन इंडिया, मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़े और आज देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में भी चिप पैकेजिंग का कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हो रहा है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि सानंद संयंत्र में प्रत्येक वर्ष 20 करोड़ चिप तैयार होंगी। श्री मोदी ने कहा कि ये विकास भारत की जबरदस्त इलेक्ट्रॉनिक्स क्रांति का अगला कदम है, जिसने देश को दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता बना दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने पश्चिम एशिया संकट का सफलतापूर्वक सामना किया।
1: भारत ने हर स्तर पर सही फैसले लिए, संकट का समय रहते सटीक आकलन किया, प्रभावी रणनीति बनाई, भारत के संसाधनों का संतुलित प्रयोग किया, भारत की डिप्लोमेटिक पावर का सकारात्मक इस्तेमाल किया और तब जाकर भारत संकट से उबर पाया है।
0: इस अवसर पर इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस वर्ष देश के अंत तक भारत में 5 सेमीकंडक्टर संयंत्र चालू हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि ये संयंत्र केवल 27 महीने में तैयार हो गया। इससे पहले राजस्थान के पचपदरा में प्रधानमंत्री ने 1,05,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजना का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। श्री मोदी ने जयपुर मेट्रो के दूसरे चरण की आधारशिला भी रखी। उन्होंने पचपदरा में देश के सबसे आधुनिक ग्रीनफील्ड रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल राष्ट्र को समर्पित किया। ग्रीनफील्ड रिफाइनरी तेल, गैस या खनिजों के लिए एक औद्योगिक प्रसंस्करण संयंत्र है। इसे अविकसित स्वच्छ भूमि पर बिल्कुल नए सिरे से बनाया जाता है। श्री मोदी ने राजस्थान सरकार के विभिन्न भागों में लगभग 54,000 नव नियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र भी दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबोबो सुबियंतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी श्री प्रोबोबो सुबियंतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री जकार्ता में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। सामाजिक न्याय एवं आधिकारिकता मंत्रालय ने मादक पदार्थों की मांग में कमी लाने के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना शुरू की है। ये एक व्यापक ढांचा है जिसका उद्देश्य रोकथाम, जागरूकता पैदा करना, क्षमता निर्माण, उपचार, पुनर्वास और सामाजिक एकीकरण है। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं आधिकारिकता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार ने कहा कि इन पहलों का उद्देश्य जागरूकता, उपचार, पुनर्वास और सामाजिक एकीकरण के माध्यम से मादक पदार्थों के दुरुपयोग को रोकना है। ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता आयातुल्ला सैयद अली खामनेई के 6 दिन का राष्ट्रव्यापी अंतिम संस्कार आज सुबह तेहरान में शुरू हुआ। ईरान के दिवंगत नेता को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए हजारों शोक संतप्त लोग एकत्रित हुए। बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा ने भारत का प्रतिनिधित्व किया। मैनचेस्टर में दूसरे T20 क्रिकेट मुकाबले में इंग्लैंड ने भारत को 4 विकेट से हरा दिया है। वैभव सूर्यवंशी 15 वर्ष 99 दिन की उम्र में भारत के लिए डेब्यू करने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं। 5 मैचों की श्रृंखला का पहला मैच बारिश के कारण रद्द हो गया था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय रेणुका। Prime Minister Narendra Modi today inaugurated CG Semi's state-of-the-art outsourced semiconductor assembly and test OSAT plant in Sanand, Gujarat. The event was attended by Union Minister Ashwini Vaishnaw and Gujarat Chief Minister Bhupendra Patel along with global tech leaders. Developed with a massive investment of over 7,500 crore rupees, the advanced facility will have an annual production capacity of up to 5 billion semiconductor chips. Earlier, Prime Minister Modi inaugurated and laid the foundation stone for development project